सुप्रभात, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 15 जून सन 2026। सवेरे के 5:55 हुए हैं। मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व

राम नाम परम रत्नम, राम नाम परम धनम, राम नाम परम तत्वम, राम नाम परम सुखम। राम नाम ही सर्वोच्च रत्न है, सर्वोच्च धन है, सर्वोच्च सत्य और सर्वोच्च सुख है।

वन्दे नवधनश्यामं पीतकौशेयवाससं सानन्दं सुन्दरं शान्तं श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमं। उन भगवान श्रीकृष्ण

प्रणाम, जिनका वर्ण न वर्षा के मेघ के समान श्याम है, जो पीले रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, जो आनंदमय, सुंदर, शांत और पुरुषोत्तम हैं।

जिनकी रहमत से महकती हैं फिजाएं हर बार, जिनके नूर से मुनव्वर है ज़मीन और आसमान सारा, जिनके करम से दिलों को मिलता है सुकून और करार। वो रहमान भी हैं, वो रहीम भी हैं, वही है रब्बे करीम, वही है परवरदिगार।

मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, विलप करे चात्रिक किनी आई, त्रिखा न उतरे सांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित गुरु अर्जन देव जी की ये वाणी कहती है कि जैसे चातक की प्यास स्तुति की बूंद से तृप्त होती है, उसी प्रकार प्रभु दर्शन की अभिलाषा उनके साक्षात स्मरण, दर्शन और कृपा से पूर्ण होते हैं।

सततं नमः नमः प्रकृतये भद्राये नित्यायः प्रणतायः स्मृताम। उस देवी को निरंतर प्रणाम जो महादेवी है, कल्याणमयी है, समस्त सृष्टि की मूल प्रकृति है और मंगल प्रदान करने वाली है। हम श्रद्धा और समर्पण के साथ उनके चरणों में नतमस्तक हैं।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज कार्यक्रम में गायक कलाकार थे अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, मोहम्मद अहमद व साथी युगराज सिंह और नंदिनी शरण। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर सवेरे के 6:30 हुए चाहते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का चिंतन।
1: ओम परिमाग्ने दुश्चरिताद् बाधस्व मा सुचरिते भज उदायुषा स्वायुषोदस्था मम अमृतां मनुः। यजुर्वेद का

0: ये सुंदर सा मंत्र है। इस मंत्र में हम एक सुंदर चिंतन कर रहे हैं किसी देश का वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चरित्र कैसा है, यही उसके उत्कर्ष या अपकर्ष की कसौटी है। व्यक्ति के ही चरित्र से किसी राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। अतः मेरी कामना है कि मेरा वैयक्तिक चरित्र अत्यंत उज्जवल हो। हे अग्नि, हे पाप ताप को भस्म करने वाले परम पिता परमात्मन, दुष्चरित्र से तुम मुझे सदा दूर रखो और सच्चरित्र में स्थापित करो। मैं ऐसा खरा सोना बन जाऊं कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकूं कि मेरे अंदर मांस, मदिरा, व्यभिचार, द्रुत कीड़ा, असत्य भाषण, चोरी, हिंसा, दंभ, पाखंड आदि कोई दुर्व्यसन नहीं है, और इसके विपरीत श्रद्धा, ईश्वर भक्ति, क्षमाशीलता, जितेंद्रियता, धर्मनिष्ठा, सत्य संकल्पता, संतोषशालिता, कृतज्ञता, दानशीलता, परोपकार, मधुर भाषण, सद्व्यवहार आदि सच्चारित्र सब विद्यमान है। जब सच्चरित्र आत्माओं की गणना होने लगे, तब सबसे पूर्व लोगों की अंगुली मेरी ओर उठे, मेरे सुचरितों की कीर्ति दिग दिगंत व्यापनी होकर मुझे अमर कर दे। सच्चरित्र का प्रभाव मनुष्य की आयु पर भी पड़ता है, एवं सच्चारित्र का विकास मेरे लिए दीर्घ आयुष्य प्रदायक हो। साथ ही वो दीर्घ आयुष्य ऐसा ना हो कि मैं रोगाक्रांत, चिंताग्रस्त, कातर और दुखी रहता हुआ चिरकाल तक जीऊं। एक कवि ने कहा है, किसी की चार दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता। हम कितना लंबा जिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता, हम कैसे जिए ये महत्वपूर्ण होता है। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह या महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी आदि अनेक महान पुरुष हुए हैं, उनका आयु बहुत लंबा नहीं हुआ, किंतु जितना जीवन उन्होंने जिया उतने जीवन में आदर्शों की स्थापना की। हम एक बात और अच्छे से ध्यान रखें कि संसार में निर्धन डरता है धनवान से, कमजोर डरता है बलवान से, मूर्ख डरता है बुद्धिमान से, किंतु सारा संसार डरता है चरित्रवान से। मैं जीवन से अनुप्राणित, प्रफुल्ल और सुखी रहता हुआ चिरजीवी बनूं, परंतु सुचरित, सुख संपदा, लंबी आयु इतना ही मेरे लिए प्राप्तव्य नहीं है, अपितु मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए भी उद्यमी होना चाहता हूं, जो विद्वज्जन सदेह और विदेह मुक्ति के अमर पद को प्राप्त कर चुके हैं, उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए मैं मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होता हूं। हे तेजोमय अग्नि प्रभु, तुम मेरे प्रयास को फलवान करो और मुझे अपनी सुखमयी गोद में आश्रय देकर असीम ब्रह्मानंद का अधिकारी बनाओ।
1: आप सुन रहे थे आज का चिंतन। इस समय आप आकाशवाणी रामपुर से प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे हैं। कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश में आइए अब कॉस्मेटिक उत्पादों का शरीर पर प्रभाव, इस विषय पर जानकारी लेते हैं डॉक्टर विनय प्रकाश वर्मा से।
2: स्वास्थ्य संदेश के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, कॉस्मेटिक पदार्थों का प्रचलन बढ़ रहा है, अनेक प्रकार के ये उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। इन उत्पादों की अपनी एक प्रकृति होती है, कुछ अधिक अम्लीय होते हैं तो कुछ अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनकी प्रकृति का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। कुछ कॉस्मेटिक्स या अन्य प्रोडक्ट्स पर अक्सर आपने पीएच बैलेंस के बारे में लिखा देखा होगा, पर क्या कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर पीएच का मतलब क्या है,

0: इसमें क्या खास बात है जो शरीर के लिए जरूरी है? पीएच का पूरा मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन के अणु किसी भी घोल या उत्पाद में उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को तय करते हैं। आपके शरीर के किस अंग का पीएच स्तर कितना है, यह आपके आहार, व्यायाम और दवाओं के स्तर पर निर्भर करता है। हम पीएच को इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि अगर घोल में पीएच 1 या 2 है तो वह अम्लीय है, और अगर पीएच 13 या 14 है तो वह क्षारीय है। अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल है। पानी का पीएच 7 होता है, यानी पानी में अम्ल और क्षार दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। क्या है जरूरत? बॉडी में पीएच स्तर यदि असामान्य हो जाए तो इसका असर आपकी सेहत पर पड़ता है। शरीर के अंगों और एंजाइम्स को सही प्रकार से काम करने के लिए पीएच स्तर सही होना बहुत जरूरी होता है। इसके स्तर में कमी या अधिकता एंजाइम्स और मेटाबॉलिक प्रोसेस को नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, दिल की बीमारियां और अर्थराइटिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अगर इसका स्तर जरूरत से ज़्यादा हो तो व्यक्ति को थकान, मांसपेशियों में जकड़न और ऊर्जा के स्तर में गिरावट जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एक्सरसाइज, आहार और दवाओं आदि से बॉडी में पीएच का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमारा शरीर उसकी भरपाई कर लेता है। प्रोडक्ट में कितना पीएच होता है इसके बारे में जानकारी जरूरी है। डिओडोरेंट, पसीने से बदबू का कारण बैक्टीरिया की सड़न होती है। त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार अगर पसीने में सीबम यानी पसीने की ग्रंथियों का तैलीय स्राव का मिश्रण हो जाता है तो ये त्वचा पर एक परत बना लेता है। डॉक्टरों के अनुसार इस परत को एसिड मेटल कहते हैं, क्योंकि इसका पीएच 5 से नीचे होता है, जो कि हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। ऐसे में अगर साबुन या दूसरे उत्पादों से त्वचा को धो लिया जाए तो ये एसिड मेटल को त्वचा से निकाल देता है, जिससे त्वचा में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डिओडोरेंट ऐसा खरीदना चाहिए जिसमें पीएच बहुत कम हो, जो त्वचा को प्राकृतिक रूप से सहज कर रखे। पानी या साबुन में पीएच 8 से 11 के बीच होता है। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इससे चेहरा साफ करते हैं तो ये चेहरे की सारी नमी खींच लेता है। कई बार इसकी वजह से त्वचा में सूखापन, खुजली और मुहासे की समस्या होती है। इसलिए पीएच संतुलित फेस वॉश इस्तेमाल करने से चेहरे का एसिडिक मेटल बरकरार रहता है और त्वचा को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। अब हम बात करते हैं शैम्पू की। सिर की त्वचा का भी पीएच 5 से कम होता है। जब बालों को पानी या फिर किसी भी क्षारीय उत्पाद से साफ करते हैं तो इसकी वजह से बालों का नाजुक भाग, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षारीय उत्पाद बालों के प्राकृतिक तेल को भी नष्ट कर देते हैं, जो क्यूटिकल को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसलिए पीएच संतुलित शैम्पू ही इस्तेमाल करें। बालों को धोने के लिए सेब का सिरका भी फायदेमंद होता है। टूथपेस्ट, दांतों को स्वस्थ रखने में पीएच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर दांतों का इनेमल टूट जाए तो उसका बनना भी पीएच पर निर्भर करता है। अगर पीएच 6 हो जाए तो कोई बदलाव नहीं होता। विशेषज्ञों के अनुसार हल्के अम्लीय टूथपेस्ट के इस्तेमाल से दांतों का स्वास्थ्य सही रहता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर दांतों को सही रखने वाले संतुलित पीएच वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। श्रोताओं, इस प्रकार यदि इन बातों का हम ध्यान रखें और बाजार से कॉस्मेटिक पदार्थों को जब खरीदें तो उसके पीएच मान को ध्यान में रख करके ही खरीदें, तो फिर हम अपने शरीर को किसी भी प्रकार से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। आज की जानकारी में बस यहीं तक। नमस्कार।
1: कॉस्मेटिक उत्पादों का शरीर पर प्रभाव कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश के अंतर्गत इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनय प्रकाश वर्मा। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: 9:30 गीत गाथा चल। इस कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 8 बजे किया जाएगा। शाम 7:31 पर कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत आज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे पर विशेष कार्यक्रम सुनिएगा। शीर्षक रहेगा हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर। संकलन व आलेख अली हैदर का होगा। कार्यक्रम विविधता के अंतर्गत रक्तदान और आमजन इस विषय पर हम आपको श्री गौरव त्रिपाठी की वार्ता सुनवाएंगे शाम 7 बजे। शाम 6:20 पर किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत आपके रेडियो सेट पर होगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हैं फलदार पौधों की देखभाल विषय पर सुनिएगा चर्चा, साथ ही धान में कीट व रोग नियंत्रण इस विषय पर केवीके बदायूं से डॉक्टर सुहाद्र दुबे की एक भेंटवार्ता आप तक पहुंचेगी। कृषि संकेत के अंतर्गत सूरजमुखी की खेती से अधिक लाभ कैसे करें ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम का समय याद रखिएगा शाम 6:20। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:10 पर। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी आपके रेडियो सेट पर होगा शाम 5:15 पर। और फिल्मी गीतों के कम्पियट कार्यक्रम आज शाम का आनंद लीजिएगा शाम 5 बजे। दिन में 2:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आंचल। ये कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा दिन में 1:30 पर। कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत आज हम आपको शमा जौहरी के गाए लोकगीत सुनवाएंगे दिन में 1:15 पर। गीत आपके नाम ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आपके रेडियो सेट पर होगा दिन में 12:10 पर और हमें रहेगा आपके फरमाइशी ईमेल्स का इंतजार। 11:30 पर मनभावन के अंतर्गत आज हम आपको मुकेश के गाए कुछ गीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम का समय याद रखिएगा दिन में 11:30। 11 बजे धरोहर के अंतर्गत आज सुनिएगा धारावाहिक और फन बेमिसाल है की कड़ी संख्या 2 सुनहरा दौर। ये कार्यक्रम आपके रेडियो सेट पर होगा दिन में 10:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर सुनना ना भूलिएगा सवेरे 10 बजे। उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज राग मतईन चौटाला पर रुद्र वीणा वादन बहुद्दीन डागर का वीणा वादन आनंद के साथ सुनिएगा। कार्यक्रम का समय है सवेरे 9:50। उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जाएगा सवेरे 9:30 पर। 9:25 पर प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत आज की प्रेरणा है मुंशी प्रेमचंद्र। आनंद लीजिएगा नई फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स पर। हम अपने श्रोताओं को पुनः याद दिला दें कि सवेरे 9:50 पर उपशास्त्रीय संगीत का प्रसारण किया जाएगा और दिन में 8:45 पर आप आनंद लेंगे 102.9 मॉर्निंग हिट्स कार्यक्रम का। फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे सुनना ना भूलिएगा सवेरे 7:31 पर। कार्यक्रम सेहतनामा में आज जीवन को संतुलित करता योग इस विषय पर जानकारी प्राप्त कीजिएगा सवेरे 7 बजे। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 MHz पर सवेरे के 6:45 हुए चाहते हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग।
1: एपिसोड नंबर 329

युद्धरथ कुंभकर्ण का घोर गर्जन सुनकर देवता भी भयभीत हो गए हैं। कंदरा की भांति खुले उसके मुख को श्री राम ने अपने वाणों से भर दिया, फिर भी वो धराशायी नहीं हुआ। वो श्री राम पर प्रहार करने दौड़ा ही था कि उन्होंने एक तीखे वाण से उसका सिर काट दिया। कुंभकर्ण का कटा सिर जाकर रावण के सामने गिरा, जिसे देख वो व्याकुल हो गया। इधर कुंभकर्ण के रुंड को इधर से उधर दौड़ते छटपटाते देख राक्षस सेना में हाहाकार मच गया और धरती डोलने लगी। श्री राम ने उसके धड़ को दो टुकड़ों में काट दिया। पर्वत खंडों की तरह दोनों टुकड़े धरती पर आ गिरे। ये दृश्य देख देवताओं ने हर्षध्वनि की और प्रभु का गुणगान करने लगे। ये कथा सुनाते हुए भगवान शिव बोले, हे गिरिजे, इस प्रकार कुंभकर्ण जैसे अधम पापी राक्षस को भी प्रभु ने अपने हाथों सद्गति प्रदान की।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय प्रसारण। आज कलाकार थे ए हरिहरन, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 25वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखरसम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिकसङ्कटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतनप्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृतचर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागम् अगृह्णन् फ्रांसदेशस्य नीसनगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फ्रांसदेशस्य यात्रायाः परिणामे विशेषसूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेशसचिवः विक्रममिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30,000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिमबुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य गौतमबुद्धनगरस्य जेवरनगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इंडिगो एयरलाइन्स संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानं आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरु नगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानं अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊ नगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270,000 यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊनगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्ववायुदिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायुपरिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जूनमासस्य 15 दिनाङ्के अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवाराज्ये 26,000 वैश्विकवायुदिवससम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानां आईसीसी 20-प्रति-20 विश्वचषक क्रीडायां वर्मिंघम नगरस्य एजवेस्टन नगरे ग्रुपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 64 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर सवेरे के 7 बजे हैं। सेहतनामा में आइए अब जीवन को संतुलित करता योग इस विषय पर जानते हैं। जानकारी दे रहे हैं सुनील सक्सेना।
2: योग एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जो हजारों साल पुराना है। इसे आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन आधुनिक समय में योग के शारीरिक पहलुओं को व्यायाम और तनाव प्रबंधन के एक सौम्य रूप में बहुत लोकप्रियता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए मसौदा प्रस्ताव भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों द्वारा इसका समर्थन किया गया था। इस प्रस्ताव को सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में पेश किया था। योग रोजमर्रा की जिंदगी में संतुलित रवैया बनाए रखने के तरीके विकसित करता है और व्यक्ति के कामों को करने में कुशलता प्रदान करता है। योग की गतिविधियां लचीलेपन, संतुलन, समन्वय और शक्ति को चुनौती देने के लिए डिजाइन की गई है, जो शरीर की कार्य क्षमता और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाती है।
3: नमस्कार, मेरा नाम राधा कृष्ण है और मैं एक योगाचार्य हूँ। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि योग का जीवन में क्या महत्व है, योग कैसे हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देता है और मेरे जीवन में योग कैसे आया। यह तो एक अनोखी और रोमांचक यात्रा रही है। मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। बचपन से मेरा सपना था कि मैं भारतीय सेना में जाऊँ। इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। रोज दौड़ लगाना, व्यायाम करना, यह सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा था। करीब 9 वर्ष पहले मैंने सेना की एक परीक्षा दी और उसमें सफल भी हुआ, लेकिन मेडिकल जांच में पता चला कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। वहीं मेरा सपना टूट गया। बहुत दुख हुआ, बहुत निराश हुआ। उसी समय किसी एक मित्र ने मुझे बोला कि आप फिटनेस में तो अच्छे हैं, क्यों ना आप योग को अपना करियर बनाएं। योग एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, एक बार आप ट्राई करें। शुरुआत में मुझे लगा कि योग तो सिर्फ बुज़ुर्ग लोग करते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ पार्क में बुज़ुर्गों को योग करते देखा था। लेकिन जब मैंने योग करना शुरू किया तो मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। दिल्ली की सर्दियों में लगातार दौड़ लगाने और व्यायाम करने से मुझे सांस लेने में इसी बीच कठिनाई होने लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि मुझे फेफड़े में एलर्जी है, साइनोसाइटिस है और नाक की भी मेरी हड्डी बड़ी हुई है। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, एक अस्थमेटिक इन्हेलर भी दिया और सर्जरी कराने की भी सलाह दी। उसी समय मेरी योग की कक्षाओं में शोधन क्रिया सिखाई जा रही थी। मैंने उन्हें किया सूत्र नीति, जल नीति, कपालभाति और साथ ही साथ प्राणायाम। और इन सब को करने के साथ साथ मैंने शुरुआत में इन्हेलर का भी प्रयोग किया, लेकिन मुझे योग पर भरोसा था। लगातार अभ्यास से कुछ ही समय में मेरी समस्याएं बिना सर्जरी, बिना नियमित दवाइयों के ठीक हो गई। मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई, सिर्फ प्राणायाम, शोधन क्रियाएं की और जिससे मुझे चमत्कारी लाभ मिले। योग के इतने चमत्कारी लाभों को देखकर मैंने इसे अपने करियर में विकल्प के रूप में अपनाने का निर्णय लिया और फिर मैंने मुरारजी देसाई राष्ट्रयोग संस्थान से एक महीने का फाउंडेशन कोर्स किया, फिर 3-3 महीने के प्राणायाम के, मेडिटेशन के और योगासना के सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए, उसके बाद 6 महीने का वेलनेस इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया, और उसके बाद फिर मैंने योग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। और आज लगभग 6 वर्षों से मैं नियमित योग की कक्षाएं चला रहा हूं।

0: रूप से भी आपको संतुलित करता है। और एक बार आप योग को ट्राई करें और आप भी इसके चमत्कारी लाभ लें। धन्यवाद।
1: योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। योग मन और शरीर, विचार और क्रिया की एकता का प्रतीक है। एक समग्र दृष्टिकोण जो हमारे स्वास्थ्य और हमारे कल्याण के लिए मूल्यवान है। योग केवल व्यायाम के बारे में नहीं है, ये खुद दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना को खोजने का एक तरीका है।
2: नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा है, एक योगा ट्रेनर हूँ और आज सभी को, अपने सुनने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, योगा एक वैज्ञानिक पद्धति है, यानी कि योगा का साइंस से एक बहुत गहरा संबंध है। जिस प्रकार हम वैज्ञानिक रूप से समझते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन एनाटॉमी पे वर्क किया जाता है, जैसे कि व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी इमोशनल हेल्थ, ये सब चीज़ों पे हम साइंटिफिक रूप से वर्क करते हैं, मेडिसिंस वर्क करती हैं, उसी तरीके से योगा भी कंप्लीट हॉलिस्टिक हेल्थ देता है व्यक्ति को। जिस प्रकार हम मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें, तो योगा के द्वारा हम योगा में कितने प्रकार के आसनों द्वारा, प्राणायाम द्वारा व्यक्ति की एंजाइटी, घबराहट, अवसाद, डिप्रेशन, याददाश्त को मजबूत करना, इमोशंस को बैलेंस करना, तनाव दूर करना, काफी हद तक ठीक कर देते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ही ज्यादा कारगर है। उसी तरीके से जैसे साइंटिफिकली फिजिकल हेल्थ पे वर्क किया जाता है एक डॉक्टर के द्वारा, उसी तरीके से योग भी फिजिकल हेल्थ पर पूरी पूरी तरीके से वर्क करते हैं। जब हम योग के माध्यम से अलग अलग आसनों में जाते हैं, तो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली व्यक्ति की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसको बैलेंस बनाना आ जाता है अपने पोस्चर में, उसकी कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस अच्छे होने लगते हैं। तो टोटली फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। और अगर हम बात करें कि योगा में हम प्राणायाम कराते हैं, तो प्राणायाम के बहुत अलग अलग प्राणायामों से, अनुलोम विलोम से, भ्रामरी प्राणायाम से, उज्जायी से, हमारे ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी फंक्शंस अच्छे होने लगते हैं, सुधार आने लगता है। तो ये साइंटिफिकली भी हम इन्हीं चीजों पे वर्क करते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें हमारे ब्रेन और बिहेवियर के ऊपर, तो साइंटिफिकली ब्रेन और बिहेवियर को इम्प्रूव करना है तो हम मेडिसिंस का सहारा लेते हैं। जिस प्रकार से अगर व्यक्ति को कोई तनाव है, डिप्रेशन है, और योग के माध्यम से हम उसको मेडिटेशन द्वारा, ध्यान द्वारा, प्राणायाम द्वारा उसकी ब्रेन, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी इमोशन हेल्थ को स्वस्थ करते हैं। इसी के तरीके से हम उसको साइकोलॉजिकली उसको इम्प्रूव करने के लिए हम किसी भी व्यक्ति को उसकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, उसके बिहेवियर चेंज को ठीक करने के लिए कई हद तक हमारे आसन, हमारे प्राणायाम बहुत बहुत सुधार लेके आते हैं। और इसी तरीके से अगर हम ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी पे अगर हम वर्क करते हैं, तो यस, हमारे अलग अलग ऑर्गन पर इसका इफेक्ट पड़ता है। लंग्स है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग के लिए हम प्राणायाम करते हैं, बहुत हद तक इफेक्टफुल है। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बहुत हद तक इम्प्रूव होता है, जिससे हमारे हॉर्मोन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, हमारे लंग्स फंक्शन इम्प्रूव होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। जिस प्रकार हम प्राणायामों के द्वारा अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते करते हम अपने लंग्स की शुद्धिकरण कर लेते हैं, उसी प्रकार से आप मेडिसिन में भी देख सकते हैं। ये एक योग एक थेरेपी है, मेडिसिन फ्री थेरेपी है, जो व्यक्ति को एक बिल्कुल डिजीज फ्री लाइफ रखने की कोशिश करती है। कितने सारे आसनों से हमारे डिजीज पर वर्क करते हैं, जैसे हम डायबिटीज है तो वक्र आसन, अर्धमस्तेंद्र आसन बहुत हद तक वर्क करता है। इसी प्रकार से अगर सर्वाइकल इश्यूज हैं, तो हमारे भुजंग आसन या कटिशक्ति विकासक, इस तरीके के से जो आसन

0: होते हैं, ये हमारे अलग-अलग डिजीज पर पूरी तरह से वर्क करते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि योगा का एक साइंस से बहुत खास संबंध है और इसको एक कंप्लीट साइंस की तरह ही आज के टाइम पे आधुनिक युग में माना गया है, और योगा के समग्र स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाने का एक जो कला है वो योग है।
1: योग एक संपूर्ण जीवन शैली है जो न केवल रोगों से लड़ने में मदद करता है बल्कि व्यक्ति को आंतरिक रूप से सशक्त बनाता है। नित्य अभ्यास से जीवन में अनुशासन, संतुलन और स्थिरता आती है। यदि हम सभी योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें तो निश्चित रूप से हम एक स्वस्थ, सुखद और संतुलित जीवन जी सकते हैं।

0: जीवन को संतुलित बनाता योग कार्यक्रम सेहतनामा में आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे सुनील सक्सेना। इस समय आप आकाशवाणी रामपुर से प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे हैं।
1: दूर दराज के दुर्गम इलाकों, शहरों और गांव से इस वर्ष भी सर्व समावेशी योग की समन्वयकारी शक्ति की लहरें उठेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष की तरह इस 21 जून को भी पूरा देश सामूहिक योग प्रदर्शन में शामिल हो रहा है। आप भी परिवार और साथियों के साथ मिलकर इस योग से खुद को स्वस्थ रखें। स्थानीय स्तर पर अपनी भागीदारी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अब तक का सबसे बड़ा महोत्सव बना दीजिए। अपनी श्रेष्ठता से देश की धरती पर कर दिखाइए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग।
0: FM और मीडियम वेव के मीटर्स पर इस समय आप आकाशवाणी रामपुर से प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे हैं। हम आकाशवाणी के सभी श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, यातायात संकेतों और ट्रैफिक लाइट का पालन अवश्य करें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें, बहुत आवश्यक होने पर गाड़ी या बाइक सड़क के किनारे रोककर ही फ़ोन कॉल लें, नशे की अवस्था में वाहन ना चलाएं, ओवरटेक केवल सुरक्षित स्थान पर करें, पैदल यात्रियों और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का सम्मान अवश्य करें, वाहन चलाते समय लेन अनुशासन बनाकर रखें, सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें, सड़क पर धैर्य संयम और जिम्मेदारी का परिचय दें। याद रखें, आपका घर परिवार आपकी सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा में है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में याद रखें नंबर 112।
2: अरे अरे सुनो, देखो देखो, एक्सीडेंट हो गया।
3: अरे अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट।
4: अरे भाई कोई 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर, 100 नंबर डायल करो भाई साहब, जल्दी जल्दी।
5: 100 पे नहीं, 108 लगाओ, 108
6: नहीं, 112 लगाओ।
7: अरे भाई इसकी जान चली जाएगी, आप लोग एक ही नंबर बताओ, बार बार कंफ्यूज मत करो।
6: अरे भाई एक ही नंबर पर सारे काम, 112 लगाए, तत्काल पुलिस बुलाए, फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए।
8: हेलो 112।
9: नमस्कार 112 UP।
8: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है।
9: कृपया अपना शुभ नाम बताइए।
8: सुनील।
9: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है?
8: नहीं सर, सिर्फ एम्बुलेंस की।
9: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है। डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: तो सुना आपने, अब 112 पर मिलेगी आपको जीवन रक्षा संबंधी हर आपातकालीन सेवा। SMS करें या कॉल, ईमेल भेजें या 112 इंडिया मोबाइल ऐप पर मिलेगी आपको तुरंत सहायता। अब सिर्फ एक ही नंबर याद रखें, 112, और समझदारी से काम लें।
0: श्रोताओं, हमें कहना चाहिए नो टू प्लास्टिक, एकल उपयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें, कपड़े या जूट के थैले का प्रयोग करें, प्लास्टिक की बोतलों और कपों की जगह पुनः उपयोग योग्य वस्तुएं अपनाएं, प्लास्टिक कचरे को डस्टबिन में ही डालें, पर्यावरण अनुकूल यानी इको फ्रेंडली उत्पादनों को प्राथमिकता देना हमारा दायित्व है, हमारी माँ धरा की ओर। प्लास्टिक के स्थान पर कागज़, धातु या मिट्टी के विकल्प को अपनाएं, दूसरों को भी प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें और ख़रीदारी करते समय आवश्यक प्लास्टिक पैकेजिंग से बचें, किसी भी तौर पर अनावश्यक प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, कहें नो टू प्लास्टिक।
10: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
11: सामने हैं इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
12: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
11: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध,
10: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
11: जागिए और जगाइए
12: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
10: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
11: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलिथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
3: से नो टू प्लास्टिक।
0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही है वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
3: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
2: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ उन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
4: श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
2: मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में कल शाम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को अत्याधुनिक विषयों में दक्ष बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और उनके संघर्ष को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
5: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहनों भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं आज से शुरू हो रही हैं। एक रिपोर्ट।
6: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं।
7: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बाराबंकी जिले में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। वहीं अम्बेडकर नगर जिले में पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदली है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
8: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही हैं वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
9: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर सवेरे के 7:32 हुए चाहते हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे।

ख्वाहिशों ख्वाबों खुशियों को दरकिनार कर देते हैं, परिवार की खातिर ये असंख्य त्याग कर देते हैं, जीवन के संघर्ष में जुटा नहीं पाए खुद के लिए कुछ भी, अपनों की खातिर कमाया हुआ सब लुटा देते हैं। पैदल चलकर मीलों का फासला तय किया हो भले हर दिन, किंतु अपनी संतान की राह में फूल बिछा देते हैं। खुद के लिए खर्चा ना किया हो कौड़ी का कभी, परिवार के लिए बचत का आखिरी सिक्का भी लुटा देते हैं। भले सोए हों भूखे पेट संघर्ष के दिनों में, पर अपने परिवार को सजा कर थाली देते हैं। ये कमजोर आंखें, बेजान हड्डियां, लड़खड़ाती जुबान वाले लोग जो उम्र के अंतिम पड़ाव में एक कोने को अपना महल समझ बैठते हैं, असल में ये वो बुजुर्ग होते हैं जो आंगन में बरगद का पेड़ सदायित्व निभाते हैं। आ जाए मुश्किलें आंधी तो सबको बचाते हैं, कठोर धूप को अपने ऊपर से उतार देते हैं, छांव आराम की अपनों से छोटों को देते हैं। बिगड़ते मौसम या बदहाल जीवन भले जीते हैं आप, पर बच्चों को पक्का मकान और सुकून आराम देते हैं। तोड़कर मुट्ठी भर आसमान हमारी झोली भर देते हैं। वो जो आज झुकी कमर से आहिस्ता चलते हैं ना, तेज दौड़कर नाती पोतों को गोद ले लेते हैं। जी हाँ, वो जो आज झुकी कमर से आहिस्ता चलते हैं, तेज दौड़कर नाती पोतों को गोद ले लेते हैं। मायूस हो भले जीवन के संघर्ष से, किंतु अपने अनुभवों की कहानी से हमारी हर मुश्किल को सहज कर देते हैं। ये बुजुर्ग ही तो हैं जो हमारे आंगन में बरगद का पेड़ कहलाते हैं। लेकिन समय बदला, रिवायतें बदली, जिन्होंने सींचा अपने खून पसीने से हमें जीवन पर्यंत, चले कुछ रिवायतों को तोड़ें और इनके लिए वक्त से वक्त चुराने का मन बनाएं। इनकी बातों में बातें, हंसी में हंसी, खामोशी में चंचलता को मिलाने का एक वादा खुद से करें और निभाएं, और एक वादा हमसे भी कीजिए। रोज़ सुबह सवेरे कार्यक्रम में मिलने का वादा तो किया ना वादा, चलिए आपके से खूबसूरत वादे के साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे के सभी श्रोताओं को रेनू यादव का स्नेह भरा हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता गुन गुन नाता नमस्कार। श्रोताओं, आंगन में कोई भी पेड़ हो, हम उसको देखते हैं, उसके साथ खेलते हैं, जीवन की यादों को संजोते हैं और फिर हम बड़े हो जाते हैं। कई बार वो पेड़ हमें अखरने लगता है, हमें लगता है कि अगर वो कट जाता तो शायद वहाँ हम एक चबूतरा बना सकते थे, या मेज़ सजा सकते थे, या कुर्सियाँ सजा कर अपने दोस्तों के संग वक्त बिता सकते थे। बस यही होता है सोच का अंतर। कितना अंतर हो जाता है ना हमारी सोच में, जब हम एक पेड़ को काटने के बारे में सोचते हैं तो हम एक भावना को जन्म देते हैं जो काटने और बिखरने और बिखराव के साथ साथ बिगाड़ने पर भी उतारू हो जाती है। और कब ये भावना हमारे अंदर प्रवेश कर लेती है हमें पता ही नहीं चलता। ऐसी ही एक भावना हमारे अंदर प्रवेश करती है हमारे बुजुर्गों को लेकर, और शायद यही एक कारण है कि आज यानी कि 15 जून का दिवस विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। श्रोताओं, इस दिवस का उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण और भेदभाव के प्रति समाज को जागरूक करना है। श्रोताओं, इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2006 में बुजुर्ग दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज INPEA द्वारा की गई। बाद में वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की। हमारे लिए यह हैरानी की बात है कि हमारे देश भारत में भी ये दिवस मनाया जाता है, और हमारे देश के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और विश्व के अनेक देशों में आज ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर संगोष्ठियां, जागरूकता अभियान, चर्चा और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बुजुर्गों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। श्रोताओं, बुजुर्ग दुर्व्यवहार केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, इसमें मानसिक उत्पीड़न, अपमान, आर्थिक शोषण, संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी, सामाजिक अलवा भी शामिल है।
कई बार बुजुर्गों को पर्याप्त देखभाल, दवाइयाँ, भावनात्मक सहयोग या सम्मान नहीं मिल पाता, जो अपने आप में दुर्व्यवहार का एक रूप है। वैश्विक स्तर पर ये एक गंभीर सामाजिक चुनौती बनती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग हर 6 में से एक बुजुर्ग व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का अनुभव करता है। विशेषज्ञों की माने तो वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि अनेक मामले किसी के सामने नहीं आ पाते। और जैसा कि हमने कार्यक्रम के मध्य में कहा कि हैरानी की बात है कि हमारे देश भारत में, जहां हम संस्कृति समृद्ध हैं, जहां हम मानते हैं मातृ देवो भवः पितृ देवो भवः, ऐसी हमारी परंपरा है, यहाँ पर भी हमारे बुजुर्ग अकेलेपन और आर्थिक शोषण जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बदलती जीवन शैली, एकल परिवार और बढ़ती प्रवृत्ति और सामाजिक दूरी इन चुनौतियों को और ज्यादा गहरा करती है। बुजुर्गों के साथ किए गए दुर्व्यवहार की अनेक संकेत हैं, जिसे हम समझ सकते हैं कि कोई बुजुर्ग किस यातना को सह रहा है, जैसे कि अचानक उदासी, भय, आत्मविश्वास में कमी, शरीर पर चोट, अस्वच्छ जीवन शैली, सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाकर रखना या बैंक खातों या आर्थिक लेन देन में असामान्य परिवर्तन भी शामिल है। वर्ष 2026 में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की थीम है बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन वर्क, अर्थात जागरूकता से आगे बढ़कर बुजुर्ग दुर्व्यवहार की रोकथाम को प्रभावी बनाना। श्रोताओं, ये थीम हमें केवल समस्या को पहचानने के नहीं बल्कि उसके समाधान के लिए भी प्रभावी व्यवस्था विकसित करने का संदेश देती है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि समाधान दो स्तर पर किया जाता है। परिवार के स्तर पर हम बुजुर्ग को सम्मान दे सकते हैं, उनकी बातों को महत्व दे सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और वो अकेलापन महसूस ना करें। साथ ही साथ आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना उनकी सेहत के लिए बेहतर है। सामाजिक तौर पर हम सहायता प्रणालियों को मजबूत बना सकते हैं। पीढ़ियों के बीच संवाद बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्रोताओं, संत रहीम का एक दोहा आपने सुना पढ़ा होगा, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई ही काम कर सकती है, तलवार नहीं। यानी कि तीखे तल्ख समय में जहाँ हमारा अनुभव, हमारी बुद्धि काम न करे, वहाँ हमारे बुजुर्गों का अनुभव काम करता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। और एक और कुरीति जो हमारे देश सहित पूरी दुनिया में फैल गई है, वो है हमारे बुजुर्ग जोड़ों को जुदा कर देना। माता एक बेटे के साथ रहेंगी तो पिता दूसरे बेटे के साथ रहेंगे या बेटी के साथ रहेंगी। ऐसा कर हम बुजुर्गों पर मानसिक दबाव तो बनाते ही हैं, भावनात्मक तौर पर हम उनको तोड़ देते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, ताकि कोई भी बुजुर्ग दुखी होकर ये गीत ना गुनगुनाए।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है।

श्रोताओं, अगर आपने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है तो हम बता दें कि आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे। प्रभात की सभा में आपका साथ दे रही है रेनू यादव। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इन संदेशों के साथ।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है. घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स.
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें. TNC अप्लाई.
5: श्रोताओं, आज है 15 जून. आज वर्ष का 166वां दिन है, यानी साल को शानदार, यादगार और बेहतरीन बनाने के लिए हमारे पास 199 दिन शेष हैं. आज का इतिहास हमसे क्या कहता है, वो जानने से पहले जानते हैं कि आज का मौसम हमसे क्या कहता है. आज रामपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की पूरी संभावना है. और इस संभावना के मध्य हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि गर्मियों में सेहत का ख्याल रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नींबू पानी, छाछ और ORS का सेवन भी आप कर सकते हैं. दोपहर की तेज धूप में कहीं बाहर निकलने से बचें, सूती और हल्के रंग के वस्त्र पहनें और इस भीषण गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों का रखें विशेष ख्याल. और अब आइए देखते हैं कि इतिहास हमसे क्या कहता है. आज ही के दिन 1215 में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा पर मोहर लगाई गई. इसे विश्व इतिहास में नागरिक अधिकारों और कानून के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है. आज ही के दिन 15 जून 1929 में हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग की महान अभिनेत्री और गायिका सुरैया का जन्म हुआ. आज ही के दिन 15 जून 1937 में जन्म हुआ प्रख्यात समाज सेवी, जिन्हें ग्रामीण विकास, जन जागरूकता और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के माध्यम से देश में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनका नाम अन्ना हजारे. यदि हम बात करें किन लोगों ने हमें आज के दिन अलविदा किया, तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की बुलबुल, नाम सुरिंदर कौर, पंजाब लोकगीतों की महान गायिका, जिन्हें पंजाब की बुलबुल कहा जाता था. इन्होंने पंजाब की सांस्कृतिक विरासत को एक नई पहचान दी और आज ही के दिन 15 जून 2006 में इनका निधन हुआ. आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध जैज गायिका, जिन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ सॉन्ग के नाम से जाना जाता है, विश्व संगीत को नई ऊँचाइयाँ इन्होंने दी. न केवल विश्व में संगीत को, बल्कि विश्व संगीत को एक पटल पर लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया. 1996 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ और अमेरिका के प्रसिद्ध रेडियो प्रस्तुतकर्ता और वॉइस आर्टिस्ट केसी कैसिम की मृत्यु 15 जून 2014 को आज ही के दिन हुई. श्रोताओं, सुरैया को आपने कई फिल्मों में देखा होगा, मिर्जा गालिब, अनमोल खड़ी और विद्या जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और उनका गायन बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तक ज़रूर पहुंचा होगा. आज उनकी जयंती पर हम आपको सुनवाते हैं उन्हीं की गाया एक गीत.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे, और अब नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रोताओं, जनगणना का कार्य निर्धारित समय से पहले अंतिम दौर में पहुंच गया है। अभी तक जिले में 99.60% जनगणना का कार्य पूरा हो गया है। मिलक नगर पालिका व 3 तहसीलों के 16 ब्लॉकों में सर्वेक्षण कार्य मामूली का शेष बचा है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि यूपी ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। विशाल कृषि आधार, मेहनतकश किसानों, निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों और मजबूत औद्योगिक वातावरण के कारण उत्तर प्रदेश आज देश के प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यानिकी केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। अब हम अपने जिले रामपुर की बात करते हैं। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दरोगा, असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर, क्लर्क और अकाउंटेंट पदों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए फिजिकल टेस्ट एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य आज यानी सोमवार से शुरू हो गया है। पुलिस लाइन में शुरू होने वाली इस प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भर्ती बोर्ड के निर्देशानुसार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन और शारीरिक परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। श्रोताओं, अब हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशखबरी। वर्ष 1974 में स्थापित रजा लाइब्रेरी एवं संग्रहालय जल्द ही विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र बनेगा। यहां विश्व की तमाम भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी। इसके लिए अब तक रामपुर किले के 5 एकड़ हिस्से में फैली लाइब्रेरी का पूरा किले को पूरी 43 एकड़ भूमि में विस्तार होगा। चूंकि लाइब्रेरी में 17,000 पांडुलिपियों के अलावा चित्रकला, सुलेख तथा अन्य कई दुर्लभ धरोहर संरक्षित हैं, इस ज्ञान एवं संस्कृति की जीवंत परंपराओं को वैश्विक स्तर पर प्रसारित एवं प्रोत्साहित करते हुए लाइब्रेरी की कला, शिक्षा एवं धरोहर संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। पुस्तकालय बोर्ड की अध्यक्ष राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 15 अक्टूबर 2024 को किले की पूरी भूमि रजा लाइब्रेरी को सौंपने का निर्णय लिया था। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि रजा लाइब्रेरी में 17,000 पांडुलिपियां हैं। 7वीं से 19वीं शताब्दी तक की 500 से अधिक कुरान की प्रतियां हैं। इनमें से लगभग 300 सोने के पानी से लिखी व सजाई गई हैं। ऊंट की खाल पर प्रारंभिक कोफी लिपि में 7वीं शताब्दी में लिखी गई विशेष कुरान यहां सबसे बड़ी धरोहर में से एक है। पूरे विश्व में ऐसी केवल 2 प्रतियां हैं जिनमें एक यहां और दूसरी इराक में है। फारसी भाषा में अनुवादित और चित्रों से सुसज्जित रामायण की अत्यंत दुर्लभ कृति व 60,000 से अधिक मुद्रित पुस्तिकाएं यहां संरक्षित हैं। श्रोताओं, यदि आप अभी तक रजा लाइब्रेरी नहीं गए हैं तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि एक बार इस लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश करें और यदि हो सके तो कुछ किताबों का भी अध्ययन जरूर करें। और अब युवाओं के लिए ये संदेश कि यदि आप रुकेंगे नहीं, आप झुकेंगे नहीं, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। बुजुर्गों, जवानों और किसानों के नमन के साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे को समाप्त करने की अब रेणु यादव को अनुमति दीजिए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो ऐसा काम अवश्य कीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अगला प्रसारण सुनिए।
1: तो आइए सुनते हैं देश दुनिया के समाचार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
7: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
6: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
8: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
6: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
10: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16

0: एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चलेगी।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। 52वीं जी सरबराह 7 कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जेवर में नोएडा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। अमेरिका और ईरान ने 107 दिन से जारी जंग खत्म करने और आबनाए हुरमुज खोलने के मकसद से एक समझौते को कतई शक्ल दी है। आबनाए हुरमुज एक तंग आबी गुजरगाह है जहां से आलमी तेल सप्लाई का पांचवा हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल पर एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। इस अमन माहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे, जहां ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज इस माहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद जुमे को खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत पूरे खित्ते में अमन सलामती कायम होगी। इस माहदे में अमेरिका और ईरान से कहा गया है कि वो ईरान की न्यूक्लियाई अफजूदगी और उसकी इंतहाई ताकतवर यूरेनियम के खात्मे पर 60 दिन के अंदर अंदर मुज़ाकरात करें। ईरान की कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल ने कहा है कि लिबनान समेत सभी महाजों पर फौजी कार्रवाई आज रात से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी। खबरों के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी आ गई है। ब्रंट खाम तेल में आज सुबह 4% की कमी वाकई हुई, जबकि अमेरिका का वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट 4.6% से भी ज्यादा गिर गया। इधर एशिया में स्टॉक मार्केट में उछाल आया है। दुनिया के रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन समझौते का खैर मकदम किया है और इसे एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है, जिससे मगरबी एशिया में अमन की बहाली में मदद मिल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी स्लोवाकिया के सदर पीटर पेरेगिनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के शहर नीस के अपने दौरे का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद स्लोवाकिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर कल रात ब्रतिस्लावा पहुंचे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का एक अहम मौका फराहम करता है और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के नए मौके तलाश करने में मददगार साबित होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह भी कहा कि वो स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेगिनी और वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिको के साथ सूदमंद मुज़ाकरात के मुंतजिर हैं। 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का इस मुल्क के लिए यह पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म की यह दौरा अप्रैल 2025 में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया के दौरे के बाद हो रहा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल रात राजधानी ब्रतिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के वजीर खारजा जुराज ब्लेनर ने शानदार खैर मकदम किया। किसी भारतीय वजीर आजम का स्लोवाकिया का यह पहला सरकारी दौरा है। ब्रतिस्लावा पहुंचने पर गैर मुकीम भारतीय बिरादरी के लोगों ने नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। स्लोवाकिया के मौसीकारों ने वजीर आजम के पहुंचने पर वंदे भारत वंदे मातरम की धुन बजाई। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज से स्मृति एम पलुरती की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू हो रही है। तीन रोजा कॉन्फ्रेंस में G7 के सभी रुकन ममालिक शिरकत कर रहे हैं, जिनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। अरकान के अलावा फ्रांस ने आउटरीच शराकतदार मुल्कों की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, जनूबी कोरिया, कतर, सऊदी अरब, मुल्क शाम, यूक्रेन और मुत्तहदा अरब अमारात को भी मदऊ किया है। ये 13वां मौका होगा जब भारत एक शराकतदार मुल्क की हैसियत G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आउटरीच इजलास में शिरकत करेंगे। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम की शिरकत से आलमी जोग्राफियाई सियासत में भारत का अहम रोल उजागर होता है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हो रही है जब दुनिया को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, माशी गैर यकीनी सूरत हाल और नई टेक्नोलॉजी की तेजी से इर्तका के चैलेंज दरपेश हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जैसे ही इजलास शुरू होगा तो आलमी अदम तवाजुन को कम करना मेजबानी करने वाले मुल्क की G7 सदारत सबसे अहम तरजीह बन जाएगा। सरबराह कॉन्फ्रेंस के सरकारी फ्रेमवर्क के मुताबिक G7 के रहनुमा जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस, बैन अलावा अमन और सलामती, बाहमी इकतसादी तरक्की और अहम आलमी बहरान पर तबादले ख्याल करेंगे। ये तबादले ख्याल बंद कमरों में होंगे जो आज से शुरू हो रहे हैं। सरबराह इजलास में भारत की शिरकत आलमी जुनूब की तरजीहात और तशवीश को उजागर करने के लिए एक मौका फराहम करेगी, जबकि अहम आलमी मसाइल पर भी मुजाकरात होंगे। फ्रांस से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में वाकई नोएडा बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों की खिदमत आज से शुरू हो गई हैं। जेवर हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए पहली परवाज ने थोड़ी देर पहले उड़ान भरा। इस परवाज में MLA धर्मेंद्र सिंह 20 खवातीन समेत 172 किसानों के साथ हैं। ये वो किसान हैं जिनकी

0: मशीनें एयरपोर्ट के लिए हासिल की गई थीं। लखनऊ पहुंचकर ये किसान वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इंडिगो एयरलाइन की पहली परवाज लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट के लिए सुबह 7:05 पर रवाना हुई। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली बाकायदा कमर्शियल परवाज चलाई जाएगी।
1: यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का इफ्तिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी तकरीबन 3300 एकड़ जमीन हासिल की गई है। पहले मरहले में 1,20,00,000 मुसाफिरों की सलाहियत वाले इस एयरपोर्ट से मुस्तकबिल में 22,50,00,000 मुसाफिरों को सहूलियत फराहम की जा सकती है। ये मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और पड़ोसी रियासतों के लिए एक नई हवाई कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो की परवाजें लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज्यादा शहरों के लिए शुरू होने वाली हैं। दीगर एयरलाइंस की परवाजें भी जल्द शुरू होंगी। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए हवाई अड्डे से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनमें 90 जनरल और 10 डबल डेकर बसें शामिल हैं। लखनऊ से खबरनामे के लिए सुशील चंद्र तिवारी।
0: इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट तिब्बी तालीम के दाखिले के लिए नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एनटीए की सरकारी वेबसाइट neet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराए जाएंगे, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होंगे। एनटीए ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते की तफसीलात की तस्दीक करें। उसने उम्मीदवारों को यह भी मशवरा दिया है कि वह हिदायत पर अमल करें और साथ ही इतिलानामे पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। भारत में पिछले 12 साल के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के वसूलों पर मबनी काबिले जिक्र तब्दीलियां हुई हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए गए। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के मौजू के उन्वान से एक खसूसी फीचर नशर कर रहा है। आज हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के तसव्वुर के साथ जदीद बुलंद ढांचा तामीर करने के सरकारी इकदाम पर नजर डालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: किसी मजबूत और जदीद मुल्क की तामीर आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे पर मबनी होती है। पिछले 12 साल में भारत ने यकसर तब्दीली का एक बेमिसाल सफर तय किया है, जिसके तहत बुनियादी ढांचे पर सरकारी अखराजात में 6 गुना इजाफा किया गया है। इस तरह 2014-15 ये अखराजात 2,00,000 करोड़ रुपए के थे, जबकि रवा माली साल में ये अखराजात 12.2 लाख करोड़ रुपए के हो गए। मुल्क के शहरी ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाब लाया गया। भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क को तकरीबन 5 गुना तौसी दी गई। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली की अलीशा ने, जो दिल्ली मेट्रो से रोजाना सफर करती हैं, अपने सफर के तजुर्बे के बारे में बताया।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत में आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। कौमी शाहरा नेटवर्क में इजाफा करके इसे 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। रेलवे के शोबे में भी बड़ी तब्दीलियां नुमाया हैं। भारतीय रेलवे से मुतालिक बजट में तकरीबन 9 गुना इजाफा कर दिया गया है, जिससे इस पूरे नेटवर्क में जदीदकारी की गई है और मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात मुहैया की गई हैं। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए लखनऊ से वंदे भारत की एक मुसाफिर पूजा ने कहा कि ये ट्रेन बहुत आरामदेह है, जिससे वक्त की भी काफी बचत होती है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि सफर करने में टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे भी पसंद आए, क्योंकि इसकी वजह से यात्रियों की सुरक्षा बनी रहती है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 19वां मुंबई बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल MIFF आज से शुरू हो रहा है। शाम को मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में फिल्म फेस्टिवल की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद होगी, जबकि सुबह से ही फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इस साल मुकाबला जाति जुमरे में 52 बैन अल-अक़वामी और 92 कौमी फिल्मों में समेत कुल 144 फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि 13 मुल्कों के फिल्म साज फिल्म फेस्टिवल में नुमाइंदगी कर रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। अभी तक आपने फिल्म पा और अमावस में शिल्पा रॉय और पलक मुच्छल के साथ अरमान मलिक को सुना। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इन संदेशों के साथ।
1: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। इस समय तक आपने फिल्म तिनिग्री और अक्टूबर में पलक मुच्छल और अरमान मलिक के गाए गीत सुने। आइए अब सुनते हैं फिल्म बदला में अरमान मलिक का गाया ये गीत।

इस समय आप आकाशवाणी रामपुर से प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे हैं और हम आपको नई फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स में। कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म हिचकी से गायक कलाकार शिल्पा राव।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स, एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए देवरिया और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल, आलेख और स्वर है बृजेश चंद्र शर्मा का।
2: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना के साथ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत चयनित लाभार्थियों में स्वीकृत पत्र का वितरण किया गया। जिले में उत्तर प्रदेश आरक्षित नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा का आयोजन जिले में 12 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हो गया। विकास के क्षेत्र में जिले को प्रदेश का रोल मॉडल बनाने के लिए जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने अपने अधिकारियों के साथ बैठकें कर विकास की गति को और अधिक तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। विकास कार्यों का क्रियान्वयन पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। लापरवाही मिलने पर अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जल स्तर एवं वर्षा संबंधी आंकड़ों का नियमित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कटान रोधी योजनाओं को स्वसमय पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा कि जिले की बाढ़ से संबंधित 3 तहसीलों में से बरहज व रुद्रपुर में बाढ़ आने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसे में संभावित बाढ़ वाले क्षेत्र में सभी जरूरी एहतियातों को स्वसमय पूरा कर ले, जिससे कि आम जन को कोई समस्या न हो। बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर सिंचाई व बाढ़ विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिले के सलेमपुर, बरहज व रुद्रपुर तहसील में राज्य स्तरीय मार्ग एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस दौरान डूबे व्यक्तियों की खोज, बाढ़ के दौरान भवन ध्वस्त होने पर लोगों को बचाना आदि का सजीव प्रदर्शन किया गया।
3: हमारे जिले में बाढ़ विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा लगातार इसमें मॉनिटरिंग करके जो बाढ़ से बचाने हेतु तटबंध बनाने होते हैं उसके कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है, ताकि हम लोग कोई कटान ना हो और कोई भी आम जनमानस को किसी भी तरह का कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। उसके साथ हमारी पूरी बाढ़ की तैयारी भी है, हमारे बाढ़ चौकी की तैयारी है, तो जिला पूरा तैयार है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आता है तो सिचुएशन को एक साथ जोड़कर फेस कर सकते।
2: विगत दिनों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। साथ ही जिले में 5,27,000 पौधरोपित किए जाने के लक्ष्य के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि जलवायु संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने एक पेड़ माह के नाम पौधा लगाने और उससे संरक्षित करने के लिए आह्वान किया।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए 9 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में सभी जगहों पर सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी और समाज के सभी लोग एक एक पेड़ अपने माँ के नाम पर लगा रहे हैं। केवल पेड़ ही नहीं लगाएंगे, बस इस पेड़ की सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी।
2: केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए संचालित महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर वृहद रूप से गर्भवती महिलाओं की जांच करते हुए उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गई। इस दौरान 105 हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को चिन्हित करते हुए उचित परामर्श दिया गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुलकी ने सीएम डैशबोर्ड से संबंधित कार्य परियोजनाओं का समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्वक समयबद्धता के साथ परियोजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कि कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क निर्माण में अनावश्यक विलंब पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत 14 ऐसे बच्चे जो कक्षा 9 अथवा उससे अधिक की कक्षाओं में अध्ययनरत है, उन बच्चों में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह द्वारा विकास भवन के गांधी सभागार में लैपटॉप वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर वे अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाते हुए अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जन जागरूकता जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी टीम भावना के साथ कार्य करें, जिससे कि योजनाओं का लाभ आम जन को मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी, शिक्षक एक साथ मिलकर टीम भावना के साथ कार्य करें। अभिभावकों में जन जागरूकता लाना जरूरी है, इसके लिए शिक्षक अभिभावक बैठकों का आयोजन नियमित रूप से करें और अधिक बच्चों का नामांकन प्रसिद्ध विद्यालयों में कराने के लिए प्रेरित भी करें।
1: देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर तथा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में जनपद गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रसिद्ध देवालयों में रुद्राभिषेक पूजन आदि कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की कामना की एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति देते हुए गाँव में वृक्षारोपण भी किया गया। विगत दिनों 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। उत्साह उस समय और दुना हो गया जब गाजीपुर के पलिया गांव निवासी उमेश राय पश्चिम बंगाल में तथा गाजीपुर के ही कमसड़ी गांव निवासी कौशिक राय असम में मंत्री बनाए गए। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने कहा कि गाजीपुर जनपद के इन प्रतिभाओं के विभिन्न प्रदेशों में मंत्री बनने से युवाओं में यह संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता भारत के किसी कोने में पैदा होकर किसी भी राज्य में मंत्री पद को सुशोभित कर सकता है। गाजीपुर से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला एवं बिहार बंगाल सहित पूरे उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लखनऊ तक 341 किलोमीटर की अपनी सुगम यात्रा के लिए प्रसिद्धि पा चुका है। गाजीपुर के हैदरिया से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न केवल यात्री वाहनों के लिए बल्कि ट्रकों, मालवाहक वाहनों एवं किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। जनपद गाजीपुर में आपदा प्रबंधन के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट राम भवन के नेतृत्व में पिछले दिनों गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से बाढ़ राहत एवं अन्य आपदा के नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल तथा मोबिलाइजेशन अभ्यास किया गया। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर गंगा तट पर अवस्थित है एवं इसका एक लंबा क्षेत्रफल गंगा के किनारे ही अवस्थित है। ऐसी स्थिति में अक्सर आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ एवं जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से यह अभ्यास किया जिससे आने वाले समय में बाढ़ राहत का कार्य सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके।
6: यूपी के जितने भी हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हर जगह तैयारी की समीक्षा के लिए 11 की टीम है बनारस से यहाँ पे आई थी गाजीपुर में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका मकसद यही था कि बारिश शुरू होने वाली है और जब भी बारिश होती है तो फ्लड सीजन शुरू हो जाता है, उससे पहले हमारी क्या तैयारी है बेसिकली उसकी समीक्षा के लिए एक मॉक एक्सरसाइज किया गया था। और इसका यह मकसद ये भी था कि लोगों में थोड़ा सा एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि हम फुली प्रिपेयर्ड हो जाएं किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए।
5: पिछले दिनों गाजीपुर जनपद में एक दुखद घटना भी हुई। प्रसिद्ध होटल व्यवसायी आलोक राय के पुत्र विनीत राय की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए तत्काल अपराधियों के खिलाफ इनाम घोषित कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी वैभव कृष्ण एवं पुलिस अधीक्षक ईरज राजा के नेतृत्व में लखनऊ एसटीएफ की टीम ने विनीत राय हत्याकांड में शामिल 1,00,000 के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। गाजीपुर के दो युवा पर्वतारोही खिलाड़ी

0: सैनिकों ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा लहराकर परचम फहराया है। गाजीपुर के नौली गांव निवासी पुनीत श्रीवास्तव, मर्दा क्षेत्र के सरी मुबारक निवासी अंकित चौबे ने लगभग 8 दिनों के अखथ प्रयास के बाद बीते 19 मई को सुबह 11 बजे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का सफर पूरा कर लिया एवं -17 डिग्री तापमान होने के बाद भी तिरंगा फहराकर एक मिसाल कायम की। जनपद गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के नेतृत्व में लोगों को दिन प्रतिदिन त्वरित न्याय सुलभ हो रहा है। 10 दिनों के अंदर ही 700 से ज्यादा राजस्व मामलों का निपटारा कर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने गाजीपुर के लिए एक मिसाल कायम की एवं विभिन्न राजस्व निस्तारण के क्रम में 140 हेक्टेयर जमीन भी खाली करा ली गई है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि अनुचित रूप से राजस्व कर्मियों का विरोध करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी बरसात से पूर्व जनपद के चिन्हित तालाबों, पोखरों आदि को खाली करा लिया जाएगा।
1: राजस्व कर्मचारियों को काम न करने देना, राजस्व कर्मचारी अधिकारियों के साथ गुंडागर्दी करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह का कृत्य अगर कहीं पे किया जाएगा तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और मेरा जनपद गाजीपुर की जनता को ये कहना है कि इस तरह का कृत्य में ना पड़े और अगर ये जानकारी आएगी तो फिर हम लोग सब कार्रवाई करेंगे, शासकीय कार्य में बाधा ना पड़े। यहाँ पे पीड़ित जनता भी है जिसका कार्य हम लोग डेली जनता दर्शन भी करके सुनवाई करते हैं और न्याय करने का प्रयास करते हैं।
0: पर्यावरण दिवस के दिन प्रारंभ होकर वृक्षारोपण अभियान को विशेष गति दी जा रही है जिसमें जनपद गाजीपुर में वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण स्थान बना सके। प्रख्यात पर्यावरणविद एवं गाजीपुर के मूल निवासी कृष्णानंद राय ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को गाजीपुर एवं वाराणसी में वृक्षारोपण कर पूरे भारत में पर्यावरण संबंधी बैठकों को वृक्ष के नीचे ही करने की सरकार से मांग की। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर के बैजलपुर गांव निवासी कृष्णानंद राय 40 वर्षों से साइकिल से यात्रा कर लाखों की संख्या में वृक्षारोपण कर लोगों के लिए पर्यावरण को जागरूक कर रहे हैं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है प्रेरक प्रसंग। आज की प्रेरणा है मुंशी प्रेमचंद।

एक बार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित एक सभा में बुलाया गया। व्याख्यान के उपरांत जलपान के दौरान एक छात्र ने उनसे पूछा, आपके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है? प्रेमचंद जी बोले, मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा ये है कि ईश्वर मुझे सदा मनहूसों से बचाए रखे। इतना कहकर मुंशी प्रेमचंद ने एक जोरदार ठहाका लगाया। गंभीर का पर्दा हट चुका था। वातावरण में चारों ओर हंसी खुशी छा गई। प्रेमचंद जी की हंसी बहुत मशहूर थी। बहुत से लेखकों के बारे में मशहूर है कि वो ऐसे कागज पर लिखते हैं, फला मूड में लिखते हैं और कोई फला किस्म की खास कलम से लिखते हैं, मगर उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद इस दिखावटी तामझाम से कोसों दूर थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, मुंशी जी आप कैसे कागज और कैसे पेन से लिखते हैं? पहले तो सवाल सुनते ही मुंशी प्रेमचंद ने जोरदार ठहाका लगाया, फिर बोले, ऐसे कागज पर जनाब जिस पर पहले से कुछ न लिखा हो, यानी कि कोरा हो, और ऐसे पेन से जिसका निब न टूटा हो। फिर थोड़ा गंभीर हुए और बोले, भाईजान ये सब चोंचले हम जैसे कलम के मजदूरों के लिए नहीं है। ऐसा सादा सा जीवन जीते थे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। उस जमाने में जी निप चला करती थी, होल्डर में लगाकर वो उसी से लिखते थे, बीच बीच में उसी से अपना दांत भी खोदते जाते थे। वो जब लिखने बैठते तो उनके होंठ स्याही से रंग उठते थे। उत्तर प्रदेश के गवर्नर सर मालकम हैली ने जब सुप्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद को यह संदेश भिजवाया कि वो उन्हें राय साहब का खिताब देना चाहते हैं, चिंतित हो गए वो। उनकी पत्नी ने इस चिंता का कारण पूछा तो बोले, गवर्नर साहब मुझे राय साहब का खिताब देना चाहते हैं। पत्नी बोली, तो इसमें चिंता कैसी, ले लीजिए, लेकिन सिर्फ खिताब ही देना है या कुछ और भी? पत्नी ने पूछा, इशारा कुछ और के लिए भी है। तो फिर ले लीजिए, इतना क्या सोच रहे हैं? लेकिन तब मैं जनता का आदमी न रहकर पिट्ठू बन जाऊंगा। पिट्ठू? ये सवाल किया उनकी पत्नी ने। वैसा ही जैसे और लोग हैं। अभी तक तो मैं जनता के लिए लिखता हूं, पर राय साहब बनने के बाद सरकार के लिए लिखना पड़ेगा। फिर ऐसा गवर्नर को क्या उत्तर दीजिएगा? पत्नी से सहमति पाकर प्रेमचंद खिल उठे, बोले, लिख दूंगा, जनता की राय साहबी ले सकता हूं, सरकार की नहीं। ऐसे थे मुंशी प्रेमचंद और उनके जीवन से जुड़े हुए अनेक प्रसंग।

0: जिनकी कहानियों के पात्र साधारण थे पर उनके जीवन संदेश असाधारण थे, ऐसे मुंशी प्रेमचंद्र आज के कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग की प्रेरणा थे। एफएम और मीडियम वेव के मीटर्स पर इस समय आप आकाशवाणी रामपुर से प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे हैं।
1: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
2: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी लखनऊ से उर्दू कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: आज के उर्दू प्रोग्राम के साथ मैं शम्सुल आरफीन और मेरे साथ हैं
4: आसिफ इकबाल।
3: सलाम अर्ज है।

0: जी हाँ, ये नगमा इतना खूबसूरत है कि अपने जमाने में इसने धूम मचा दिया। और मजेदार बात यह है कि आज भी ये नगमा लोगों की जबान पर मचल जाता है और वो गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं।
1: इस मशहूर शायर को अदबी खिदमात के लिए बहुत सारे एजाजात से नवाजा गया, जिसमें सबसे बड़ा अदबी एजाज ज्ञानपीठ एजाज अता किया गया।
0: उम्र के आखिरी बरसों में सेहत के मसाइल ने उन्हें घेर लिया, मगर कलम और फिक्र का रिश्ता बरकरार रहा। उनके अशआर मुसलसल पढ़े और सुने जाते रहे।

0: 13 फरवरी 2012 का दिन उर्दू अदब के लिए बेहद खसारे का दिन साबित हुआ।
1: जी हाँ, 13 फरवरी 2012 के दिन अलीगढ़ में अदब का दरख्शां चराग बुझ गया। शहरयार 75 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए।
0: सामईन, ये था हमारा आज का खसूसी उर्दू प्रोग्राम लफ्ज़ों के तीन जादूगर इब्ने इंशा, गोपी चन्नारंग और शहरयार। कैसा लगा आपको? अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।
1: आप अगर हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। सामईन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन
0: और आसिफ इकबाल को दें इजाज़त।
1: आदाब।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।

0: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं वंदना शुक्ला और रत्ना शुक्ला के गाए अवधि युगल गीत। लीजिए इनके स्वरों में सबसे पहले सुनिए ये देवी गीत।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में राग गत चौटाला पर बहाउद्दीन डागर का रुद्र वीणा वादन सुनिए।

इस समय आप कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत राग गत चौटाला पर बहाउद्दीन डागर का रुद्र वीणा वादन सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

दुआ है कि समय का हर पल आपके लिए अनमोल बने और जीवन का हर अध्याय सफलता की मिसाल बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम आपके अनुरोध पर के सभी श्रोताओं को रेणु यादव का स्नेह भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म लोफर से, गायक कलाकार आशा भोसले, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इस गीत के को सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय अनिष्का राधिका गजभिये, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और महराज जहां, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, बेडरी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची कर्मकर, तनु कर्मकर, सुरजा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, घाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अनमोल बाठे, वैशाली बाठे, सरोज चौक अमरावती।

दुआ है कि समय का हर पल आपके लिए अनमोल बने और जीवन का हर अध्याय सफलता की मिसाल बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम आपके अनुरोध पर के सभी श्रोताओं को रेणु यादव का स्नेह भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म लोफर से, गायक कलाकार आशा भोसले, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इस गीत के को सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी। डोंगरगांव जिला राज नांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय अनिष्का राधिका गजभिये, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और महराज जहां, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, बेड़री से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची कर्मकर, तनु कर्मकर, सुरजा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, घाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अनमूल और अनमोल बाठे, वैशाली बाठे, सरो चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शुएब खान, मुस्तैद, आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। प्रभात की सभा में आपका साथ दे रही है आपकी रेडियो साथी रेणु यादव। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की अनुरोध पर। बोरखेड़ा प्रमिलागंज जिला उज्जैन से विनोद मूढ़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूढ़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूढ़त। पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज बडोदे और बीटी बडोदे। गरीब नवाज कॉलोनी पंद्रह नगर इंदौर से हमारे श्रोता हैं रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विकी रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। चांडोर विस्वा तालुका नांदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं नारायण भाऊ खर्चे, रक्षाताई खर्चे, ललिता संजना खर्चे, गणेश और कार्तिक खर्च से, साथ ही मालती चौधरी और स्वाति प्रयाग चौधरी। परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, अरफा खान, इल्मा खान, असलम सौफी और गंज टंडवारा से शमशुल कमर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदे मीका, बलविंदर विरक और जीतेक विरक। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। लेवाखेल मोहल्ला चांदूर विस्वा से नारायण भाऊ, विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे और परिवार के सभी सदस्य। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा रानी और हिना कौसर। कटरा चांद खां मौर्या मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हमारे श्रोता हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदना मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, एरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दत्तरेंगी से भागवत वर्मा। बेड़री से हमारे श्रोता हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सभासेरे। कस्बा शीशगढ़ से ये ख़त्म तक आया है, लिखने वाले हैं गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी और परिवार के सभी सदस्य। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जीतेक विरक और मीका विरक। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। करोला मुरादाबाद से अयूब खां, इरम गुड़िया, शुएब खां और नवेद खां। सिंधौली मीरगंज से जीशान वारसी। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे। लुधियाना से हमारे पास ये खत आया है, लिखने वाले हैं विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलमपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, रामापुरी और आरएसपुरी। सहारनपुर से सुरेश नारंग और आशु नारंग। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत सुधीर का और फिल्म का नाम है भाभी की चूड़ियाँ।

से हरदेव मीका बलविंदर विरक और जीतेक विरक, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास, मानिकपुरी रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, मोहल्ला चामुंडा से हमारे श्रोता हैं इंतजार राही, शादाब राही, मेहताब निशा, सिकंदर राही, साहिल अंसारी और रहबर गली, दुबिहार नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंभाड़कर, श्रीमती सरिता गंभाड़कर, सिद्धांत गंभाड़कर, प्रिंस एकांश गंभाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गंभाड़कर, श्रीमती वैशाली गंभाड़कर, श्वेता सुमित गंभाड़कर और ध्वनि गंभाड़कर, कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इद्रिसी और मोहम्मद फरहान इद्रिसी, इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्ल्यू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां और वलीउल्लाह नूरजहां, जेल रोड रायगढ़ से हमारे श्रोता हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिपा तिवारी, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली, मोहल्ला पोस्ट ज़िला जाफराबाद ज़िला जालनाहुन से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, जतुताई राजे जाधव, संचित सोहम, प्रणाली सानवी और परिवार के सभी सदस्य, दीदार रेडियो श्रोता संघ बलराम गेट कासगंज से अहम असलम सैफी, जुबिनिशा बेगम, अक्रम सैफी, आबाद खान।

इस गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके अनुरोध पर समाप्त करने की रेणु यादव को अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे एक दिन। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर सवेरे के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में सुनिए 1950 के दशक के फिल्म हिट्स।

कार्यक्रम सुनहरा दौर के अंतर्गत आज आप 1950 के दशक के फिल्म हिट सुन रहे हैं। अभी तक आपने फिल्म चोरी चोरी और 16 साल में लता मंगेशकर और आशा भोसले के गाए गीत सुने। आइए अब सुनते हैं गीता दत्त और सुरवीर सेन को फिल्म हम भी इंसान हैं फिल्म में।

कार्यक्रम सुनहरा सफ़र में अभी आपने गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म आर पार और उसके बाद फिल्म नागिन में लता मंगेशकर को सुना। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मधुमति से गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और उनके साथी। सुनहरा दौर के अंतर्गत आज आप 1950 के दशक के फिल्म गीत सुन रहे हैं।

सुनहरा दौर, अभी आपने सुना फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है धरोहर। आज सुनिए धारावाहिक और फन बेमिसाल है कि दूसरी कड़ी।

धारावाहिक और फन बेमिसाल है। चार बेत के सफर पर आधारित इस धारावाहिक की पहली कड़ी में आपने सुना कि चार बेत की इब्तदा हजारों साल पहले अफगानिस्तान में चार बेता के नाम से लोक संगीत के रूप में शुरू हुई। अफगानिस्तान के बर्फपोश पहाड़ों, हसीन वादियों और खुशनुमा सब्जाजारों से गुजरकर पश्तून कबीले के साथ सरहदी इलाकों में आई, जो सात जबानों की सरजमीन कहलाता था। यहाँ उर्दू, फारसी, पश्तो, हिंद को, चित्राली, कोहिस्तानी, गुजरी और पंजाबी जबानें बोली, लिखी और समझी जाती थी, लेकिन पश्तो और हिंद को सबसे बड़ी जबानी थी। सरहदी और अफगानी जंगजू कौमें थी। हम मिजाज होने की वजह से दोनों कौमों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और हिंद को भाषा में भी चार बेता लिखा और पश्तो चार बेता की रजज की धुन में ढोल, मजीरा, दफ, छड़े, सुरना और रबाब की संगत में गाया जाने लगा। हिंद को चार बेता गाने का नाम, अंदाज और शैली भी पश्तो चार बेता जैसी ही रही। अगर कुछ बदला तो सिर्फ जबान थी। इसे गाते और सुनते वक्त भी दिल में जोश, वलवला और जज्बात की लहरें उठकर जमे हुए खून को आग की तरह पिघला देती है। और फन बेमिसाल है। चार बेत के सफर पर आधारित आइए सुनते हैं आज के इस धारावाहिक की आगे।

अगर तारीखी नजरिए से देखा जाए तो उत्तरी भारत के इलाकाई रुहेलखंड में चारबैत की जन्मभूमि रियासत रामपुर 1774 में कायम हुई थी और इससे पहले 1637 में शाहजहांपुर और 1713 में फरुखाबाद और कायमगंज की पठानों की कॉलोनियां कायम हो चुकी थीं। 1742 में रोहिला सरदार नवाब अली मोहम्मद खान ने सारी रोहिलखंड पर अधिकार कर लिया था। 1752 में नवाब नजीबुद्दौला ने नजीमाबाद की बुनियाद रखी और लगभग इसी जमाने में नवाब अमीर खान ने रियासत टोक और नवाब अब्दुल गफूर खान ने जावरा में पठानों की हुकूमत कायम कर ली थी। नवाब अली मोहम्मद खां, नवाब अमीर खां और नवाब नजीबुद्दौला तीनों शासक अफगानिस्तान और सरहदी इलाकों से आए हुए लोग थे, लेकिन रियासत रामपुर आबाद होने यानी 1774 से पहले चारबैत की आवाज सुनाई नहीं देती।

0: इसकी वजह यह है कि नवाब अली मोहम्मद खां सूबेदार होने की वजह से मुगल दरबारी सभ्यता में रंग चुके थे। रुहेलखंड की राजधानी आंवला में तानसेन खानदान के गायक, वादक और शायर जमा हो गए थे। उनके बेटों में नवाब अब्दुल्ला खां, नवाब सादुल्ला खां, नवाब मोहम्मद यार खां अमीर के दरबारों में भी संगीत और शायरी का बोलबाला था। पश्तो शायरों के अलावा उर्दू शायर कायम चांदपुरी और मुसफ़ी का कलाम दरबारों और रोहिला सरदारों की महफिलों में पसंद किया जा रहा था।
1: ये दिल भरा है नब नम रहा है आँखों में, कभी जो रोए थे खून जम रहा है आँखों में। तेरे कोचे हर बहाने मुझे दिन को रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना।
0: नवाबों और सरदारों के रहन सहन और ज़बानो अदब पर मुगल तहजीब का पूरा असर पड़ चुका था, लेकिन आम रोहेलों का इस तहजीब से कोई ताल्लुक नहीं था। वो अपनी रिवायात को सीने से लगाए कबाइली जिंदगी जी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी कबाइली जुबान पर भी इलाकाई जुबानों का असर पड़ने लगा। कल्बे अली खान फाइक कहते हैं,
2: रोहेलखंड और फरुखाबाद वगैरह में नौवारिद अफगानी और पंजाबी वाशिंदों ने इस इलाके की जबान और तहजीबी कदरों को भी बदल डाला। 250 साल में उनकी कई पुश्तें गुजर चुकी, लेकिन वो आज भी पंजाबी कहलाते हैं, जबकि उनकी जबान उर्दू हो चुकी है। उर्दू जबान पर पश्तो और पंजाबी लहजे का असर साफ दिखाई देता है।
0: अदबी जुबान कितनी ही बदल जाए, लेकिन बोलचाल की जुबान पर असर कम ही पड़ता है। मशहूर स्कॉलर इम्तियाज अली खान अर्शी के बकौल, 20वीं सदी में भी पश्तो के ऐसे 20 लफ्ज हैं जिन्हें पठान औरतें रोजमर्रा की बोलचाल में घरों में बोलती हैं।
3: अफगानिस्तान से हिजरत करने वाले पठान हजरात जब यहाँ आए तो वो यहाँ की आबो हवा में, यहाँ के रीत रिवाज में रच बस गए। काफ़ी अरसे तक उनके ऊपर अपनी मादरी जबान पश्तो का असर रहा, लेकिन वो जबान पश्तो उर्दू में घुल मिल गई जिनका इस्तेमाल यहाँ की औरतें या पठान औरतें करती हैं। जैसे पश्शे, पश्शे का मतलब है बिल्ला, बिल्ली को बुलाने के लिए पश पश और भगाने के लिए पशे पशे कहा जाता था। एक दूसरे

इस 110 साल पुरानी चारबैत को सुनकर ऐसा लगता है जैसे उर्दू चारबैत गो पश्तो या हिंद को चारबैता का पाबंद नहीं है, बल्कि जो ख्याल उसके दिमाग में आया है उसे आजादी के साथ तंबल की ताल पर गा रहा है। इसी आजादी ने चारबैत की हैयत में काफी तब्दीलियां

0: चारबैत के सिलसिले में जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ अब्दुल करीम खां की जात और उनकी निजी महफिल तक महदूद था। उनके कानों में पश्तो चारबैता की रजस धुन और अंदाजी बयान पड़ा हुआ था। रबाब, सुरना, दफ, झांझ, छड़े, घड़ा जैसे साज या तो मौजूद नहीं थे या फिर साजिंदे चारबैत की संगत से घबराते थे। फिर भी अब्दुल करीम खां लोगों को जमा करके सिर्फ तंबल पर चारबैत की ट्रेनिंग दे रहे थे।
1: सितमगढ़ घर के पहलू में जाने के
2: जब तक ये वो भजिया
1: दो ही तो बोल रहे हैं इसके पहले इसकी तरकीब बताओ क्या है क्या क्या सुन गुनगुनाओ पहले नहीं फिर मैं बताऊँ
3: सीधा
1: तुम अपनी धुन पढ़ो
3: बताइए कौन सी धुन है
1: घर के पहलू में
3: तो आप ही पढ़े ऐसे भी आप ही पढ़े
0: रामपुर के पहले नवाब नवाब फैजुल्ला खां नई रियासत के इंतजामात अवध के हुक्मरान नवाब शुजाउद्दौला की रोहिलों से पैदाइशी दुश्मनी और अंग्रेजों की साजिश में उलझे हुए थे और नवाब फैजुल्ला खां के जानशीन नवाब शास्त्रीय संगीत और तवाइफों के संग रंगरलियों में खोए हुए थे और बासर रोहिला सरदारों को चारबैत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ इतना जरूर हुआ कि मेहनत मजदूरी करने वाले और कम पढ़े लिखे लोग चारबैत में दिलचस्पी लेने लगे। इसे पठान राग भी कहा जाने लगा।
4: चारबैत रामपुर या रोहिलखंड में जब आई तो इसे पढ़े लिखे लोगों का कोई ज़रिया नहीं मिला था जिनके ज़रिए आए, बल्कि जो रोहेले वहाँ पर जंगों में मसरूफ़ रहते थे, घरों से दूर रहते थे, उनके पास अपना दिल बहलाने का कोई ज़रिया नहीं था, तो वो चारबैत का सहारा लेते थे। और चारबैत की इब्तिदा चूँकि पश्तो से हुई थी, इसलिए एक अलग तबका बनता चला गया जिसने चारबैत को अपनाया। और वही तबका जब यहाँ पर आया तो उसमें पढ़े लिखे लोग शामिल नहीं थे, बल्कि मामूली पश्तो जानने वाले जो यहाँ आने के बाद उर्दू से वाकिफ़ हुए, और उर्दू से वाकिफ़ होने के बाद उन्होंने के मकामी तलमीहात और मकामी वाक़यात के तहत उन्होंने चार बैठे कही।
0: बस उन्हें इतना याद था कि जब कभी दिन भर की लड़ाई से फुर्सत पाकर फौजी रात को बैठा करते थे तो किसी न किसी को चार बैठा भूला बिसरा गीत बनकर उनके अधरों पर थिरकने लगता।
1: अरे

0: दरबारी, मनसबदार, जागीरदार और पैसे वाले लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन उन्हें शायरी से ज्यादा लगाव था।
1: दरअसल चार बैत को पढ़े लिखे लोगों ने जो नजरअंदाज किया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, चार बैत एक आवामी लोकगीत का हिस्सा है। लोकगीत का मामला यह है कि लोकगीत उसे कहा जाता है कि जो आवाम में सीना बसीना उसकी हैसियत हो, और दूसरी बात यह है कि आवाम में ये लोग न जानते हों कि ये किसने तख्लीक किया है, किसने लिखा है, और वो उनके ज़ुबानों पर उछड़ा हुआ हो। दूसरी बात यह है कि वो फ़न की वो बारीकियाँ न जानते हों लेकिन उससे महजूज होते हों।
0: चार बैत के सिलसिले में ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ रामपुर में तुकबंदी की जा रही थी, टोक और नजीमाबाद भी नौवारिद पठानों की कॉलोनियाँ थीं। वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। टोक के हाकिम नवाब अमीर खां और नजीमाबाद, सहारनपुर और मेरठ वगैरह के सूबेदार नजीब खां, रामपुर के पहले नवाब फैजुल्ला खां के वालिद नवाब अली मोहम्मद खां की फौज में नौकर थे। नवाब नजीमुद्दौला की सारी जिंदगी जंगों और दिल्ली के मुगल शासक शाह आलम की हुकूमत का इंतजाम करने में गुजरी, इसलिए वहाँ के पठान चार बैस से दूर रहे।
2: मुझे जो इसमें वजह महसूस होती है वो कल्चरल इम्पीरियलिज्म की है, इसलिए कि न सिर्फ ये कि नजीबाबाद बल्कि राजस्थान के भी बहुत से राजा, और ये जब इनका ताल्लुक दिल्ली से ज़्यादा रहा तो उन्होंने अपना जो कल्चर था उस पर तवज्जो कम की, बल्कि वो कल्चर जो जिसका प्रमोशन शाहजहानाबाद में हो रहा था वो उनका अट्रैक्टिंग पॉइंट बना। अच्छा, फिर ये था कि जो रीजनल कल्चर थे इन पर शाहजहानाबाद का कल्चर हावी था, तो जैसे मीर तकी मीर लखनऊ गए तो उनका वेलकम नहीं हुआ, इसलिए कि वो लोग ये समझ रहे थे कि शाहजहानाबाद जो है ऐसी ख़त्म हो गई जगह। लेकिन मीर तकी मीर का ही एक शेर है कि खराबा दिल्ली का लखनऊ से बेहतर था, वहीं है काश मर जाता सरासीमा ना आता यहाँ। तो जो रीजन के लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे क्योंकि सेंटर का डाउनफॉल हो रहा था। लेकिन जो बेली वगैरह जो दूसरे हिस्टोरियंस अब उन्होंने 18th century पर लिखना शुरू किया है, तो उनका मानना यह है कि ये जो थ्योरी पहले इरविन और दूसरे हिस्टोरियंस ने दी थी कि पॉलिटिकल पावर के बाद कल्चरल फॉल भी हो गया, ये समझ गलत है। तो क्योंकि नजीबुद्दौला का ताल्लुक शाहजहानाबाद या दिल्ली से ज़्यादा रहा और उनकी आर्मी का भी इन्वॉल्वमेंट वहीं रहा, तो मुझे ये महसूस होता है कि वो अपने कल्चर से ज़्यादा दूर हो गए। जो उनका रीजनल कल्चर था उसकी एक मिसाल मैं आपको ऐसे दूँ कि जब बहुत से लोग कस्बात से माइग्रेट करके दिल्ली गए तो उनके बातचीत में, उनकी समझ में, इन तमाम चीज़ों में 20th century की बात मैं कर रहा हूँ फ़र्क आया। तो ज़ाहिर है कि ये जो 18th century है, इस वक्त ये एरियाज जो थे वो इतने कल्चरली स्ट्रांग नहीं थे। इनकी कल्चरल रूट्स तो थीं, इनकी कल्चरल वैल्यूज़ तो थीं, या जैसे ये चार बैत है ये सारी चीज़ें थीं, लेकिन क्या था कि इम्पीरियल कल्चर के सामने इनको अपना कल्चर ऐसा लगता था कि शायद ये उससे कम है। तो मुझे लगता है कि नजीबाबाद के साथ भी वही, या नवाब नजीबुद्दौला के साथ भी वही चीज़ पेश आई कि उनका वहाँ ज़्यादा दिन रहना ये हुआ कि वो उससे मकलूब हो गए शाहजहानाबाद के कल्चर से, तो नवाब नजीबुद्दौला पर भी वो उसी का असर पड़ा, और उनकी ज़बान, उनका कल्चर, वो तमाम और रीजनल वैल्यूज़ जो थी उनमें और उनकी आर्मी में आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई।
0: अफसोस कि रामपुर के इब्तदाई दौर के तुकबंदी करने वाले चार बैत कहने वालों का कलाम किसी को ज़बानी भी याद नहीं रहा, लेकिन खुशी इस बात की है कि अब्दुल करीम खां की कोशिश से किसी न किसी हैसियत से चार बैत अवामी लोकगीत बनकर जिंदा रही और उर्दू शायरी में फोक सॉन्ग की सिंफ का इजाफा हो गया। भले ही चार बैत को उर्दू शायरी में वो अदबी हैसियत ना मिली हो जिसकी वो मुस्तहक है, लेकिन अजमल खटक की राय से इनकार नहीं किया जा सकता।
3: किसी मुल्क के लोकगीत ही अवाम का हकीकी सरमाया होते हैं।

इन्हें अवाम के दिलों की धड़कनें जन्म देती हैं। इनमें अवामी जिंदगी के रंगारंग पहलू और सच्चे जज्बात का अक्स झलकता है, और सबसे बढ़कर लोक गीतों की जुबान बिलाशुबा अवामी जुबान होती है, जिसमें भारी भरकम अल्फाज, दूर अजकार, तशबीहात और उलझा हुआ अंदाज़े बयान नहीं होता। इसमें तसन्नो और मुबालगा नहीं होता, इसमें ख्याली बातें नहीं होती, बल्कि सीधे सादे अल्लड़ जज्बात के इजहार का नेचुरल तरीका होता है। रोजमर्रा की आम फहम और खालिस बोली में अवामी जिंदगी की भरपूर अक्कासी की जाती है।

0: और फन बेमिसाल है। अभी आपने चार बैत के सफर पर आधारित आज के इस धारावाहिक की ये दूसरी कड़ी सुनी।
1: और फन बेमिसाल है। अभी आप सुन रहे थे इस धारावाहिक की कड़ी संख्या 2। धरोहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:32 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

0: पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
2: मन भवन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रीना तिवारी का नमस्कार। श्रोताओं, मन भवन कार्यक्रम के अंतर्गत एक ही कलाकार में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका सुरैया के गाए कुछ फिल्मी गीत। आज 15 जून है और आज सुरैया का जन्मदिन है। सुरैया का जन्म हुआ 15 जून 1929 को। सुरैया ने उस समय फिल्मी दुनिया में कदम रखा जब फिल्मी दुनिया में जाना आसान काम नहीं था और बहुत ही छोटी उम्र से सुरैया ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। सुरैया ने 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 338 गाने गाए। सुरैया 1940 के दशक के मध्य से अंत तक और 50 के दशक के आरंभ में सबसे ज्यादा मशहूर अभिनेत्री थी और वो उन खास अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्हें उस समय के अपने पुरुष अभिनेताओं से ज्यादा पारिश्रमिक मिलता था। सुरैया ने बाल कलाकार के रूप में मैडम फैशन फिल्म से अपनी अभिनय की यात्रा शुरू की और इशारा, तदबीर, फूल, अनमोल घड़ी, उमर खयाम, परवाना, दर्द, दास्तान, अफसर जैसी अनेक फिल्मों में अभिनय किया। आज का मन भवन कार्यक्रम समर्पित है सुरैया को। सबसे पहले सुरैया की आवाज में ये गीत

सुरैया की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी शमा। आइए अब सुनते हैं, सुरैया को ही फिल्म का नाम है मिर्जा गालिब।

आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। आइए अब सुनते हैं सुरैया की आवाज में ये गीत जिसे संगीत पद किया है नौशाद ने और फिल्म का नाम है दास्तान।

बड़ी बहन इस फिल्म में अभी आपने सुना सुरैया को। इसी गीत के साथ एक ही गायक के अंतर्गत ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेत्री एवं गायिका सुरैया पर। मन भवन कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी रामपुर है। 12 बजने वाले हैं, अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा

हम तुम पे मरते हैं। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में। कार्यक्रम का अंतिम गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। दोनों गीतों की मिली जुली फरमाइश इन सभी श्रोताओं की। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमर निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। सरगुजा मेन पार्ट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा आदिबा, नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी चौक शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का। भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक और अनुश्री श्याम कुंवर। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ग्राम पोस्ट मुंगेसापुर कानपुर से रमेश्वर कठेरिया, उमाकांत कठेरिया और कमलेश कठेरिया। टैगोर गार्डन दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, स्वीटी छाबड़ा, मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या, इंदिरा कॉटेज, तल्लीताल, नैनीताल से। तहसील रोड गंजनवारा से के एच राही, गुड़िया बेगम वकील, हमाद जमील। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई अंसारी, आशिक हुसैन अंसारी और अल्ताफ हुसैन। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका और भानु प्रकाश। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और जी एस रामगढ़िया। चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलो पर फातमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान और इशरत परवीन। काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से अजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोको रानी। ये श्रोता हैं दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। जैन मंदिर वाली गली कोरावली से

क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता फिल्म के इसी गीत के साथ आज का गीत आपके नाम कार्यक्रम समाप्त करने की रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह

0: पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित

0: को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एबियान पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एबियान, फ्रांस।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है. घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स.
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें. TNC अप्लाई. लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है. घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स.
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें. TNC अप्लाई.
5: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और FM 102.9 MHz पर. कार्यक्रम विवरण में सुनिए, हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा. 1:15 पर धरती गति कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी क्षमा जौहरी.

आंचल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:30 पर। इसमें आज चर्चा का विषय होगा गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को कैसे रखें व्यस्त। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे परिचर्चा, स्वच्छता और जन भागीदारी। प्रतिभागी होंगे राम किशोरी, सुमन और गुंजन। क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा गांव की बातें, गांव मलसाखेड़ा निवासी अनीता के साथ। दो 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5:00 आज शाम के साथ।

चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा। 6:10 पर, 6:20 पर कार्यक्रम होगा कृषि जगत। इसमें आज चर्चा होगी फलदार पौधों की देखभाल के विषय में। आप सुनेंगे भेंट वार्ता डॉक्टर सौहार्द दुबे के साथ, धान में कीट व रोग नियंत्रण। विविधा, ये कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 7:00। इसमें आज गौरव त्रिपाठी की वार्ता का विषय होगा रक्तदान और आमजन। मेरी माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम में आज विश्व वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे पर विशेष प्रस्तुति होगी, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, संकलन अली हैदर का और आलेख शिखा दीक्षित का होगा, प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी रामपुर है। 1:10 हुआ चाहते हैं, कुछ ही देर में इलाकाई खबरें लखनऊ से रिले होंगी।

0: ग्राहकों के लिए ये एविएशन गेट बनेगा। इंडिगो मरहलेवार तरीके से लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज़्यादा शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसके साथ दीगर उड़ान कंपनियां भी अपनी खिदमात फराहम करेंगी। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले का इफ्तिताह 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की बुनियाद भी वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को रखी थी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-आला ने रियासत के न्यूट्रिशन मिशन के दूसरे मरहले का भी आगाज़ किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश एक बीमार रियासत से मुल्क की तरक्की के इंजन में तब्दील हो गया है।
1: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
0: वज़ीर-आला ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ डिवीजनों में महकमा तामीरात आम्मा के काम का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका ओहदेदारान को हिदायत दी कि तमाम तामीराती कामों में तेजी लाई जाए और उन्हें मेयार के साथ वक्त पर मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-आला ने कल शाम गोरखपुर मंदिर के मीटिंग हॉल में महाराणा प्रताप एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को जदीद मजामीन में महारत से आरास्ता करने और किसानों को खुद इन्हिसार बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप के 15 फुट ऊंचे मुजस्मे की नकाब कुशाई की। महाराणा प्रताप की बहादुरी, कुर्बानी और जद्दोजहद को याद करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 वर्षों में हिंदुस्तान की आलमी शिनाख्त बदल गई है।
2: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से

0: के इंजन में तब्दील हो गया है।
1: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
0: वजीर आला ने कल गोरखपुर में गोरखपुर

धरती गति है कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं क्षमा जौहरी।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:30 में है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आंचल।

आंचल कार्यक्रम सुनन वारी हमारी सभी बहनन को आपकी बहन सुमन की प्यार भरी नमस्कार और राम राम। कैसी हो बहनों? हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हुई, मस्त हुई और अपनों काम अच्छे से करती हुई। बहनों अबे तो वैसे हूँ, बालकन की छुट्टी चल रही है तो काम और भी ज़्यादा ही वो होए। कहूँ बालक जो सामान तो फेंक रहे हैं, कहूँ बोफ सामान फेंक रहे हैं, बाको पूरे दिन संभालना बड़ो मुश्किल होए। घर के कामन के संग अब जो काम भी खूब ज़्यादा बढ़ गए है। बहनों वैसे भी घर के छोटे से लेके बड़े सदस्यों की देखभाल करना हम महिलाओं की ही जिम्मेदारी होती है और जा जिम्मेदारी को हम बहनें बखूबी निभाती हैं। और बहनों हमारे बालकन के लिए का सही है और का गलत है, जाको भी ध्यान हमें अच्छे से रखने हुए। बहनों हमारी

आज की चर्चा को विषय है, वो है गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को कैसे रखें व्यस्त। बहनों, गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए खुशी और आराम को समय होता है, लेकिन अगर बच्चों के पास करण के लिए कोई अच्छा काम ना होए तो वे दिन भर मोबाइल, टीवी और गांव के बालकन के संग धुन करण में अपना पूरा दिन बिता देंगे। इसलिए बहनों, माता पिता को जो कर्तव्य बनता है कि वे बच्चों को ऐसी गतिविधियों में लगावें जिससे उनको शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास ही सके। बहनों, गर्मी की छुट्टियां लगभग 1 से 2 महीने की होती हैं। इस समय बालकन के पास पर्याप्त खाली समय होता है। बहनों, अगर इस समय को सही उपयोग करो जाए तो बालक नई नई बातें सीख सकता है, वो अपनी प्रतिभा को और भी ज़्यादा निखार सकता है और अच्छे संस्कार भी प्राप्त कर सकता है। बहनों, जो तभी ही सकता है जब हम अपने बच्चा की सबसे पहले एक सरल सी दिनचर्या बनाएंगे। बाके जरिए हम अपने बच्चा को पहले से और भी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बा को सुबह जल्दी उठन की आदत को डालें, नियमित समय पर भोजन करावें, और जा थोड़ी ना कि गांव में के साथ के बालकन के संग खेल में पड़ गो तो वो पूरे दिन घर ही ना आ रुए। और ऐसो अक्सर होता है कि गांव में बालक खेल खेल में पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं, उनको अपने घर आने को समय पता ही ना रहती है। इसलिए बहनों, पढ़ाई, खेल और आराम को समय तय करके बालक को बतावें। रात में समय पर सोने की आदत को डालें। बहनों, दिनचर्या के हिसाब से अगर बालक चलेंगे तो इससे बालक में अनुशासन आता है और वे समय को सही उपयोग करना सीखते हैं। बहनों, छुट्टियों में पढ़ाई पूरी तरह से बंद ना होनी चाहिए। रोज़ 1 से 2 घंटे पढ़ने को समय रखें। बालकन को कहानी बहुत पसंद होती है, इसलिए उनको कहानी की किताबें पढ़ने के लिए दें। सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाली पुस्तकें पढ़ाएं। पहाड़े, कविता और शब्दार्थ याद करवाएं, जैसे बालकन की पढ़ाई की आदत बनी रहती है और स्कूल खुलने पर उन्हें परेशानी ना हो गई। बहनों, हमें अपने बच्चों की रचनात्मकता बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न तरीके के चित्र बनानों और रंग भरनों और कागज से फूल, खिलौने और सजावटी वस्तुएं बनानों जिस सब चीज़ों को कहना चाहिए। इससे बालक में आत्मविश्वास और भी बढ़ता है। बहनों, गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को खेलने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। बहनों, अभी के समय में गर्मी भी बहुत लगती है और साथ में धूप तो बहुत ज़्यादा ही तेज निकलती है, इसलिए अपने बच्चों को सुबह या शाम के समय खेल खेलने दें। बहनों, खेल बच्चों को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखता है। बालकन को उम्र के अनुसार घर के छोटे काम करने को प्रेरित करना चाहिए, जैसे अपनों बिस्तर ठीक करना, किताबें और खिलौने व्यवस्थित रखना, अपने घर के छोटे गमलों में लगाए हुए पौधों को पानी देना। ऐसे छोटे छोटे काम करने से बालकन में जिम्मेदारी की भावना भी आती है। ऐसे अपने घर में रखे हुए गमलों में बच्चों से पौधा लगवावें और उसकी देखभाल करने को कहें। ऐसो करण से वो प्रकृति से जुड़ने लगेगो और पेड़ों और पर्यावरण के महत्व के बारे में बा को बतावें। बहनों, पक्षियों को दाना और पानी रखने की आदत बच्चा को सिखानी चाहिए, जैसे हमारे बच्चों में पशु पक्षियों के लिए प्यार और भी बढ़ जाए। बच्चों को ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी तो इससे बालकन को आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़त रहा है। बहनों, वैसे देखी जाए तो आजकल बच्चे मोबाइल और टीवी पर अधिक समय बिताते हैं, इसलिए बहनों उनको मोबाइल चलाने को बस समय बांध दें और परिवार के संग समय बिताने को कहें, क्योंकि बहनों बालकन की पहली पाठशाला घर होती है। जब वे ज़्यादा समय अपने घर के बड़े जनों के पास बैठेंगे तो उन्हें भी अच्छो लगन लगाए और बालक भी अपने दादा दादी के अनुभवों को सीख सकेंगे, जिससे उनके भीतर अच्छे संस्कार होंगे और वे अपने से बड़न को सम्मान अच्छे से करना सीख जाएंगे। बहनों, वैसे आजकल बच्चों में संस्कार डालना बहुत ज़रूरी है और ये सब भी अपने घर के लोगों के संग बैठ के ही सीखेंगे। गांव में वैसे भी बालकन पर शुरू से ही बहुत काम कराया जाता है, इसलिए बहनों अपने बच्चों से जब गर्मी में ज़्यादा काम ना करावें, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। गर्मी के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखें, उनको पर्याप्त पानी पिलावें। अगर बालक खेल में लग जाए तो उसको समय पर पानी पिलात रहना हमारी ही जिम्मेदारी है। गर्मियों में पानी पीने को बहुत सारा फायदा है, इसलिए उनको समय समय पर पानी पिलात रहें। बहनों, बच्चों को खाने के लिए पौष्टिक भोजन और फल दें और संग में साफ सफाई को विशेष ध्यान रखें। बहनों, गर्मियों की छुट्टियां केवल मनोरंजन को समय ना है बल्कि बच्चों के विकास को एक सुनहरा अवसर भी है। यदि हम उन्हें पढ़ाई, खेल, रचनात्मक कार्य, अच्छे संस्कार और नई सीख से जोड़ें तो वे भविष्य में आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और सफल नागरिक बन सकता। बहनों, हमें ये ध्यान में रखने होए कि छुट्टियों में हम अपने बच्चों को समय

0: मोबाइल पर नहीं बल्कि सीखने, खेलने और अच्छे संस्कारों के साथ बिताने में सहायता करेंगे। बहनों अब सुन लेते हैं जा परिचर्चा, इसको विषय है स्वच्छता और जन भागीदारी पर बातचीत। प्रतिभागी हैं राम किशोरी और श्रीमती सुमन, इसके संचालक हैं गुंजन। तो आबो सुनते हैं जा परिचर्चा।
1: बहनों कहते हैं स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता का असर हमारी सेहत पर पड़ता है और स्वच्छता के लिए हमारी जन भागीदारी क्या है। आज इसी विषय पर परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती किशोरी और श्रीमती सुमन। तो आइए इनसे बात करते हैं स्वच्छता और जन भागीदारी पर लेकर। सुमन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आई हैं?
2: सिहारी से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। मेरा नाम सुमन है।
1: किशोरी जी, आप कहाँ से आई हैं?
3: हम झुनिया से आए हैं। मेरा नाम किशोरी है, धमोरी के पास में।
1: अच्छा, झुनिया से आई हैं आप। दोनों ही जो महिलाएं हैं हमारी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सुमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी।
2: मैम, स्वच्छता का हमारे जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है अगर हम उसे करें तो, क्योंकि हमें सुबह अपने घर को झाड़ू पोंछा करते हैं ताकि घर में जो गंदगी निकलती है जैसे कूड़ा वगैरह, तो उसे हम ऐसा ना करें कहीं इकट्ठा करके अपने गेट पे रख दें। मतलब घर से तो सफाई कर ली और सफाई करने के बाद कहीं गेट पे या रास्ते में अपने गेट के सामने डाल दें, तो वो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उस कूड़ा को हमें कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए ताकि कोई बीमारी या कोई मतलब कीटाणु वगैरह ना फैलें।
1: किशोर जी, आपके लिए स्वच्छता का क्या महत्व है?
3: जैसे हम डंगर पालते हैं, तो डंगर बांध दिए, डंगर बांधने के बाद बहुत सी होती हैं उसका नीचे का गोबर या साफ सफाई नहीं रखती हैं, और हम उन्हें डंगर बांध देते हैं, बांध कर उनकी नानसानी करते हैं, उसका कूड़ा गोबर सब इकट्ठे करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, फिर बाहर फेंक के आते हैं। हम अगर स्वस्थ रहने चाहते हैं तो अपने सफाई रखते हैं और अपने कोई बीमारी पास नहीं आवे, इसलिए हम अपने शरीर के लिए बहुत।
1: बिल्कुल सुमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्वच्छता को लेकर आप किन किन बातों का ध्यान रखती हैं?
2: स्वच्छता को लेकर जैसे मैम, हम नहाते हैं, जैसे कई कई दिन हो जाते हैं गांव में, लोग 8 दिन 7 दिन हो जाते हैं, वैसे तो हमें डेली नहाना चाहिए। अगर ठंड है तो थोड़ा सा गर्म पानी कर लो, और कपड़े भी मत पुराने हैं तो उनको धुल लो, और डेली नहाना चाहिए और अपने शरीर को सही रखना चाहिए। ना नहाने से जैसे बीमारी भी हो सकती है शरीर के अंदर, और मतलब स्वच्छ नहीं रहेगा शरीर, तो नहाने से और साफ सफाई से मतलब सही रहेगा हमारा शरीर, रोगाणु नहीं फैलेंगे।
1: बिल्कुल किशोरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्वच्छता को लेकर जो जन भागीदारी है, हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, क्या हमारा क्या कर्तव्य है कि हम स्वच्छता को लेकर ध्यान रखें, क्या कर्तव्य है हमारा?
3: खाना बनाते हैं, खाना में अपने हरी सब्जी है उसे धुलते हैं, फिर खाना बनाते हैं, खाना बना के बच्चों को अपने नवा धुवा के उन्हें खाना खिलाते हैं, फिर स्कूल भेजते हैं उनके लिए, झाड़ू है पोंछा है उसे अपने साफ सफाई रखते हैं, फिर कूड़ा ऊरा होता है वो कूड़ा दान में डालते हैं।
1: अच्छा, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा जो हम लोग हैं आजकल, स्वच्छता को लेकर बहुत ज्यादा जो कार्यक्रम जो हमारे गांव में भी चलाए जा रहे हैं, शौचालय बनाए जा रहे हैं, और पानी की स्वच्छता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो कुछ मतलब आपके यहाँ गाँव में है इस तरीके का कुछ कार्यक्रम वगैरह चल रहा है स्वच्छता को लेकर?
2: हाँ मैम, चल रहा है, ये अब सरकारी तरफ से
3: शौचालय आ रहे हैं,
2: शौचालय भी अब तो कोई लोग
3: बाहर तो कोई नहीं जा रहा है, अब शौचालय आए भी बन रहे हैं, उसमें अपने साफ सफाई रखते हैं, पानी उसमें डालते रहती हैं।
1: देखिए, बात आती है जन भागीदारी की, कहीं ना कहीं हम अपनी सेहत को लेकर अपने परिवार को लेकर चिंतित रहते हैं, अपने बस अपने घर की साफ सफाई कर ली, अपनी साफ सफाई कर ली, लेकिन बाहर की साफ सफाई से हमें कोई मतलब नहीं होता, अक्सर ऐसे लोगों की सोच होती है, लेकिन गांव हमारा है, हमें अपने गाँव को स्वच्छ रखना है, और कि ये नहीं है कि हमने अपना कूड़ा लिया और दूसरे के घर के आगे डाल दिया, तो ये क्या चीज गलत है?
3: गलत है ये बात, हम तो अपने मोड़े के सामने और दूर भी हम झाड़ू कर देते हैं, बुढ़ार देते हैं, मगर किसी के नहीं मोड़े पे डालते हैं, नहीं अपने मोड़े पे डालते हैं, हम तो अपने बाहर भरा और बाहर फेंके आते हैं।
1: अच्छा, डंगर हैं आपके यहाँ?
3: हाँ, डंगर हैं।
1: तो उसके गोबर का क्या करती हो आप?
3: गोबर का अपने ऐसे जो ठंड है तो हम घूरे पे फेंक देते हैं, घाम होती है धूप तो गोबर थोप देते हैं।
1: तो घूरे जैसे अपने से गांव है, गांव से बाहर है का गांव के अंदर?
3: बाहर है, हमारा खेत है पास में।

0: गांव के हुई हमने अपने खेत में बना लिया है,
1: अच्छा
0: तो वो हुई पे ही डालती हैं, फिर गल जाता है तो अपने खेत में डाल लेती हैं,
1: खाद बनाकर डाल
0: खाद
1: लेते।
0: बना के
1: कंडे वगैरह नहीं बनाती हो?
0: कंडे बनाती हैं, खर्च लाख बनाती हैं।
1: अच्छा
0: ज्यादा कंडे नहीं बनाती हैं, क्यों सर्दी के मारे देखो कि नहीं थोकती हैं, फिर उन दिन में कंडे नहीं उछलती हैं, कीड़े लग जाती हैं, खोखला रह ही जाती हैं, गोबर की होती है खुआरी, फिर हम गोबर नहीं थोकती हैं।
1: अच्छा। अब अक्सर देखा जाता है कि गांव में जब डंगर हम बांधते हैं, धूप निकल आई, अब किसी किसी क्या होता है कि घर में धूप नहीं लग रही है,
0: नहीं
1: घर जो
0: लगती
1: है बंद
0: है।
1: होते जा रहे हैं,
0: हाँ
1: बाहर बांध देते हैं और साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि अगर गोबर वहां कर दिया है तो वो पड़ा ही है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है सुमन जी कि हम उसको साफ सफाई का करें या कर्मचारी का हम इंतजार
2: नहीं
1: करेंगे?
2: मैम, ये तो स्वयं की जिम्मेदारी बनती है कि जानवर बांध रहे हैं तो अगर वो गंदगी कर रहे हैं तो उसको स्वयं ही साफ सफाई करनी चाहिए। वातावरण भी शुद्ध रहेगा क्योंकि आने जाने वाले बच्चे हैं, वैसे लोग हैं, उनके पैर वैर भी सनेंगे, कपड़े भी सनेंगे, तो गंदगी होगी, ये बात गलत है, स्वयं ही करना चाहिए।
1: देखिए, स्वस्थ रहना है और स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो पर्यावरण है वो भी साफ सुथरा
2: साफ
1: होना।
2: सुथरा रहना
1: तो
2: चाहिए।
1: आप पर्यावरण को लेकर किस तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखती हैं?
2: मैम सबसे पहले तो पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरी हैं क्योंकि उनसे हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेंकते हैं और वो ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो उनसे हमें पेड़ पौधों से पर्यावरण सबसे ज्यादा शुद्ध रहता है।
1: किशोरी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो महिलाएं हैं वो साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर उनकी सोच अलग है। वो सोचती हैं नहीं कोई बात नहीं, हम 2 दिन नहीं नहाए या कूड़ा जो पड़ा है पड़ा रहने दो। तो उस सोच में अब बदलाव आया है नहीं आया है? आप काफी उम्र दराज हैं, तो पहले की सोच में और आज की सोच में, आपके घर में बहुएं होंगी बेटियां होंगी, तो साफ सफाई को लेकर उनकी सोच में कोई बदलाव आया है?
0: आया है,
1: क्या क्या बदलाव आए हैं?
0: वे सुबह को उठती हैं, सुबह को उठ के नहाती हैं, फिर खाना बनाती हैं, खाना बना कर उनके बच्चे उच्चे अपने स्कूल जाते हैं, उन्हें देखो स्कूल भेजती हैं, फिर चौका बासन करती हैं, पोछा भी लगाती हैं, हाँ फिर बच्चों को भी नहाती हैं, खुद नहाती हैं, नहा के तो खाना बनाती हैं।
1: अच्छा, जैसे अब बरसात के दिनों में, अभी तो ठंड चल रही है और बरसात के दिनों में जगह जगह गड्ढे होते हैं, सड़कें वगैरह ठीक हैं आपके गांव में, गड्ढे हो जाते हैं उसमें मच्छर पनप जाते हैं,
0: हाँ
1: तो
0: मच्छर
1: आप किस तरीके से ध्यान रखते हैं? क्योंकि देखो, मच्छर हो गया तो उसे बीमारियां जरूर
0: मच्छर
1: फैलेंगी,
0: हो
1: मच्छर
0: जा
1: अभी भी बहुत ज्यादा हैं।
0: मच्छर होते हैं तो दवाई करवा देते हैं, फिर देखो कि मच्छरदानी लगाते हैं, फिर बच्चों के कैसे उन्हें कैसे फिर गुजारा करते हैं मच्छर बचाव के लिए।
1: अच्छा।
0: हाँ फिर नालियन में पानी भर जाता है, रास्ता ऐसी है, ये हमारे लंकी बहुत गंदकाई हो जाती है जब बारिश पड़ती है तो।
1: तो जैसे आपके घर के आसपास में नालियां हैं, उनकी सफाई आप कर लेती हैं या सफाई कर्मचारी का इंतजार करती हैं? सफाई वाले आते
0: सर हम
1: हैं?
0: तो खुद ही करते हैं, आप कर्मचारी आते हैं महीना 2 महीना में आते हैं, तो उनके ऊपर क्या रहे, हम तो खुद ही सफाई कर देते हैं।
1: और जरूरी भी है, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो
0: हाँ
1: स्वच्छता में कहीं ना कहीं हमें अपनी भागीदारी भी निभानी होगी। ऐसा
0: निभानी
1: नहीं है कि
0: होती
1: हम
0: है।
1: अपना ध्यान रखें या दूसरे का ध्यान नहीं रखें,
0: हाँ
1: तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्वच्छता को लेकर जो जन भागीदारी है वो क्या है?
2: मैम, इससे जैसे किसी ने, जैसे हमारे पड़ोसी ने कूड़ा जैसे हमारे गेट पे कर दिया, तो हमारा दायित्व ये बनता है कि उस कूड़े को उठा के हम कूड़ेदान में फेंक दें, ना कि उसके गेट पे धक्का दें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी और दोनों लोगों की जैसे जिम्मेदारियां बनती हैं, ताकि मतलब पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाव हो सके।
1: अब जैसे घर का आपका कूड़ा करकट होता है तो वो आप खुद डालने जाती हैं या सफाई कर्मचारी या कूड़ा लेने आते हैं घर पर?
2: वो तो हम ही खुद ही साफ सफाई करते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ
1: तो कहाँ, कूड़ा घूरे पे डालती हो क्या?
2: हाँ
1: डंगरों के नीचे का जो कूड़ा है वो जला देती हो, वो भी खेतों पे डाल
2: नहीं,
1: जाती?
2: वो खेत में एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं और उसे उसमें फिर खेत में डलवा देते हैं, घूरा बन जाता है तब, और वो प्ले भी बना लेते हैं, उससे खाना बना लेते हैं। हमारी मैम ये भी जिम्मेदारियां बनती हैं, जैसे हमारे साथ बच्चे अगर कहीं सफर में जा रहे हैं, अगर बच्चों ने कोई चीज मांगी तो जैसे पैकेट फूड खा लिया बच्चों ने तो कि रास्ते में फेंक दिया, वो नहीं होना चाहिए, जैसे कहीं कूड़ादान है उसमें डाल दो, अगर ना है कूड़ादान तो उसे मतलब तय बनाकर अपने पर्स या मतलब बैग में रख लो, जहां पर कूड़ादान मिले वहां डाल देना चाहिए।
1: बच्चों को भी साफ सफाई के बारे में हमें बताना चाहिए। अच्छा सुमन जी, बच्चों को हमें स्वच्छता का पाठ किस तरीके से पढ़ाना चाहिए? बच्चे जो हैं वो हमें देखकर सीखते हैं, जैसा हम करेंगे हमारे बच्चे वैसा करेंगे। तो आप बच्चों को किस तरीके से स्वच्छता का पाठ पढ़ाती हैं?
2: मैम जैसे बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं तो वो खाना खाते हैं, सबसे पहले हम तो बच्चों से बोलते हैं कि हाथ को साबुन से धुल के खाना खाने के लिए बैठो, और में जैसे नाखून वगैरह हैं इनको भी साफ करना चाहिए, काटना चाहिए, और बालों को भी 8-10 दिन के तौर पर कटवा देना चाहिए, क्योंकि इससे गंदगी फैलती है सबसे ज्यादा। और बच्चों को डेली नहाना चाहिए, चप्पल जूते जो रसोई है उससे दूर ही निकालना चाहिए, क्योंकि ये सारे जगह जाते हैं जैसे, तो अगर वो रसोई में जाएंगे तो कीटाणु फैलेंगे। इन सब बातों का हम बच्चों को ध्यान दिलवाते हैं तो वो वैसा ही करते हैं।
1: किशोरी जी, आप अपने बच्चों को किस तरीके समझाती हैं कि जैसे बच्चा बाहर से खेल के आया, वो ऐसे ही खाना खाने लग गया, तो आपको उन्हें किस तरीके से समझाती हैं?
0: उन्हें हम समझाते हैं, बाहर से आते हैं बच्चे खेल के, तो उन्हें हम समझाते हैं, लला हाथ पांव धोवो, मुंह धोवो, और कपड़े निकालो, कपड़े साफ करो, कपड़े पहराते हैं उन्हें नहला के, बाहर से आते हैं तो, और उनके नाखून वगैरह आए जिनसे कहते हैं लला नाखून अपने काट लो बच्चों से, और अपने बार कटवाओ, 8वें दिन बार कटवा के उनको लाते हैं, फिर नभाते हैं।
1: अक्सर देखा जाता है सुमन जी हमारे गांव में कि कहीं ना कहीं पानी भर गया, जैसे छतों पे हमारे टायर पड़े हैं, ट्रैक्टर ट्राली के जो हमारे जो टायर वगैरह होते हैं खराब हो जाते हैं, वो हम छत पर डाल देते हैं, उनमें पानी भर जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें इनका भी ध्यान रखना चाहिए
2: मैडम,
1: है ना। साथ ही साथ जब बात आती है स्वच्छता की, तो हम महिलाएं अक्सर रसोई घर को अपने लेकर बैठते हैं, तो रसोई में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
2: सबसे पहले जैसे मैम आप पूछ रही थी कि मतलब जो टायर पड़े हैं ऊपर, तो उन्हें जब हमारे काम में नहीं आ रहा है तो उन्हें हमें कबाड़िया जैसे आता है गांव में, तो उसे दे देना चाहिए, बेच देना चाहिए जब काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि पड़े रहेंगे तो उनमें पानी भरेगा, गंदगी, तो वो कीटाणु होंगे, तो इसलिए हमें उन्हें घर में रखना ही नहीं चाहिए जब काम की वस्तु नहीं है तो। और रसोई घर को लेके हमें रसोई घर में साफ सफाई रखना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, और बर्तन भी साफ, और जो डिब्बे होते हैं उनमें।
1: किशोरी जी, आप रसोई घर में लेकर या साफ सब्जियों को लेकर किन किन बातों का ध्यान रखती हैं?
0: हम रसोई घर में पहले तो रसोई खोलते हैं तो ये डिब्बे में मसाले रखे हुए होते हैं, हरदी मिर्च होती है, बहुत से लोग ऐसे रहने देते हैं, उनकी साफ सफाई नहीं करते हैं, दार वगैरह है, ऐसे हरी सब्जी है उसे नहीं धोते हैं, ऐसी रख देते हैं, मगर हमें ऐसा होना चाहिए कि डिब्बे को धोके उसमें तो हरदी मिर्च रखें, और दालें हैं, दालन में के डिब्बे हैं उनको धोवें तो उनमें दालें रखें,
1: बिल्कुल दालों को सुखा लें,
0: कहने चाहिए दालों को, और घर के जो मिर्च इकट्ठी बहुत से हमारे देहात लोगों में मिर्च लेकर 1 किलो 2 किलो पिसवा लेती हैं, तो उनको हमें सुखाना पड़ता है,
1: बिल्कुल कीड़े लग जाएंगे,
0: कीड़े लग जाएंगे उनमें। और उसी घर में बैसे हुए हर चीज का ध्यान रखना चाहती हैं,
1: बिल्कुल। हाँ। देखिए, अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तब जो है हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा,
0: अच्छा रहेगा।
1: और ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने घर
0: सब चीज का सफाई का,
1: हमें अपने पर्यावरण को लेकर भी हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा पर्यावरण स्वस्थ है तो हम स्वस्थ है, और खासकर हम बच्चों को भी हमें स्वच्छता का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी सोच कहीं ना कहीं बदली है, लेकिन हमारी जो पुरानी जो महिलाएं आज भी बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं होता है कि इन बातों को लेकर, नई सोच को लेकर उनके मन में अभी भी कुछ ना कुछ शंका रहती है। तो स्वच्छता को लेकर हमें अपने बच्चों को जैसा हम करते हैं हमारे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। तो हमें भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है स्वच्छता सिर्फ हमारे लिए ही है, हम बाहर कहीं सफर कर रहे हैं तो हमें वहां पे भी स्वच्छता का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हमारा घर नहीं है, बस में से हमने कुछ खाया और बाहर सड़क पर फेंक दिया, तो ये हमारी जन भागीदारी है कि सिर्फ हम अपना ही नहीं, हमारे जो धार्मिक ऐतिहासिक क्षेत्र है, स्थल है, हम वहां पर भी स्वच्छता का जो है वो ध्यान रखें, क्योंकि हमारी जो धरोहर है उसको संवारना, उसको सजोना, ये सब हमारी जिम्मेदारी बनती है। किशोरी जी, सुमन जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और स्वच्छता और जन भागीदारी इस विषय पर आपने हमारे साथ परिचर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहनों, अभी आपने सुनी जा परिचर्चा, इसको विषय हो स्वच्छता और जन भागीदारी पर बातचीत। इसमें प्रतिभागी थी श्रीमती रामकिशोरी और श्रीमती सुमन, इसकी संचालक थी गुंजन। आपने जब परिचर्चा सुनी, हमें उम्मीद है आपको इससे कुछ सीख जरूर मिली होगी। बहनों, अब सुन लेते हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। मैरो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत हमने करी गांव से अपनी एक बहन से बातचीत, तो आप सुन लेते हैं। जो
4: आपका नाम?
5: अनीता।
4: आप कहाँ रहती हैं?
5: हम रहते हैं मलसा खेड़ी।
4: अच्छा, जी कितना पड़ता है?
5: जी पड़ता है सीसगढ़ की तरफ।
4: अच्छा, तो अनीता जी आपके घर में कौन कौन है?
5: हमारे घर में मम्मी पापा हम है, एक एक बड़ो भैया एक छोटो भैया है।
4: अच्छा, आपने पढ़ाई करी है?
5: हाँ, बीए फाइनल कर लो है।
4: अच्छा, तो आप घर के काम का कौन कौन से काम करती हैं?
5: हम घर में खाना बना लेते हैं और मम्मी या बहन काम करती है तो वो करवा लेते हैं थोड़ा बहुत, और क्या कहते हैं और खेतनों पर चले जाते हैं।
4: अच्छा, तो खेतन में आप कहाँ है?
5: खेतन में अब तो कुछ ना है, चरी है ऐसे, भैंसियाँ जब खाती है तो चरी लानी पड़ती है।
4: अच्छा।
5: और भेड़ पड़ रही है और खेत उत जुत रहे हैं अब तो।
4: अच्छा, तो धान लगेंगे फिर?
5: हाँ, फिर धान लगेंगे।
4: अच्छा, आपने कही कि क्या कहता है हमारे भैया छोटू है, तो वो कितने साल को है?
5: वो 8 साल को है।
4: अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ता है?
5: वो पढ़ता है कक्षा 2 में।
4: अच्छा, तो आप तो देख रही है वैसे छुट्टी चल रही है बालकन की, तो आप
5: हाँ।
4: आपको खेलन देती हूँ या फिर थोड़ा बहुत स्कूल को भी काम करवाते रहती हूँ, पढ़ा तोड़ाते रहती हूँ?
5: पहले पहले वो बहुत धुन करते जब शुरू शुरू में छुट्टी पड़ी तो, और अब तो क्या कहते हैं अब ज्यादा धुन ना करता, बाको टाइम के टाइम हिसाब से खेलन देते हैं ऐसे, मतलब सुबह उठता है तो होमवर्क करता है, हम होमवर्क कोचिंग पढ़ाते हैं गाँव में।
4: अच्छा।
5: पढ़वाता बाहर की चीज है तो पहले होमवर्क कराए सुबह उठ कर, तो फिर क्या कहता है फिर थोड़ी देर खेलता है, धूप निकल आती है बहुत ज्यादा तेज, तो बाहर घर में मतलब बैठा कर थोड़ी बहुत देर पढ़ाता है, तो फिर थोड़ी 3-4 बजता है फिर वो खेलता है, फिर शाम को बाहर मतलब चीजें उजे बना के देता है, तो पूरे दिन खाते रहता है।
4: अच्छा, और आप काका सिखाती हैं?
5: बाको ऐसे जो प्लास्टिक की एबीसीडी होती है बेला के दे देंगे, एबीसीडी छोटा बड़ा प्लास्टिक के होता है बेला के दे देंगे, मतलब उनसे थोड़ा बहुत पढ़ नहीं सीख जाए ज्यादा अच्छु कर। और क्या कहते हैं जो खेल खिलौना होता है प्लास्टिक के बे दे दे लायक, और थोड़ा बहुत देर ऐसे कापी ला देती है रफ कापी होती छोटी छोटी बेला के दे देंगे, और गिनती की मतलब जो छोटा बड़ा लिख कर गिनती लिख कर आती है किताब में इस रुबारी में बदल दिए जाएगा, तो मतलब बात सब पढ़ता रहता है ज्यादा खेलते ना है, पहले बहुत खेल तो।
4: वैसे गांव बालक बहुत ज्यादा ही एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर बहुत ज्यादा ही खेलता।
5: हाँ, हाँ घाम बहुत तेज पड़ती है जितने दिन में। हाँ, इसलिए वो सही है, तो हम बाहर बहरान न लिखन देते ज्यादा अब। और क्या कहते हैं जो मतलब जो आरक कापी आती है जो चित्र बने बनाए आता है उनका कलर भरता है, उन्हें रंग उनकी डिब्बी ऐसे हेल्डिंग उल्डिंग होती है ब्लैक दे देंगे दे, तो उनसे वो कलर भरता है, तो मैम को दिखाते तो मैम अच्छी बताती है, जो कोचिंग पढ़ाती है उन्हीं को दिखा देता है, अब तो स्कूल बंद चल रहे हैं तो उन्हीं को दिखा दो तो सही बता देती है, तो वो ढंग को करना सीख जाए।
4: हाँ वो तो है, अगर घर पर आराम से सीखत रहा है तो जब स्कूल खुलेंगे तो वह दिक्कत ना होगी जाते भी।
5: हाँ हाँ हाँ।
4: और आप उसको खाने में क्या खिलाती हैं?
5: खाने में ऐसे सुबह हम बा को हलवा बनाया था, कऊ कवाए दलिया बना देते हैं, और कऊ कवाए मतलब घर ही पे फ्रूट काट कर देते हैं, ऐसे फ्रूट रखे होते फ्रीज में बे दे देते हैं ऐसे ठंडे गर्म होने के बाद, और पूरे दिन पानी पिलाते रहते हैं, अगर वो दोपहर में कभी टिक्की उक्की मांगो तो हम बात छोटी छोटी आलू की घर ही बना देते हैं, और क्या कहते हैं और समोसा वमोसा मांगते तो घर ही बना देते हैं, बाहर की हम सब खा नहीं रहते क्योंकि तबियत खराब है तो बहुत जल्दी जल्दी।
4: अच्छा, तो आप पानी को विशेष ध्यान रखे करो गर्मी में, अगर वो खेल में भी लग जाए।
5: पानी तो हरे आधे घंटा पे 15-20 मिनट मांग लेता वो हम प्यार देता तुरंत वाको।
4: अच्छा, अगर वो कोकवा खेल में भी लग जाए तो अपने आराम से ध्यान रखो कि वाको पानी चाहिए तो पानी तुरंत पिला दो।
5: हाँ, तुरंत पिला देते हैं, और हमारे घर में ऐसे बकरी के बच्चा है छोटे छोटे बकरी के बच्चा उनके संग खेलते रहता है और पानी उनी पिलाता रहता है, ऐसे घास उस डालते रहता है थोड़ी बहुत, हमारे पास में बाग है ना तो वहाँ सब चीज है तो वहीं से ला ला कर खवाते रहता है।
4: अच्छा।
5: हाँ, बच्चे छोटे छोटे हैं तो वे खेल रहता है पूरे दिन बाई के संग।
4: अच्छा, बाग है तो बहुत अच्छी बात है, बाग में खेलते रहते हुए तब तो बालकनी के संग भी।
5: हाँ,
4: रखने
5: हाँ, हाँ बालकन संग हम बहुत कम खेलने देते हैं, गांव के बालक तुम जानती हो कैसे होते हैं।
4: अरे आपने कही हमारा बाग है तो बाग में और काका है बाग में, जैसे
5: बाग में हमारे अबे तो अमिया है और आड़ू, आड़ू जिस दिन में बहुत लगता है वह 4-5 आड़ू के पेड़ हैं और सपड़ी पे छोटी छोटी सपड़ी आ गई है। अनार है, अनार छोटे छोटे हैं अबे तो अबे खान ला ना अबे आ रहे हैं फल उन पर। हाँ
4: हमारी बहनें जो आपको सुन रही हैं, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं?
5: हम उनसे यह कहना चाहता कि अपने बालकन को ध्यान रखो सही करके और अब उन्हें पढ़ाओ लिखाओ सही

0: जल्दी।
1: अच्छा तो आप पानी को विशेष ध्यान रखे करो गर्मी में, अगर वो खेल में भी लग
0: हाँ,
1: गया।
0: पानी तो हरे हरे आधे घंटा पे 15-20 मिनट मांग लेता वो, हम प्यार देता तुरंत वहां को।
1: अच्छा अगर वो कोकवा खेल में भी लग जाए तो अपने आराम से ध्यान रखो कि वहां को पानी चाहिए तो पानी तुरंत पिला दो।
0: हाँ, तुरंत पिला देता है। और हमारे घर में ऐसे बकरी के बच्चा है, जी छोटे छोटे बकरी के बच्चा, उनके संग खेलता रहता है और पानी उनी पिलाता रहता है, ऐसे घास उस डालता रहता है थोड़ी बहुत। हमारे पास में बाग है ना, तो वहां सब चीज है, तो वहीं से ला ला कर खवात रहता है।
1: अच्छा
0: हाँ, तो बच्चे छोटे छोटे हैं तो वे खेल रहा था पूरे दिन भाई के संग।
1: अच्छा बाघ है तो बहुत अच्छी बात है, बाघ में खेल रहे थे तब तो ज्यादा बालकनी के संग भी ना
0: हाँ
1: खेलते। अच्छा
0: हाँ बालकनी के संग हम बहुत कम खेलने देते हैं, गांव के बालक तुम जानती हो कैसे होता है।
1: अरे आपने कही हमारा बाघ है तो बाघ में और काका है बाघ में जैसे।
0: बाग में हमारे अबे तो अमिया है, और आड़ू आड़ू जिस दिन में बहुत लगता है, तो 4-5 आड़ू के पेड़ हैं, और सपड़ी पे छोटी छोटी सपड़ी आ गई है।
1: अच्छा
0: अनार है, अनार छोटे छोटे हैं अबे, तो अबे खान ला ना आ, तो आ रहे हैं फल उन पर। हाँ
1: हमारी बहनें जो आपको सुन
0: आप,
1: रही हैं आप उनसे क्या कहना चाहती हैं?
0: हम उनसे यह कहना चाहता कि अपने बालकन को ध्यान रखो सही करके, और अब उन्हें पढ़ाओ लिखाओ सही।

0: बांटा गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सातवीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर

0: वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: वर्ष नवंबर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे।

0: फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर 2:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और

0: समीक्षा भेजिए।
1: जी
0: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
1: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है, आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
0: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
1: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है, तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
0: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
0: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 बजे 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत।

वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओ,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुन।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
6: आ गया,
2: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37।

0: रेलगाड़ी।
1: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
2: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
0: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
1: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
3: अप्पू,
1: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
2: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
1: उसका दम घुट रहा था।
2: बोल।
1: वो खामोश खड़ा रहा।
2: क्या नहीं बोलेगा?
1: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा

0: में बता रहा था?
1: वो
2: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है।
0: हाँ हाँ बता, डरना मत।
1: वो
2: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
0: हाँ हाँ
2: वो कांपते हुए बोला,
1: वो कंचा।
0: कंचा?
2: वे सक पका गए, कक्षा में भूचाल आ गया।
0: स्टैंड अप।
2: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका, सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
2: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है,
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: तब शक हुआ,
1: कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो।
0: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
0: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी, वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे।
0: अप्पू क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
0: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में?
0: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे।
0: क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए, क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
0: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
0: लाओ।
2: मास्टर जी ने कहा,
0: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
1: ओए,
2: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है।

0: पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
2: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
3: बच्चों, एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
1: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला, मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
2: क्या सब फीस जमा कर चुके?
1: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए

0: कितने चाहिए? कितने?
1: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
0: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
1: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
2: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
1: वो नहीं जानता था।
2: तो फिर?
1: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
0: दे दो।
2: ये लो।
1: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
0: माँ,
3: अरे आ गया।
1: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
0: ये देखो माँ।
3: अरे ये क्या है?
0: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
0: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
1: वो कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
0: खरीदे हैं।
3: पैसे?
1: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
0: दोपहर को दिए थे ना।
1: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
1: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर 3 बजे अभी तक आप सुन रहे थे हमारी पहली सभा के प्रसारण। इन्हीं मीटर्स पर शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर शाम 5 बजे तक एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के प्रसारण उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें यह सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: तुरंत दिखाई देती, तो हम कहते हैं देखिए ऐसे तो हम मिलते नहीं है, और कभी कभी बार बार मिलने लगते
1: मिले तो
0: हैं।
1: अचानक फिर मिलने लगे। मैं जान रही हूं कि आप मेरी ही बात कर रही हैं, अभी
0: होती रहे तो
1: अच्छा लगता है।
0: तो चलिए विषय बता दें आज के।
1: बिल्कुल, आज के विषयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
0: जो

0: बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखकर भेजे हैं।
1: जी हाँ, उनको भी हम जरूर पढ़ेंगे। अगला विषय किस बारे में है बताएंगी?
0: जी, आज कथा सुधा, जिसका सभी श्रोताओं को इंतजार है, आभूषण भाग 3, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। साथ ही
1: बिल्कुल
0: बहुत जल्दी यानी कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए?
1: बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। सोनाली जी बस सुन ही रहे हैं कि बारिश आने वाली है, कब
0: बस
1: आने वाली है।
0: बस आएगी ना, तो हम उसका बहुत खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे। और हम कुछ ऐसा करेंगे बारिश के मौसम में, यानी खूब सारे पेड़ लगाएंगे। जो अभी हम जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन गुठलियों को हमें सहेज कर रखना है। और जैसे ही बारिश आएगी तो हमें खूब सारे पेड़ लगाना है, ताकि हमें इतना इंतजार ना करना पड़े, है
1: वही तो
0: ना?
1: बस सुन रहे हैं, लेकिन बारिश आने के पहले हमें कुछ तैयारियां भी करनी है ना।
0: तो वो कौन सी तैयारियां हैं, वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप, कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ है जिनकी टहनियां जो बहुत बढ़ चुकी है, जो गिरने का डर है, वो कटवाते हैं। क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है, उस बारे में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है, तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें है मक्खन मलाइयो और बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी।
1: क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई हैं, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है।
0: और आप क्या करना है,
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
2: मंगला सुंदरी न सही।

0: भी विलुप्त हो गया, घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो।

0: बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
1: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
2: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा
1: है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, चार प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई। मायके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। दो छोटे भाई, एक बहन और माता, चार प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातः काल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण

0: इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन। शीतला की मां कहती, 4 दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं। सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी मां के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। मां कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई भी विलुप्त हो गया, घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा।
0: एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
4: ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
0: किंतु वो इस दुष्कल्पना है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, 4 प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई, मैके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण।
4: आप क्या है पता नहीं, शीतला, ओ शीतला।
0: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है। जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को

0: सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
1: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही यह सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला बहन, मैं तेरा भाई हूं।
0: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
2: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
3: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
0: कई महीने बीत गए, संध्या का समय था।

0: शीतला बहन, एक बात पूछूं? बताओगी?
1: हाँ,
0: विमल सिंह किस बात पर रूठे थे तुमसे?
1: कुछ नहीं, मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया, बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
2: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की मां और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहां अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी, कर्कश स्वर से बोली,
3: अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है? ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सब काटे हैं। अरे, अपने बनाव सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछती थी ये। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया, अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने। हाँ,
1: क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
0: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
1: जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है, मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
2: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला के मुख कांति मलिन हो गई है, पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले,
0: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
2: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा, मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं।
4: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह जी श्याम, शीतला पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह जयंत पात्रीकर, मंगला ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
5: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
6: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद आई,
5: और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का
6: जी।
5: लेकिन बीच में गीत सुन लिया जाए
6: तो सुनते हैं एक गाना।

0: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार,
1: हाँ,
0: है ना?
1: और दुगना होके मिलता है।
0: बिल्कुल दुगना क्या, चौगुना, आठ गुना होके मिलता है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना।
1: और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले लें।
0: बिल्कुल लेते हैं।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली। और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।
1: बिल्कुल, प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए।
0: उन्हें वक्त दिया जाए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े, या फिर ना घूमना फिरना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़ियां या बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता है। उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में 2-4 पल सुकून के साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी

0: हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
1: लेकिन क्या होता है ना नेहा, कि बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं, और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप
0: बिल्कुल
1: जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाएं, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
0: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी, कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं
1: या
0: उनकी।
1: फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना, उस वक्त हम थोड़ी देर अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे, या फिर क्योंकि क्या होता, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं। तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
0: और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही है, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं। अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं, अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर।

0: नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
1: बिल्कुल सही नहीं है कि कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है, और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई है। ये बहुत, ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नेहा, कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें परिवार में महत्व देना है और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती हैं ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
0: एक गीत सुनना चाहिए,
1: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा, तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए।
0: बिल्कुल मना लेते हैं।

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से
0: खुश
1: मान
0: हो
1: भी जाएंगी, है
0: जाएंगी।
1: ना?
0: हाँ, एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज के व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है और दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में, समाज में, वो आदरणीय है। उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती, बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात
0: ये तो
1: है,
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे माँ पिता हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है, या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं
0: बुरा नहीं
1: चाहेंगे। वो भर
0: चाहेंगे।
1: भर के आशीर्वाद देते। एक

0: जाता है और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई। ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी। INPEA इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
1: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूं।
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी।
1: बहुत इंतजार है क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी गर्मी बढ़ गई है कि
0: हाँ
1: हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे।
0: नहीं आ रहे, और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते
1: और उनका
0: हैं।
1: रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। कपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है।
1: और वो जो खुशबू आती है नहीं,
0: हा
1: हाँ
0: हा
1: हाँ
0: हा सौंधी
1: हाँ
0: सौंधी खुशबू।
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते
0: वो तो
1: हैं।
0: है, लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
1: बहुत
0: कई
1: जरूरी
0: सारे
1: है।
0: बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए। बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो यस, वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना,
0: जी
1: क्योंकि क्या
0: बिल्कुल।
1: होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नाली नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो, तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपंप वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो
0: बिल्कुल
1: इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है, तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना, इससे पानी की बचत तो होती है साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है, तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए।
0: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए। छत, दीवारें और खिड़कियों में कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा ना हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया

0: वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
1: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता है, फिर उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
0: बीमारियों का
1: हाँ
0: खतरा बढ़
1: बढ़
0: जाता
1: जाता
0: है।
1: है। इसलिए फिर वो जो है ना, जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है, जो बोतल्स वगैरह हैं
0: हाँ
1: और बहुत
0: हाँ
1: सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबालकर छानकर पीने की आदत डालना जरूरी है, और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाए।
0: बिल्कुल। एक साथी लिख रहे हैं, बारिश तो भाई होनी होनी होती है, तो आषाढ़ सावन भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है। और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे, नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून के बारिश का हाल था, नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती हैं।
1: बिल्कुल करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए? आप एक गाना
0: अभी
1: सुनना,
0: गीत सुनना भी बहुत जरूरी
1: तो
0: है।
1: सुनते हैं गीत।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकें। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त
0: यानी
1: चीजें
0: अभी
1: खाने का मन
0: गर्मी में ना
1: करता है।
0: तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा
1: हाँ
0: खाने का मन होता है। पर जब
1: हाँ
0: बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूड़ी हो, आलू की
1: पकोड़े
0: सब्जी
1: हो,
0: हो।
1: अरे वाह सोनाली जी, अब तो आप और नाम मत
0: तो आज के
1: लीजिए।
0: हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाइयो और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाइयो सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन, इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबाल कर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट, इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। नेहा, आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है। और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती
0: और वो
1: होगी।
0: ना दोने में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है
1: हाँ
0: इस बारे में, पर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन
1: तभी ये
0: मलाइयों
1: खाया
0: खा के
1: जा
0: आएंगे,
1: सकता है।
0: क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
1: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिष या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के, परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इस वीडियो में इसमें हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूड़ी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है।
0: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं वो
1: हाँ
0: थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेड़मी पूड़ी होती है ना, वो कड़क
1: कुरकुरी
0: रहती है।
1: रहती है, जो खाने में भी मजा आता है।
0: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और नेहा अगरकर देसाई का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली, सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं, तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
1: तो देखिए, जैसा कि आज का माहौल है उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधुबन।

0: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुन पाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है दरअसल वही महान कहलाता है, और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है, तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं, और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है, अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए, किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखने की एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले, सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए, 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया। पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया है,
1: तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होना चाहिए।
0: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए, तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
1: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
0: जी जी जी, तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे,
1: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्योदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है, और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए, हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
0: अच्छा
1: जी,
0: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
1: जी हाँ।
0: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
1: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना

आड़ी का है राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था। आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द

0: दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातः काल का तो बताया था, 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए, फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए, शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना, रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारे
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का

0: समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
1: अच्छा।
0: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है, तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कड़ी चावल बना सकते हैं, या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
1: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
0: दिन में हम खा सकते हैं, क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है। पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा? फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना, कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कड़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं। तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
1: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूंट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
0: बहुत अच्छा सवाल किया राजन जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है। बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है, आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए। पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए, थोड़ा पानी आप पीजिए। फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
0: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
1: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही ना,
0: पानी की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता है।
1: और कहा यह भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
0: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है, तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना खाना चाहिए, खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए, यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए। पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
0: जी जी।
1: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
0: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी। तुम

0: वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं। आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी।
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी, कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की।
0: जी
1: विहार मतलब कि रिक्रिएशन बोलते हैं, या मनोरंजन कह सकते हैं, या और भी इसे शिथिलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ
0: रिलैक्स,
1: रिलैक्सेशन,
0: एंटरटेन करना।
1: इंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं हम तो नहीं तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना,
0: जी
1: वो भी
0: जी
1: हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शिथिलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी, पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का
0: या
1: शौक है,
0: किताबें
1: म्यूजिक
0: पढ़ना
1: का,
0: पसंद है।
1: किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं, उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत, हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं, या
0: जी
1: कुछ हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं, तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते हैं।
0: बिल्कुल
1: पर यदि आप, एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
0: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए। रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई हैं तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे।
1: देखिए, आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
0: अनुशासित
1: टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए। उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए।
0: जी,
1: और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
0: जी जी जी।
1: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होके कार्य होगा।
0: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति, तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी जी,
1: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
0: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहा गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिंदगी।

0: अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,
1: अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है।
0: तो अंधे ने कहा,
2: अरे मूर्ख तुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो चोर

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है आज के सेहतनामा कार्यक्रम में, सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं,
2: प्रतिपल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं, घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
2: क्या क्या किया,
3: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि हम उस पर गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। अच्छा। कि रोज हमें कोशिश करना, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे कि हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
2: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
3: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है और वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
2: वो टेक्निक जो आप बता रही थी उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
3: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
2: विचलित नहीं करेंगी,
3: विचलित करेंगी नहीं आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से,
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
2: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है।
3: जी हाँ बिल्कुल, वही मेरे भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
2: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए?
3: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो, क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
2: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
3: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
2: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
3: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से दे। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
2: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
4: उठे सबके कदम देखो रम पम पम,

0: रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तेरा रम पम पम।
1: शारदा जी, गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर, यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको, मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर, तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर, यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं, तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े

0: होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं, आराम तो नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है, या किसी वाहन की आवाज आ रही है, या पंखे की आवाज आ रही है, या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो बहुत ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे। आपके लिए वो 20 मिनट का या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं, वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा।
1: और फिर से
0: तो
1: अपना काम करना।
0: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है। आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
1: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है। और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं,
0: हाँ जी,
1: थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान मग्न हो
0: वहीं पर
1: जाइए।
0: आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए, खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
1: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया, बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
0: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए, किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए। आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए, आपके लिए जरूरी है कि नहीं है। है तो आप 1 हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
1: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
0: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी।
1: जी
0: मेरा
1: जी
0: मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं जो तू

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जिससे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
0: तो सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ, बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा
1: जी हाँ,
0: मन,
1: जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेन जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा। कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की।
3: मीडियम वेव 336.7 अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 हैं। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम सुन रहे थे। हमारी दूसरी सभा अब मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज शाम और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सरस्वती सिंह। आज की इस खूबसूरत शाम में बात करेंगे एक ऐसे एहसास की जो हर रिश्ते को खास बना देता है। जी हाँ, मोहब्बत।

दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, ये माँ की दुआओं में होती है, पिता की चिंता में होती है, भाई बहन की नोकझोंक में होती है और दोस्तों की सच्ची मुस्कान में भी होती है। कहते हैं रिश्ते खून से बनते हैं, लेकिन मोहब्बत उन रिश्तों को दिल से जोड़ती है। जब कोई बिना कहे आपकी बात समझ जाए, जब आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ले, तो समझ लीजिए कि वो रिश्ता मोहब्बत से भरा हुआ है। जिंदगी की इस भागदौड़ में हम अक्सर अपने रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए, रिश्ते पौधे की तरह होते हैं, इन्हें भी प्यार, विश्वास और देखभाल की जरूरत होती है। एक छोटा सा लफ्ज कि कैसे हो, एक सच्ची मुस्कान या बस कुछ पल साथ बिताना, कई बार यही मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इजहार होता है। आज अगर कोई अपना आपसे दूर है तो उसे एक कॉल कीजिए, अगर किसी से नाराज हैं तो दिल का दरवाजा थोड़ा सा खोलिए, क्योंकि मोहब्बत का रिश्ता तब और मजबूत होता है जब उसमें माफी और अपनापन शामिल हो। कि मोहब्बत का रिश्ता बड़ा खास होता है, बिना किसी शर्त के एहसास होता है, ना शब्दों की जरूरत, ना वादों का सहारा, एक दूजे के दिल में बस विश्वास होता है। खुशियों में हंसी बनकर साथ चलता है, गम की राहों में भी पास होता है,

न शब्दों की जरूरत, न वादों का सहारा, एक दूजे के दिल में बस विश्वास होता है। खुशियों में हंसी बनकर साथ चलता है, गम की राहों में भी पास होता है। दूरी चाहे कितनी भी बढ़ जाए दरमियां, सच्चा प्यार हर पल आसपास होता है। न शब्दों की जरूरत, न वादों का सहारा, एक दूजे के दिल में बस विश्वास होता है। खुशियों में हंसी बनकर साथ चलता है, गम की राहों में भी पास होता है। दूरी चाहे कितनी भी बढ़ जाए दरमियां, सच्चा प्यार हर पल आसपास होता है। मोहब्बत का रिश्ता यूं ही नहीं बनता, इसमें समर्पण, सम्मान और साथ होता है। जब दो दिल एक दूजे को समझने लगते हैं, तभी मोहब्बत का रिश्ता आबाद होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि रिश्तों की डोर नाजुक जरूर होती है, मगर मोहब्बत से बन जाए तो उम्र भर साथ निभाती है। तो आप भी अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए, उन्हें वक्त दीजिए और सबसे बढ़कर उनमें मोहब्बत बनाए रखिए। मैं हूं सरस्वती सिंह और आप सुन रहे हैं मोहब्बत के रिश्ते। अब

0: तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहती मेरे निशान।
1: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
2: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
1: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
3: से नो टू प्लास्टिक।
4: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 होने को हैं। अब पेश है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी शीरीन खान
1: और साथ हूं मैं आपका रेडियो पार्टनर नतांश अग्रवाल। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का हमारा सवाल है, वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था?
0: दोस्तों सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा आज का सवाल है, वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? और इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी रामपुर पर और उसके अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजना होगा अपना सही जवाब। सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों का नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के एंड में। नतांश, आजकल E85 ईंधन की काफी चर्चा हो रही है, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर E85 ईंधन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है?
2: हाँ शिरीन, E85 वास्तव में भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। आपको बता दें, इसमें 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल का मिश्रण होता है। इसका उद्देश्य पेट्रोल पर निर्भरता को कम करना होता है।
0: लेकिन भारत के लिए ये इतना आवश्यक क्यों है नतांश?
2: क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। यदि हम E85 जैसे वैकल्पिक ईंधनों का अधिक उपयोग करेंगे तो आयात कम होगा और देश ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बन सकेगा।
0: इसका मतलब है इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।
2: बिल्कुल शिरीन, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और साथ ही इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा।
0: मगर किसानों को किस प्रकार लाभ मिलेगा नतांश?
2: बताते हैं। इथेनॉल गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। जब इसकी मांग बढ़ेगी तो किसानों की उपज की मांग भी बढ़ेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
0: तो ये तो किसानों और देश दोनों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन पर्यावरण के दृष्टिकोण से E85 कितना उपयोगी है?
2: श्रीन, E85 अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है, क्योंकि इसके उपयोग से हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होता है, जिससे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है।
0: यानी एक तरफ आत्मनिर्भरता और दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण, दोनों लक्ष्य पूरे हो सकते हैं।
2: बिल्कुल, हालांकि इसके व्यापक उपयोग के लिए उपयुक्त वाहनों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज्यादा है।
0: तो फिर तो हम भी कह सकते हैं कि E85 केवल एक ईंधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है।
2: बिल्कुल सही कहा शिरीन, ये ऊर्जा सुरक्षा, किसान कल्याण, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण सभी को एक साथ आगे बढ़ाने का माध्यम बन सकता है।
0: बहुत सही नतांश, आशा है कि आने वाले समय में E85 भारत की ऊर्जा क्रांति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा।
2: बिल्कुल, और हम सभी को ऐसे पहलों के प्रति जागरूक रहना चाहिए जो देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देते हैं।
0: तो दोस्तों हमारी ये बातचीत तो यूं ही चलती रहेगी, चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास।
3: फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां

0: आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

0: वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम युववाणी में। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।

0: दोस्तों कुछ खास है। आज हम बात करेंगे विश्व वृद्ध रिवार्ड जागरूकता दिवस के बारे में, यानी वर्ल्ड एल्डरली अब्यूज अवेयरनेस डे, जिसे हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है।
1: दोस्तों हमारे जीवन की सबसे अनमोल धरोहर कौन है? वे हैं हमारे माता पिता, दादा दादी और परिवार के बुजुर्ग सदस्य। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे पालन पोषण, शिक्षा और बेहतर भविष्य के निर्माण में समर्पित कर दिया। लेकिन क्या हम उन्हें वह सम्मान, प्रेम और सुरक्षा दे पा रहे हैं जिनके वे हकदार हैं?
0: इन्हीं सवालों पर सोचने और समाज को जागरूक करने के लिए हर साल आज ही के दिन विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा और भेदभाव के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
1: दोस्तों वृद्ध दुर्व्यवहार केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, ये कई रूपों में सामने आता है। किसी बुजुर्ग को अपमानित करना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उनकी इच्छाओं को अनदेखा करना, आर्थिक रूप से उनका शोषण करना या उन्हें अकेला छोड़ देना भी दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है।
0: आज के बदलते सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। व्यस्त जीवन शैली, काम का दबाव और तकनीक पर बढ़ती निर्भरता के कारण कई बार बुजुर्ग स्वयं को परिवार से कटा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है अपनेपन, सम्मान और भावनात्मक सहयोग की।
1: दोस्तों कल्पना कीजिए, जिन हाथों ने कभी हमारी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, जब वही हाथ उम्र के कारण कमजोर हो जाएं, तो क्या उन्हें सहारे की आवश्यकता नहीं होगी? जिन आँखों ने हमारे सपनों को आकार दिया, क्या उन्हें हमारे स्नेह की रोशनी नहीं चाहिए?
0: आपको बता दें, बुजुर्गों के प्रति सम्मान केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। भारतीय संस्कृति में सदैव कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अर्थात माता पिता देवतुल्य हैं, इसलिए उनका सम्मान करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक मूल्य है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए।
1: हम सभी अपने स्तर पर कुछ छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। प्रतिदिन कुछ समय अपने बुजुर्गों के साथ बिताएं, उनकी बातें सुनें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें ये महसूस कराएं कि वे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। कई बार कुछ मिनटों की बातचीत भी उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है।
0: साथियों विशेष रूप से हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। आज जो बुजुर्ग हैं वे कभी युवा थे और कल हम भी उसी आयु वर्ग का हिस्सा बनेंगे। इसलिए जिस समाज का निर्माण हम आज करेंगे उसी समाज में हमें भी भविष्य में जीवन बिताना होगा।
1: विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें ये संदेश देता है कि बुजुर्गों की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम संकल्प लें कि अपने परिवार और समाज में किसी भी बुजुर्ग के साथ होने वाला दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करेंगे।
0: दोस्तों अब बस इतना कहना चाहेंगे, बुजुर्ग घर का अनुभव है,
1: संस्कारों की पहचान है,
0: उनका सम्मान कीजिए,
1: वे हमारे जीवन का अभिमान है।
0: अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका साथ दें और उनके चेहरे की मुस्कान को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानें।

0: दोस्तों कुछ खास है आज में, आज बस इतना ही।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट करियर डायरी के सब सेगमेंट साप्ताहिक रोजगार समाचार की ओर।
3: दोस्तों सेगमेंट जॉब अपडेट्स में सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2026 की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी एसएससी सीजीएल परीक्षा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी एवं ग्रुप सी पदों के लिए आयोजित की जाती है। इसके लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। आवेदन शुल्क सामान्यता सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के लिए 100 रुपए तथा महिला एससी एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं होता है। आवेदन

0: एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in से किया जा सकता है।
1: अब बात करते हैं UPSSSC लोअर PCS रिक्रूटमेंट 2026 की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लोअर PCS के लिए कुल 2516 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए मात्र ₹25 रखा है। योग्यता के रूप में उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री तथा पेट 2025 स्कोर कार्ड होना आवश्यक है। इच्छुक अभ्यर्थी UPSSSC की आधारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट है UPSSSC.gov.in।
0: दोस्तों, अगली वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO, ARO एवं कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत कुल 543 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें रिव्यू ऑफिसर के कुल 138 पद, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 380 पद तथा 25 पद कंप्यूटर असिस्टेंट के शामिल हैं। उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री के साथ CCC या समकक्ष कंप्यूटर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आवेदन शुल्क सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के लिए ₹1200 तथा उत्तर प्रदेश के SC ST एवं EWS वर्ग के लिए ₹1000 निर्धारित किया गया है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम संचालित की जा रही है। इसके लिए आप exams.nta.ac.in पर जाके फॉर्म भर सकते हैं।
1: अब बात करते हैं RRB ALP रिक्रूटमेंट 2026 की। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP के कुल 11,127 पदों की भर्ती निकाली गई है। योग्यता के रूप में अभ्यर्थी के पास 10वीं के साथ ITI या संबंधित इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। आवेदन शुल्क सामान्य OBC एवं EWS वर्ग के लिए ₹500 तथा SC ST महिला एवं अन्य आरक्षित वर्गों के लिए ₹250 रखा गया है। आवेदन सभी क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्डों के आधारित वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है और इसकी वेबसाइट है rrb.gov.in।
0: और दोस्तों, अब बात करेंगे अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण भर्ती यानी UPSSSC एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 की। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही के कुल 722 पदों पर भर्ती की जा रही है। उम्मीदवार का इंटरमीडिएट यानी 12th उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा साथ में पैट 2025 में पात्र होना भी जरूरी है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए ₹25 रखा गया है। आवेदन UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट UPSSSC.gov.in पर किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप इन भर्तियों के लिए पात्र हैं तो अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, समय रहते आवेदन अवश्य करें। दोस्तों, ये था हमारा सेगमेंट करियर डायरी का पहला सब सेगमेंट साप्ताहिक रोजगार समाचार। अब बढ़ेंगे सेगमेंट में आगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों अब बढ़ते हैं सेगमेंट करियर एडे के नेक्स्ट सब सेगमेंट स्टार्टअप की ओर।
1: दोस्तों आज हम आपके साथ एक ऐसे स्टार्टअप आइडिया की चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल एक व्यावसायिक अवसर है बल्कि समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस स्टार्टअप का नाम है एल्डरली टेली काउंसलिंग प्लेटफॉर्म।
0: दोस्तों आज भारत सहित पूरी दुनिया में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के कारण लोग लंबा जीवन जी रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ी चुनौती भी सामने आ रही है, अकेलापन, तनाव, चिंता और भावनात्मक उपेक्षा।
1: कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे नौकरी या शिक्षा के कारण दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं। परिवार से दूरी, सामाजिक संपर्क में कमी और बढ़ती उम्र की समस्या उनकी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक उनकी पहुंच बहुत सीमित होती है।
0: दोस्तों यहीं से जन्म लेता है एक अनोखा स्टार्टअप आइडिया, एल्डरली टेली काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। कल्पना कीजिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बुजुर्ग अपने घर बैठे फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से प्रशिक्षित काउंसलर्स, मनोवैज्ञानिकों और भावनात्मक सहयोगकर्ताओं से बात कर सके, उन्हें अपनी चिंताएं साझा करने, भावनात्मक समर्थन पाने और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता ना हो।
1: इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी विशेषता होगी इसकी सरलता। कई बुजुर्ग स्मार्टफोन और जटिल एप्स के उपयोग करने में सहज नहीं होते, इसलिए एक साधारण फोन कॉल आधारित सेवा भी उपलब्ध कराई जा सकती है जिससे वे केवल एक नंबर डायल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
0: ये स्टार्टअप केवल काउंसलिंग तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें नियमित वेलनेस चेक इन कॉल्स, समूह संवाद सत्र, अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए मित्रता कार्यक्रम और आवश्यकता पड़ने पर परिवार के सदस्यों को फीडबैक देने जैसी सुविधाएं भी शामिल की जा सकती हैं।
1: व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो एक मॉडल भी मजबूत हो सकता है। मासिक सदस्यता, परिवार आधारित पैकेज, वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठनों के साथ साझेदारी और कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR सहयोग इसके प्रमुख सोर्स बन सकते हैं।
0: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्टार्टअप केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं होगा बल्कि सामाजिक प्रभाव पैदा करेगा। ये बुजुर्गों को ये एहसास दिलाएगा कि उनकी बातें सुनने वाला कोई है, उनकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं और वे समाज के लिए आज भी उतने ही मूल्यवान हैं।
1: दोस्तों आज का दौर स्टार्टअप का है, लेकिन सबसे सफल स्टार्टअप वही होते हैं जो किसी वास्तविक समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। एल्डरली टेली काउंसलिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसी ही पहल हो सकती है जो तकनीक और संवेदनशीलता को जोड़कर लाखों बुजुर्गों के जीवन में खुशियां ला सकती है।
0: तो क्यों ना हम ऐसे नवाचारों के बारे में सोचें जो केवल कारोबार न बने बल्कि समाज को भी बेहतर बनाए। याद रखिए, जब बुजुर्ग मुस्कुराते हैं तो केवल एक चेहरा नहीं बल्कि पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है।

0: दोस्तों ये था आज का हमारा सेगमेंट स्टार्टअप।
1: दोस्तों अब बढ़ते हैं करियर डायरी के नेक्स्ट सब सेगमेंट सफल व्यक्तित्व की ओर, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ी हैं अर्पिता सिंह, जो एक सीए एस्पिरेंट है और जिनसे बात की है नतांश अग्रवाल ने।

0: और प्रीमियर बैंकिंग।
1: अर्पिता, श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए, फिर हम जाहिर रखते हैं आज की बात।
2: मेरा नाम अर्पिता सिंह है, मैं अभी करेंटली सीए परसों कर रही हूँ और साथ में ग्रेजुएशन के लिए बीकॉम डिग्री भी परसों कर रही हूँ। करेंटली मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हो चुका है और सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप वन क्लियर हो चुका है एंड आई हैव गिवन ग्रुप टू एग्जाम ऑल्सो।
1: जी, बहुत अच्छा लगा जान के कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर करके ऑलरेडी बैठे हैं और आगे इसको कंटिन्यू कर रही हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सीए होता क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, पूरा प्रोसेस क्या होता है इसका।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। किसी भी पर्सन को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जरूरी नहीं है कि हमने अपना 12th कॉमर्स से परस्यू किया हो या फिर साइंस से। किसी भी बैकग्राउंड से अगर बच्चे ने 12th पास आउट किया है तो वो इस डिग्री को परस्यू कर सकता है। एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी हैव टू क्लियर सीए फाउंडेशन एग्जाम। सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने के बाद हम लोगों को सीए इंटरमीडिएट में आना होता है। उसमें दो ग्रुप्स होते हैं एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट की वो एक ग्रुप देना चाहते हैं या दोनों ग्रुप। आफ्टर सीए इंटरमीडिएट वी हैव our articleship of 2 years and now there is the option we can do articleship of 1 year and 1 year of industrial training. After these 2 years we have to give our final exams.
1: जी, जैसा कि आपने वर्ड यूज किया आर्टिकलशिप, तो क्या आप समझा सकती हैं क्या होती है आर्टिकलशिप?
2: जी, हमने जितना भी पढ़ा होता है फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में उन थ्योरी की चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं उन चीजों को सीखने के लिए हमें सीए के अंडर वर्क सीखना होता है, तो उस वही आर्टिकलशिप में आता है।
1: जी, मतलब आर्टिकलशिप में हमें ग्राउंड रियलिटी पर चलती है कि इसका काम होता कैसे।
2: जी सर,
1: जैसे कि आपने बताया कि आप बीकॉम भी साथ में परस्यू कर रही हैं, तो बीकॉम करने का भी एडिशनल बेनिफिट है या कोई अगर सिर्फ सीए पर डिपेंडेंट है तो वो करियर परस्यू कर सकता है, इसका क्या कनेक्शन है कि बीकॉम करना नेसेसरी है या ऑप्शनल है?
2: इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज अगर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो वी आर एलिजिबल टू गिव एनी अदर एग्जाम ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट को सीए के बाद यूपीएससी परस्यू करना है तो वहाँ पे कंपल्सरी होता है कि बच्चे के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर और भी किसी गवर्नमेंट या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन होना कंपल्सरी होता है। तो बीकॉम परस्यू करना ऑलमोस्ट सिलेबस इज सेम ऑफ बीकॉम एंड सीए, सो वी कैन परस्यू इट एंड इट इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी। सीए इज इटसेल्फ अ वर्थ इट डिग्री।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ये हमारे ऊपर डिपेंड है, अगर हमें करियर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है सीए के बाद भी तो बीकॉम से वो हो सकती है।
2: जी,
1: जैसे कि कॉमर्स आपने बताया कि आप पे कॉमर्स रहा है और आप बीकॉम कर रही हैं, तो सीए के अलावा कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो आज के युवाओं को एक्सप्लोर करने चाहिए?
2: सीए इज अ टाइम टेकिंग कोर्स। नॉर्मली एक स्टूडेंट को क्लियर करने के लिए 4.5 इयर्स लग जाते हैं इफ वी आर क्लियरिंग इट फर्स्ट अटेम्प्ट, और वरना 5-6 साल इज नॉर्मल फॉर सीए। अगर हम सीए परस्यू नहीं कर रहे हैं बिकॉज काफी ज्यादा टाइम टेकिंग कोर्स है और बहुत ज्यादा हार्डवर्क मतलब कॉम्पिटेटिव भी बहुत ज्यादा है और डिफिकल्ट भी है, तो हम इसके अलावा करेंटली सीएफए दैट इज सी फाइनेंशियल अकाउंटेंट और एसीसीए ऐसे भी कई सारे एग्जाम्स हैं सीए
1: बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकारी हासिल करके। और जाते जाते मैं बस ये पूछना चाहूंगा कि आज के युवा जो अपना करियर किसी भी क्षेत्र में बनाना चाहते हैं आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे?
2: किसी भी फील्ड में हमें अगर अपना करियर बनाना है तो हमारे अंदर एक डिजायर होना चाहिए और एक बहुत फेमस सेइंग है व्हेन देयर इज अ डिजायर देयर इज अ वे। तो अगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो विल होगी कि हमें करना है तो वी कैन परस्यू एनी करियर ऑप्शन एंड वी विल।
1: जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी रामपुर में समय देने के लिए धन्यवाद।
3: दोस्तों, ये था हमारा करियर डायरी का सब सेगमेंट सफल व्यक्तित्व, जिसमें हमारे साथ जुड़ी थी सीए एस्पिरेंट अर्पिता सिंह, जिनसे बात की थी नतांश अग्रवाल ने। चलिए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों ये थे हमारे आज के सेगमेंट्स और अब वक्त है आज के सवाल का सही जवाब जानने का। हमारा सवाल था, वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? और इसका सही जवाब है 2019। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी
1: आकाश रस्तोगी, राजवीर सिंह यादव, शारनू रंसारी, लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा, अजीत कसाना, धर्मेंद्र छिपा, पुंजाजी नवाकर, रफीक पवार, बैनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, जॉन दी कैथरो, दीपेश वर्मा, गुरमीत सिंह मीता, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी, रिफाकत हुसैन सिद्दीकी, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र

जी शाह, सुरेश राठौर, हीरा मणि वर्मा, तुलसी मस्कीन, किशन सपकाल, राजपाल गजभैये, श्री कृष्ण बाठे, मास्टर विठल सुरोशे, हल्के जयपाल यादव, भेरूलाल वाक्तर यदाकड़, मसरूर हसन, राजू मिगलानी, गजरनी इलेदरे प्रभावली, जीशान वारसी, अरविंद कुमार, बीपी गौतम, प्रवीण चौहान, फागुराम यादव, आर्यन राज, बलवंत कुमार वर्मा, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, सोहन जोशी, दिग्दर्शन गौड़, कैलाश फूलमाली, रवि रस्तोगी, जाकिर मंसूरी, संजय डींगिया, इरशाद अहमद अंसारी, लाल मोहम्मद अंसारी, हाजी गफ्फार खान, जगदीर धाकड़ नायमा, मिसबा समची, मोहम्मद सईद अब्बासी, आमिर हुसैन, धीरज भाई राबरी, सुरेश गगनेजा, राधे श्याम पांडे, मोहम्मद अफजल ताज, विनोद मूणत, समचुल कुमार राही, मुजफ्फर अली खान, मोहम्मद यासिन अंजन, आसिफ चौधरी, अनिल बिगोड़ के, विजय सुरलकर, आफ्ताब अंसारी, गंगा सिंह रावत, मोहम्मद जाहिद अली, मोहम्मद आमिर अंसारी, देवशंकर तामुरिया, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, विमल सक्सेना भारती, भाई रफत साहब, मुकेश कश्यप, भागवत चौबे लाडला जी, रेहाना खान और चौधरी राजवीर सिंह। आप सभी को सहयोग देने की बहुत बहुत बधाई। अब सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: तो साथियों अब वक्त है आपसे विदा लेने का। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम, हमें बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है, युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन कोड संख्या है 244901। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संदेश भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com, उस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपकी रेडियो साथी शीरीन खान
1: और नताश अग्रवाल को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुत कर रहे थे नतांश अग्रवाल और शीरीन खान। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी समाचार अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40%

0: अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ आवश्यक सूचनाएं।

गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में पहले ये सूचना सुनिए। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली संभल जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि अक्षय गुप्ता पुत्र कमेश चंद्र गुप्ता निवासी मोहल्ला कोट पूर्वी निकट गोरी सहाय मंदिर थाना कोतवाली संभल विगत 2024 से लापता हैं। इनकी उम्र 31 वर्ष, रंग गेहुआ, कद 5 फीट 9 इंच और चेहरा गोल है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली संभल जिला संभल मोबाइल नंबर 7982726222। सूचना समाप्त हुई।

खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में एक और सूचना सुनिए। प्रभारी निरीक्षक थाना बनियाठेर जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि ऋतिक दिवाकर पुत्र बंटी दिवाकर निवासी मोहल्ला हाथीखाना कस्बा नरौली थाना बनियाठेर जिला संभल विगत 20 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 15 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फीट 5 इंच और चेहरा औसत है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना बनियाठेर जिला संभल मोबाइल नंबर 7300544971। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 7300544971। सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब सुनिए कुछ आवश्यक संदेश।
1: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
3: राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म, जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।
4: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
5: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 6:10 होने को हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में हम आपको सुनवा रहे हैं ओपी नायर द्वारा संगीतबद्ध किया ये खूबसूरत गीत। आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है एक मुसाफिर एक हसीना।

आवाजों में गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम चटपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:20 हुए हैं। कृषि श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को अब्दुल हफीज भैया
1: और दीपक की
0: राम
1: राम राम।
0: और दीपक भैया कैसे हैं आप?
1: भैया हम तो ठीक ठाक हैं और हमें उम्मीद है जो हमारे किसान साथी हैं वे ठीक ठाक होंगे।
0: हाँ भैया।
1: और भैया गर्मी को समय चल रहा है तो किसान साथी अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें।
0: हाँ दीपक भैया आपने बहुत अच्छी बात बताई और साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पशुओं का भी ध्यान रखें।
1: हाँ।
0: अपना तो रखना ही है साथ साथ पशुओं का ध्यान भी रखना है क्योंकि इस समय जो गर्म लू चल रही है पारा देखा होगा आपने।
1: हाँ।
0: वो 40 के पार होने जा रहा है।
1: हाँ।
0: और बहुत तेज़ लू चल रही है जिसे हीट वेव भी कहते हैं। तो ये हमारे पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। जो बाड़े होते हैं उनमें सीधी गर्म हवाएँ जाती हैं इससे हमारे पशुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
1: इसके लिए जो है देखो पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था बनाए रखें और पशुओं के लिए नहलानो है धुलानो वो सब समय पर करें।
0: हाँ दीपक भैया और आज हम जो चर्चा में लेकर आए हैं वो है फलदार वृक्षों की देखभाल कैसे।
1: हाँ भैया तो देखो इस समय भैया फलन में जो है अमरूद हैं और आम की फसल है इसके पेड़ खड़े हुए हैं।
0: हाँ तो भैया। हाँ। आम की तो लगभग तैयारी है और
1: हाँ।
0: वो बाजार में लगभग बिकने को तैयार है और बिक भी रहा है।
1: हाँ और आम के जो पौधा पर जो फल जो है पक जाता तो बाकी समय से तोड़ाई कर लें। बाकी समय रहते भी अगर तोड़ाई कर लेंगे तो जो बहुत ज़रूरी है।
0: हाँ भैया और उसके साथ साथ जैसे अमरूद के बाग हैं उनमें समय से सिंचाई करें। अब इस समय फूल आ रहा है और कुछ जो फल हैं वो बन भी चुके हैं तो उसका भी ध्यान रखें कि जो सुंडी होती है गिदार होती है जो इंसेक्ट लगते हैं बहुत ज़्यादा इसको प्रभावित करते हैं। और खासकर देखा होगा दीपक भैया आपने कि वो बरसात के मौसम में ज़्यादा परेशानी होती है जो फल जो होते हैं वो सड़ते हैं और नीचे गिर जाते हैं।
1: देखो इस समय बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला है तो इस समय जो है इन चीज़ों को ध्यान रखें। और एक बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें जो पौधा है उनकी जल निकासी की व्यवस्था अवश्य देख लें जल भराव ना हो गए उनमें।
0: हाँ दीपक भैया इस समय जो है बरसात का समय लगभग शुरू ही है।
1: हाँ।
0: तो जल भराव का बहुत ध्यान रखना भी ज़रूरी होगा और साथ साथ सिंचाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस समय जो हीट वेव है जो लू चल रही है वो ज़मीन के तापमान को भी बढ़ाती है और ज़मीन जो है सूखी हो जाती है तो समय समय पर और हल्की सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है।
1: हाँ देखो हमारे कुछ किसान साथी जो कहते हैं जैसे अगर नमी वामन ना रही और फिर पानी लगाते हैं तो फल चू जाते हैं।
0: हाँ तो इनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है
1: इसलिए जो उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखेंगे तो इस असुविधा से बच जाएंगे।
0: हाँ कुछ हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो बरसात के मौसम में अपने मेहनबंदी नहीं करते हैं जो हमारे बाग और बगीचे होते हैं उसमें और पानी जो है वो खड़ा रहता है।
1: हाँ।
0: तो मेहनबंदी ज़रूर करें और पानी की निकासी का साधन बहुत ज़रूरी है और साथ साथ जो देखा होगा दीपक भैया आपने कि जो फल काने हो जाते हैं उनकी रोकथाम के लिए जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो हमारे किसान भाई बड़ा सूझबूझ करके लगाएं जिसमें इमामेक्टिम एक दवा आती है वो दवा लगभग 250 ग्राम दवा लेके और कम से कम 500 लीटर पानी में मिला के और अगर उसका वो छिड़काव करते हैं अपने बगीचों पर तो उससे जो कीट होता है वो मर जाता है और जो लार्वे होते हैं और सुंडियाँ होती हैं सारी मर जाती हैं। अगर उसमें माहू भुनका या मच्छर लगा है तो थाइमोक्सम जो दवा आती है वो 250 ग्राम उसमें ले लें तो ये 500 लीटर की एक तरह से डोज हो गई जो एक एकड़ जो बाग होता है उसका उसमें पर्याप्त होता है।
1: और भैया अगर जैविक तौर पर हम बात करें जैसे नीम का तेल ले सकते हैं जिससे जो देखो फल जब होते हैं तो उसके लिए खान के लिए जो है तुरंत बाजार में चले जाते हैं इसके लिए जो है नीम के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं और जैविक जो कीटनाशक आते हैं उनको इस्तेमाल करें। और भैया आज जो है विकसित खेती अभियान भी चल रहा है भैया।
0: हाँ दीपक भैया इसमें किसानों को मृदा परीक्षण आधारित संतुलित उर्वरक एवं कृषि आदानों के उपयोग के प्रति जो है जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग हरी खाद जैविक खाद और जैव उर्वरक के उपयोग के इस संबंध में प्रशिक्षण कर उनकी क्षमता का जो विकास कराना है यही एक तरह से जो अभियान चल रहे हैं गाँव चल रहे हैं। आज देखा होगा आपने कि वो 14, 15 और 16 जून को एक ब्लॉक स्तरीय कृषि मेले लगे हैं यानी कि उसमें सब किसान भाइयों को हमारे बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से प्राकृतिक खेती करें जिसमें जीवामृत है नीमामृत है तो इस तरीके के अगर जो केमिकल वाले फर्टिलाइजर हैं यानी जो रासायनिक खाद होते हैं उनका कम से कम हमारे किसान भाई उपयोग करें और जो देसी खाद है यानी कि जो हमारे पशुओं से तैयार होता है सड़ी गली गोबर की खाद है, और कुछ ऐसे खाद जो हम अपने आप से तैयार कर सकते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट है, तो इस तरीके के खाद अगर करेंगे तो हमारा जो केमिकल वाले जो खाद होते हैं, रसायन होते हैं, इनसे छुटकारा भी मिलेगा। और देखा होगा आपने दीपक भैया के धीरे धीरे हमारी ज़मीन जो है बंजर की तरफ जा रही है,
1: बंजर होती जा रही है, उससे जो है भैया हमारी फसल को जो है लागत बढ़ती जा रही है।
0: हाँ, और जो उसका वाजिब दाम होता है वो भी नहीं मिल पाता।
1: हाँ, और मेन चीज़ जो है अगर हम उस फसल में जो है अगर रासायनिक खादन को प्रयोग ना कर पा रहे हैं तो हमारी फसल जो है उत्पादन न दे पा रही है, इससे जो हमारी मृदा को स्वास्थ्य जो है बिल्कुल बिगड़ गया है।
0: हाँ, तो हमारे किसान भाई ध्यान दें कि गाँव हमारे यहाँ कृषि विभाग के अधिकारी जो है जा रहे हैं और वो बैठकें कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरीके से अपनी मिट्टी को बचाना है, और मृदा परीक्षण का कराना बहुत ज़रूरी है। दीपक भाई, मृदा परीक्षण अगर हमारे किसान भाई कराते हैं तो उससे उनके पोषक तत्वों का पता चलता है, जैसे नाइट्रोजन है, पोटास है, फॉस्फोरस है, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और जो बोरोन है, कोबाल्ट है, एफी है, यानी कि जो लोहा तत्व होता है, ये सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी भी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दे रहे हैं, और किस तरीके से मिट्टी की जांच कराएं वो सब बता रहे हैं। तो ये अगर हमारे किसान भाई अपनाएंगे तो जो हमारा खर्च होता है रासायनिक पर वो खर्च भी कम होगा, और जो हमारी मृदा है उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल भैया, देखो अगर हमारी मृदा सही होगी तो हमारी फसल भी ठीक होगी। और बात करें जैसे इसी में जैविक तौर पर जो है इसमें जो है खाद ले सकते हैं, जैसे गोबर की खाद है, पहले के समय में जो गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है सभी पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है।
0: हाँ,
1: और हम आज के समय में ये देख रहे हैं कि लोग पशुपालन न करना चाह रहे हैं तो गोबर की खाद कहाँ से आ गई, उसके लिए जो हरे जैसे ढेंचे की खाद है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने, ढेंचे की खाद, इस समय धान लगाई का समय चल रहा है और हमारे बीच में जो गेहूं कटाई का समय हुआ था, बीच में काफ़ी हमारे किसान भाइयों ने ढेंचा लगाया भी था और कृषि विभाग की तरफ से छूट पर ढेंचा आया था, तो एक तरह से हरी खाद अगर लगाते हैं तो अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएंगे और जो आने वाला खर्च है वो भी कम होगा। दूसरा DSR पद्धति, एक डायरेक्ट सोइंग जो धान की होती है, वो हमारे किसान भाइयों ने बहुत अपनाया, चाहे वो रामपुर हो, रामपुर में भी, बिलासपुर है, सुवार है, मिलक में भी कुछ लोगों ने लगाया है। तो डायरेक्ट सोइंग का मतलब है कि आपका जो धान है वो सीधा मशीनों से बिजाई उसकी हो जाती है दीपक भाई, और वो जो कदहर होता है वो बचता है। दूसरा, जो पानी की लागत है वो बहुत ज़्यादा बच जाती है, जो डीजल का खर्च होता है वो बच जाता है, और दूसरा एक जो लगाई का खर्च है 5 से 6 हज़ार रुपये लगाई का खर्च है वो बच जाता है। तो हमारे किसान भाई ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को करके और अपनी जो है आमदनी को बढ़ा सकते हैं और अपनी जो बचत है उसे बढ़ा के और जो खर्च होता है उसे कम कर सकते हैं।
1: इसी विषय पर भैया, धान में जो कीट रोग नियंत्रण के लिए डॉक्टर सौदर दुबे से बातचीत करिए हमारे हरदेव भैया ने, क्यों ना हम अपने किसान साथियों को जब भेंटवार्ता सुनवा दें।
0: हाँ भैया, ज़रूर सुनवाओ।
2: किसान साथियों नमस्कार। साथियों, आज हमारे रामपुर स्टूडियो केंद्र में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सौहार्द दुबे जी आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बात करें हम धान की उन्नत खेती की, तो यही हमारा चर्चा का विषय है और आज हम इसी पे आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जो है इस समय तैयारी कर रहे हैं धान की उन्नत खेती की, तो सबसे पहले बात करें हम खेत की, तो हमें खेत की तैयारी किस तरह करनी चाहिए?
3: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं डॉक्टर सौहार्द दुबे। आज हम लोग विशेष विस्तार में चर्चा करेंगे खेत की। जैसा कि आपने पूछा कि खेत की तैयारी की अगर हम चर्चा करें तो सबसे मुख्य बात आपको शुरुआत करने से पहले खेत में बढ़िया लेज़र लेवलिंग करा लेनी चाहिए, अच्छे से आपको उसकी जुताई करनी चाहिए। पडलिंग के उपरांत आपको ये ध्यान रखना चाहिए, नर्सरी डालते समय आपके बेड बहुत ज़्यादा अधिक बड़े ना हों, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाइए, और एक एकड़ अगर हम रोपाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लगभग 5 से 6 किलो बीज की आवश्यकता है, और हम ये निश्चित कर लें कि 1 किलो बीज को लगभग 5x5 25 मीटर स्क्वायर की जगह मिलेगी, यानी आपको 25 मीटर स्क्वायर में 1 किलो बीज को फैलाना है ताकि बीज को अच्छे से जो है जगह मिले, पूरी पर्याप्त स्थान मिले ताकि अच्छे से अंकुरण हो सके और उसके बाद पौधा बड़ा हो सके। जब भी आप बीज को बुआई शुरू करेंगे तो आप उसमें ध्यान रखें कि आप उसको पहले भिगो लेंगे, 10 से 12 घंटे के लिए भिगोने के बाद जब उसमें अंकुरण हो जाएगा तब आप उसको छाया में सुखाएंगे, छाया में सुखाने के बाद आप उसको खेत में बोएंगे।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात कही बीज को भिगोने की, नर्सरी तैयार करने से पहले जो हम जो बीज भिगोते हैं, तो बीजो उपचार हमें किस दवा के माध्यम से करना चाहिए?
3: बीज उपचार हमें कार्बन डिजिन से कर सकते हैं या और कोई भी फंजीसाइड हम विशेष रूप से ले सकते हैं, उसको हम 1 या 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के उसको बीज उपचार कर सकते। और एक विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि यदि हम बीज को ले रहे हैं तो 160 लीटर पानी में लगभग 10 नमक मिला के हमें उसको पानी में डाल देना है, ताकि उसमें जो हल्के बीज होंगे वो सभी ऊपर आ जाएं, उनको हम निकाल देंगे, फेंक देंगे कहीं साइड में, और जो गुणवत्ता युक्त बीज हैं उन्हीं को नर्सरी डालते समय जमा के लिए इस्तेमाल।
2: डॉक्टर साहब, जो नर्सरी है वो हमारी लगभग कितनी दिन की होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो है हमें अच्छा उत्पादन मिल सके?
3: अब नवीन प्रजातियों की में अधिकतम प्रजातियां 18 से 22 दिन के बाद ट्रांसप्लांटिंग के लिए या रोपाई के लिए तैयार हो जाती
2: है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जो खेत तैयार कर लेते हैं, नर्सरी भी तैयार कर लेते हैं, तो जो खेत तैयार होने के बाद पौध लगाने का समय आता है, तो कितनी दूरी पे हमें पौधा जो है लगाना चाहिए ताकि उत्पादन जो है हमें आगे चल के अच्छा मिल सके?
3: सभी किसान भाई, जब भी आप रोपाई के लिए तैयार करें तो आप ये निश्चित कर लें कि आपके खेत में या नर्सरी में पानी भरा होना चाहिए। गीले में ही आप नर्सरी को निकालेंगे और गीले में ही आप रोपाई करेंगे, कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए। और रोपाई के समय आप विशेषकर एक ध्यान रखेंगे कि आप 1 से 1.5 घंटे ट्राइकोडर्मा में अपनी पौध की जड़ें हैं उनका शोधन अवश्य कर लें, ताकि वो आगे चलकर जो भूमि से, मिट्टी से या बीज से जनित होने वाले जो भी फफूंदनाशी या फिर कोई बीमारियां हैं उनसे प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने का काम करेगा। तो आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखें कि ट्राइकोडर्मा में 1 से 1.5 घंटे पौध को भिगोएं, उसके बाद उसको रोपाई करने ले जाएं, और आप जब रोपाई करेंगे तो आप ये देख लें कि 20 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर आपकी पौध से पौध और लाइन से लाइन की दूरी आपकी बनी रहे। आपको सघन बहुत ज़्यादा घनी पौध नहीं लगानी है, निश्चित कर लें कि लाइन से ही आप रोपाई करेंगे, और 10-12 लाइन लगाने के बाद आप 45 सेंटीमीटर की करीब या 1.5 फीट की आप नाली एक खाली छोड़ेंगे। ऐसा करने से पौधों को पूरा फुटाव जगह मिलती है और उनको हवा, धूप और प्रकाश संश्लेषण आदि सारी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, और आने वाले समय में जो भी कीट रोग का जो प्रकोप है वो भी कम हो जाएगा जब उनको पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी और लाइट वगैरह सब मिलेगा।
2: बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कुछ लोग जो हैं नर्सरी से धान की रोपाई करते हैं, कुछ लोग सीधी बुवाई करते हैं, तो इन दोनों में हमें फ़ायदा किस चीज़ में होता है?
3: देखिए, जो हमारा पारंपरिक खेती का पद्धति है, पारंपरिक खेती में हम आज तक धान को रोपाई करने के माध्यम से ही हम करते आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण रोपाई, धान को नर्सरी डाल के रोपाई करने का ये था कि धान में जो खरपतवार का प्रकोप है तो खरपतवार का नियंत्रण हम पडलिंग करके या रोपाई करके ही कर पाते थे। तो हमारे पास ऐसे हर्बिसाइड नहीं थे, खरपतवार नाशी नहीं थे कि हम आगे उनको रोपाई कर सके। अब आजकल क्या है कि अच्छी नवीन प्रजातियां उपलब्ध है हमारे पास, जैसे बासमती की अगर हम बात करें तो 1889 और 1885 करके प्रजातियां हैं, हम इन प्रजातियों को सीधा रोपाई में ले सकते हैं। सीधा रोपाई में विशेषकर जो बात हमको ध्यान रखनी है वो ये रखना है कि आपको पूरा खेत को पूर्ण रूप से लेवलिंग करके ही, आप लेवलिंग करने के बाद ही आप खेत को करेंगे। दूसरा क्या है कि जो मध्यम से भारी मिट्टी है उन्हीं को ही आप चिन्हित करेंगे कि आप सीधी रोपाई करें। सीधी रोपाई में आपका नमी जो है वो आवश्यक बनी रहे, और इसके बाद आप गेहूं का धान का जो रोपाई है वो धान का जो भिगो के बोना है वो सेम रहेगा, जो आपका बीज शोधन है वो भी मुख्य रूप से सेम रहेगा, वो वही है। उसके बाद जब हम उसको सीधा लेके जाते हैं तो हम या तो सीड ड्रिल के थ्रू या फिर हम किसी जो डिब्लर आते हैं, मेथड आते हैं सीड सोइंग मशीन के द्वारा, हम उनके द्वारा बो सकते हैं, और बुआई के बाद लगभग हमको 2 से 3 दिन बाद हम उसमें पानी चला देंगे। बुआई के बाद हम उसमें पानी छोड़ देंगे तो उससे हमें निश्चित रूप से आराम मिलेगा। और इसमें जो खरपतवार का हम नियंत्रण करेंगे वो पेंडामेथिलीन, जब भी उसमें पैर जमने लगे पानी छोड़ने के बाद तब हम पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर सकते हैं, वो भी पौधा निकलने से पहले। उसके बाद नॉर्मल जैसे हम लोग धान की रोपाई करे हुए धान में पेटला क्लोर या विस्पायरीबैक सोडियम, मेट सल्फेरॉन, जो भी हम खरपतवार नाशी इस्तेमाल करते हैं वो हम उसी प्रकार से इस्तेमाल करेंगे।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, बात रही रोपाई की और बुवाई की, अब बात करते हैं हम जो है खाद उर्वरक की, तो कितने दिनों के बाद हमें खाद या उर्वरक का जो है प्रयोग करना चाहिए और किस मात्रा में प्रयोग अपनी धान की फसल में करना चाहिए?
3: जो भी खाद का हम प्रयोग करेंगे वो हम मुख्य रूप से मृदा परीक्षण करवा के ही करेंगे। सबके खेत की स्थिति अलग होती है और खेत में उससे पूर्व जो फसल बोई गई है उसका जो अवशेष होता है वो भी अलग होता है। अगर हमने धान से पहले आलू या मक्का जैसी ज्यादा खाद वाली जो है फसलों को लिया है तो निश्चित रूप से हमें धान की फसल में कम खाद की आवश्यकता होगी। ऐसे में क्या करना है, मृदा परीक्षण का अपना नमूना करा लें, उसमें देख लें कि हमारी खाद में किस चीज की कमी है पोषक तत्वों की, वही पोषक तत्व हम उनको देना है। उसके बाद यदि हम ज्यादा हाइट वाली ज्यादा लंबाई वाली प्रजाति ले रहे हैं तो उसमें हमें उर्वरक की मात्रा कम रखनी है, यदि हम बौनी प्रजातियां ले रहे हैं तो उसमें हमको उर्वरक की मात्रा कंपैरेटिवली अधिक रख सकते। तो ऐसा करने पे एक हम मोटा मोटा अनुमान आपको बता रहा हूँ कि लगभग अगर हम यदि एक हेक्टेयर हम खेती कर रहे हैं तो उसमें 100 किलो यूरिया हमको देना है, उसमें हमें 90 किलो DAP देना है, 70 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है, 25 किलो हमको जिंक देना है। तो इसमें आधी मात्रा यूरिया की और DAP और MOP की जो मात्रा है वो लगभग हम पडलिंग करने के बाद रोपाई से पहले हम खेत तैयार करते समय उसमें खाद दे सकते हैं। इसके बाद जो यूरिया की जो आधी डोज है वो हम 3 किस्तों में देते हैं, 4 हफ्ते बाद, 6 से 7 हफ्ते बाद या 9 हफ्ते बाद, या 3 बार में हम उसको 10-10 किलो या 8-8 किलो बीघे के हिसाब से आवश्यकता अनुसार हम उसको देंगे।
2: डॉक्टर साहब,
3: अधिक खाद की देने से भी कीट और जो रोग का प्रकोप है वो बढ़ जाता है। आवश्यकता अनुसार ही जरूरत के हिसाब से ही खाद दें।
2: बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात रही खाद और उर्वरक की धान की फसल में देने की, अब आगे हम बात करते हैं कि धान की फसल में जो कीट लगते हैं, जैसे आपका तना छेदक कीट है, पत्ती लपेटक कीट है, जो कीट है भूरा फुदका कीट है, गंधी वक प्रमुख कीट है, तो इनकी अगर हम सही समय पर पहचान कर लें तो कौन सी दवाइयों का हमें प्रयोग करें ताकि जो है रोकथाम जो है लग सके इन पे?
3: देखिए, सबसे पहले तो किसान भाइयों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। जो हमने आपको बुआई विधि बताई है, पहले हम करेंगे उसका प्रबंधन, फिर हम उसके रोकथाम की तरफ जाएंगे। यदि हमारा प्रबंधन अच्छा है तो हमें रोकथाम की बहुत अधिक आवश्यकता या कठिनाई उसमें नहीं आएगी। जब हमने रोपाई करनी है तो लाइन से रोपाई करेंगे, हमें 20x20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको रोपाई करनी है, हर 10-12 लाइन के बाद हमको उसमें इस्तेमाल करना है 1.5 फीट की आपको जगह खाली छोड़नी है, और इसके बाद हमको खेत पर नियंत्रण अपना विजिट करते रहना है। रोज सुबह शाम किसान भाई जरूर जाएं और ये देखें कि हर किसी कीट की या बीमारी का एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, यानी कि अगर 2-4% का कोई प्रकोप है तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, हम अनावश्यक उसमें स्प्रे ना करें। यदि उसका प्रकोप कुछ बढ़ रहा है तो हम जैविक या मित्र कीटों के माध्यम से उसका नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद भी नहीं होता है, जब उसका प्रकोप 20% से ऊपर जाता है तब भी जो है हम तब उसके बाद हम उसमें दवाई का इस्तेमाल करेंगे। अब उसमें अलग अलग बात है कि हम जो है आपने कहा जैसे तनाछेदक उसकी अलग सुंडी है, या आपने गंधीबग कहा उसकी अलग कीट है, या फिर हमारे धान में स्मट आती है तो अलग फंजीसाइड है, तो वो नियंत्रण करना है। सबके अलग अलग सिम्टम हैं, वो सिम्टम को देखते हुए वैज्ञानिक की सलाह के हिसाब से अलग अलग साल्ट उसमें लगेंगे। यदि एक ही बीमारी रिपीट हो रही है तो निश्चित रूप से हमें डोज और उसका सब बदलने के बाद तैयार करेंगे। एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2 चीजें जो हम लोग ध्यान रख सकते हैं वो ये कर सकते हैं, जब हम धान की पौध को ले जाते हैं रोपाई करने के लिए तो हम उसमें ध्यान दें जो उसकी टिप है उसकी टिप को हम 1-2 इंच के बाद उसे काट दें, ताकि टिप को काटने से जो मोस्टली जो धान की नर्सरी के समय में जो कीट होते हैं वो कुछ अंडे दे देते हैं, तो वो काटने से क्या है उसको काट के कहीं साइड में खेत में दबा दें ताकि वो हमारे धान में खेत में ना पहुंचे। दूसरा एक विशेष तरीका जो हम लोगों ने देखा है जिससे हम कीट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारा तना छेदक है उसकी सुडी पौध के समय से लेके और दाना बनने तक समय तक लगी रहती है, अलग अलग समय पे उसके अलग अलग सिम्टम दिखाई देते हैं। तो हम रोपाई करने के 15 दिन बाद हम पटेला लगा देते हैं, तो पटेला लगाने से क्या होता है कि पौध आपकी जो खड़ी होती है वो पानी में एक बार जाती है, पानी में जाने से जो भी 15-20 दिन तक जो कीट का प्रकोप है वो सब उसी में धुल जाता है, जो कीट है या उसके अंडे हैं सुड़ी हैं वो पानी में एकदम से जाते हैं तो वो पानी में धुल जाता है, तो उससे सुड़ी की आगे की लाइफ साइकिल जो है वो रुक जाती है, और उसमें पौधा जब नीचे फोड़ते हैं तो उसका फुटाव बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे में आपको क्या है कि कीट नियंत्रण भी हो जाता है और आपका धान में फुटाव भी अच्छा होने के कारण आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। और कोई भी आप दवाई लगाएं तो उसकी किसी विशेषज्ञ से या किसी नजदीकी दुकानदार से लेके कोई उचित दवाई ही उसका इस्तेमाल करें और जितना मात्रा भी उसकी कही जाती है रिकमेंडेड है उतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करें।
2: बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने, और उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाई जो आज का प्रोग्राम सुन रहे हैं वो इन सभी बातों का अनुसरण करेंगे अपनी धान की जो खेती है उसमें। और चलते चलते डॉक्टर साहब आप हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो आगे चल के जो है धान की उन्नत खेती से अधिक पैदावार ले सकें?
3: सभी किसान भाइयों को मैं यही संदेश दूंगा कि आज का ज़माना है ये पारंपरिक खेती जो हम लोगों की चल रही थी उससे हटके क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी कि पर्यावरण के अनुकूल स्थितियों में हमें खेती करना सीखना पड़ेगा। पहले जो स्थिति थी वो आज के हमारे खेत की स्थिति नहीं है, उर्वरक क्षमता हमारी मिट्टी की उतनी नहीं है, तो हमें जो भी वैज्ञानिक विधि बताई जाती हैं या फिर जो भी नई तकनीकें उनका इस्तेमाल करते हुए जो आपको नई रोग प्रतिरोधक प्रजातियाँ आपके पास हैं उनका इस्तेमाल करें, जो ट्रेडिशनल प्रजातियाँ उनका इस्तेमाल ना करें, फसल चक्र का सही आप लोग सलेक्शन करें ताकि, और इसके बाद आप जो रोग कीट नियंत्रण है उसका इस्तेमाल करें, जितना भी हम लोग बायो या फिर ऑर्गेनिक इनपुट्स का इस्तेमाल कंसोर्टिया का इस्तेमाल कर सकते हैं उनसे अधिक से अधिक करें, क्योंकि नियमित रूप से रसायनों का इस्तेमाल हमारी खेत को और उसको बंजर बनाता जा रहा है। और प्राकृतिक जो आपदाएं या फिर आप मौसम अनुकूल परिस्थितियां कह लें कि जब आप कटाई का समय आता है तो बरसात हो जाती है या फिर आपका जब रोपाई का समय है तो बारिश नहीं होती है, तो ये सब जो चैलेंजेस है वो आने वाले समय में बढ़ेंगे, तो हमको ऑर्गेनिक या बायो का जो मदद है वो अभी से लेना शुरू कर देना चाहिए ताकि हम आगे तक अपने आने वाले समय तक खेती को टिकाऊ और लंबे समय तक उपजाऊ अपनी भूमि को बनाए रखें।
2: बहुत ही अच्छी जानकारी दी और बहुत ही अच्छा संदेश दिया डॉक्टर साहब आपने हमारे किसान भाइयों को। हम उम्मीद है हमारे किसान भाई आपकी सभी बातों का अनुसरण करेंगे और अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेंगे। आज आप हमारे रामपुर स्टूडियो केंद्र में आए, हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: किसान साथियों, अभी आप धान में कीट व रोग नियंत्रण पर एक चर्चा सुन रहे थे, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सोहार दुबे, आपसे बातचीत कर जानकारी ले रहे थे हमारे भैया हरदेव।
1: हाँ भैया, जानकारी सुनकर हमारे किसान साथी लाभान्वित होंगे। और भैया अब समय है मनोरंजन को,
0: तो क्या सुनवा रहे हैं?
1: तो भैया एक लोकगीत सुनवा रहे हैं, दैया रे दैया, जिसको स्वर दाए प्रेम लता ने। और भैया उससे पहले सुनवा देते हैं कुछ संदेश।
4: गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: साथियों, अभी आप लोकगीत सुन रहे थे, सुनकर आनंद आ गया होगा।
1: हाँ भैया,
0: हमारे दीपक भैया गए सीधे प्रगतिशील कृषक, जो कि श्री सुरेश चंद हैं, ग्राम मदगरा, ब्लॉक रामनगर, जिला बरेली। इनसे इन्होंने क्या क्या बात की, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी।
2: जी भैया, आपका परिचय?
3: सुरेश चंद, निवासी ग्राम मनगरा, विकासखंड रामनगर, तहसील रल्ला, जिला बरेली के रहने वाले हैं।
1: अच्छा सुरेश जी, आपके यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें होती हैं?
3: हमारी यह गेहूँ की खेती होती है, मक्का की खेती होती है, धान की खेती होती है, पेपरमेंट की खेती होती है।
1: अच्छा, आपने बात करी पेपरमेंट की खेती की, तो इस समय पेपरमेंट की खेती कट गई आपकी?
3: हाँ कट गई।
1: अच्छा, तो पेपरमेंट की खेती से कितना क्या लाभ मिलता है?
3: पेपरमेंट की खेती से मटर में पेपरमेंट किया, या लाई की खेती में खत्म होने के बाद उसमें पेपरमेंट कर दिया।
1: अच्छा, उसमें सह फसली खेती कर देते हैं।
3: हाँ।
1: अच्छा, तो पेपरमेंट जो है उसका तेल निकलता है, तो तेल कितने किलो बीघे का निकल आता है?
3: 3 किलो से 5 किलो के बीच में निकलता है।
1: अच्छा, तो जैसे आपने उसमें पहले मटर की थी, मटर कटने के बाद में निकलने के बाद में अब उसमें पेपरमेंट हो गया, तो इसका क्या भाव चल रहा है इस समय?
3: अभी तो 3500 रुपये चल रहा है।
1: तो ये कितने दिन में तैयार हो जाता है पेपरमेंट? लगभग
3: 3 महीने में हो जाता है।
1: और मक्के की खेती की बात करी आपने, तो मक्के की खेती किस तरीके से की आपने?
3: मक्के की खेती गेहूँ काटने के बाद भी रखते हैं कुछ लोग, मटर में भी रखते हैं। जो मटर में जो है लोगों ने गाड़ दी, वो कट रही है अभी।
1: अच्छा, कट रही है। तो मक्के का किस तरीके से उत्पादन मिल जाता है, कितना उत्पादन मिल जाता है एक बीघा?
3: मक्के का सही समय से अगर उसे लगाया जाए तो 7 क्विंटल से 9 क्विंटल की पैदावार हो जाती है।
1: तो लगभग क्या भाव बिक जाती है लगभग?
3: अभी तो गवर्नमेंट ने 2400 रेट किया, 1800-1900 गाँव में बिक रही है।
1: अच्छा, तो अभी रेट भी अच्छा है। और इसके बाद में मक्का की फसल के बाद में अब क्या करेंगे?
3: मक्का की फसल के बाद में धान की खेती की जाएगी।
1: अच्छा, तो धान की पौध डाल दिया आपने?
3: नर्सरी तैयार है।
1: कितने दिन बाद लग जाएगी आपकी नर्सरी?
3: लगभग जुलाई के पहले सप्ताह में।
1: तो आपने धार की नर्सरी में कौन सी प्रजाति को चयन करा हुआ?
3: सरबती गाड़ते हैं।
1: अच्छा, सरबती गाड़ते हैं,
3: बिक्री में भी अच्छी है, खाने में भी अच्छी है।
1: अच्छा, आपने जब नर्सरी डाली तो उसमें क्या क्या ध्यान रखा, नर्सरी को किस तरीके से बीज का शोधन से लेकर और उसमें खरपतवार ना हो, क्या उसमें सावधानी आपने बरती?
3: मैं देसी खाद डाल के जुताई के बाद परेवा कर दीजिए, घास जमाई।
1: अच्छा, खेत साफ है बिल्कुल। और इसके साथ साथ और क्या करते हैं?
3: इसके साथ और बिजनेस पशुपालन भी करते हैं।
1: अच्छा, पशुपालन करते हैं, तो पशुपालन में क्या जानवर है?
3: 2 भैंस है।
1: अच्छा, दूध दे रही है?
3: हाँ, एक दूध दे रही है, जाने वाली।
1: अच्छा, तो दूध का घर में रोक लेते हैं, इसका बिक्री हो जाता है?
3: मैं आधा बेच देते हैं, खाने को रोकते हैं।
1: अच्छा, बेचने से क्या लाभ होता है फिर?
3: बेचने से तो बहुत महंगा दूध है, 65 से 70 रुपये प्रति केजी का रेट आ रहा है।
1: अच्छा,
3: इससे जो है आजीविका बढ़ जाती है परिवार।
1: अच्छा, घर के जो खर्चा होता है जैसे बाजार हाट के ये चल जाता है ना। अच्छा, और जो पशु को जो चारा है, बाऊ को जो है खर्चा लगाता है, चोकर भी आ जाता है। तो पशुपालन में, जैसे पशुपालन आपकी खेती के साथ साथ आप खेती बाड़ी भी करते हैं और पशुपालन भी, दोनों में किस तरीके से कर पाते हैं, हो जाता है सब आराम से?
3: नहीं नहीं, परिवार में, फैमिली में महिलाएं हैं, बड़े बच्चे हैं, देखभाल करते हैं पशु।
1: अच्छा, जैसे उनको चारा लाना है, चारा काट के खिलाना है, इन चीजों से एक तरीका से सोचा जाए तो खेती के साथ साथ पशुपालन बहुत आसान तरीके से हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पशुपालन खेती के बिना नहीं, और खेती जो है पशुपालन के बिना अधूरी मानी जाती है।
3: जब हमारे पास जमीन नहीं है तो चारा आदि कहाँ से लाएंगे?
1: हाँ, चारा है, और जो उसमें जो है देसी गोबर की खाद जो हम खेती में प्रयोग करते हैं, वो भी तो हमें पशुओं से मिलती है। तो आपके जो पशु हैं, आपके लिए देसी खाद उपलब्ध हो जाती है
3: आराम?
1: हर 6 महीने में जो है हमें देसी गोबर की खाद डालनी पड़ती है।
3: 1 एकड़ में खाद?
1: 1 एकड़ के लिए तैयार हो जाती है आपकी?
3: अच्छा, प्रतिवर्ष?
1: अच्छा, 2-3 में अगर 2 पशु हैं तब भी?
3: 2 पशु हैं।

0: उनके बच्चे नहीं हुए।
1: हाँ, तो हो जाएगी आराम से। तो पशुपालन में जो है आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ जैसे आपकी खेती बाड़ी में अगर देखा जाए तो आप जो धान की नर्सरी लगाई हुई है उसको रुपाई करेंगे तो उसमें जो है पानी की जरूरत पड़ती है, तो आप पानी का माध्यम आपके यहाँ पर कैसे?
0: पानी तो हमारे इधर जो 200+ नीचे है,
1: अच्छा, 200 फीट नीची गहराई में है।
0: गहराई में है, उसके लिए जो है समरसेबल और सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई की जाती है।
1: अच्छा, ट्यूबवेल के द्वारा जो आपके यहाँ पर सिंचाई
0: हाँ,
1: की जाती है।
0: इंजन आदि से नहीं कर सकते,
1: अच्छा, इंजन से इतना पानी नहीं निकल पाता है।
0: चलता ही नहीं इंजन,
1: अच्छा, तो
0: नहीं
1: आप इसे ट्यूबवेल की बात करें तो ट्यूबवेल से पानी आसान रूप से मिल जाता है, कुछ लोग तो खुद का लगवा लेते होंगे, कुछ लोगों को
0: सिंचाई
1: लगाने में।
0: के मतलब जो मजदूरी बीघा बेस पे भी हो जाती है,
1: अच्छा,
0: कमजोर उसके पास नहीं है तो
1: तो उसके लिए बिजली की व्यवस्था कैसी है? बिजली अच्छी आती है?
0: बिजली शेड्यूल से आती है।
1: शेड्यूल से आती है? किस तरीके से
0: हाँ
1: आती है?
0: सही आती है, कभी कभी लाइट दिक्कत कर देती है तो किसान की फसल भी सूख जाती है।
1: तो बिजली दिन में आती है आपके यहाँ, रात में आती है?
0: दोनों समय आती है, रात में भी
1: अच्छा
0: आती है, दिन में भी आती
1: अच्छा दोनों समय है आपके
0: है।
1: यहाँ
0: हाँ
1: पर।
0: शेड्यूल,
1: अच्छा, तभी तो आसान तरीके से खेती हो जाती है सिंचाई के लिए। तो सोलर पंप की बात करिए आपने, तो जो सोलर पंप है तो जैसे दिन में जो उनसे सिंचाई आराम से हो
0: हाँ अच्छा,
1: जाती है?
0: सोलर पंप सबसे अच्छा है पैनल
1: अच्छा,
0: का।
1: नहीं आने में जैसे बिजली खराब हो जाती है तो सोलर पैनल है आपके,
0: हाँ,
1: तो सिंचाई आराम से होती
0: पांच
1: रहेगी।
0: किलो वाट का, 7 किलो वाट का लोगों ने लगाए,
1: हाँ,
0: अच्छा पानी दे रहे हैं।
1: तो आपके यहाँ पर सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो आप हमारे किसान साथियों से क्या कहना चाहेंगे? जैसे खेती बाड़ी के साथ पशुपालन है और जो सह फसली खेती है, वो किस तौर तरीके से करें जिससे जो उन्हें अच्छे से अच्छा लाभ प्राप्त?
0: लाभ लेने के लिए फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा
0: अब आने वाले समय में जैविक खादों का ही प्रयोग करना पड़ेगा।
1: अच्छा
0: हाँ, यूरिया है, DAP है, ये गवर्नमेंट उपलब्ध ज्यादा नहीं करा पाएगी।
1: हाँ, देखो जैविक तौर से अगर खेती करेंगे तो हमारे लिए जो उससे मिलने वाला लाभ है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा फायदा साबित
0: हाँ,
1: होगा।
0: और फसलों में रोग भी कम लगेगा।
1: हाँ,
0: जैसे ढेचे की खाद है अपने,
1: अच्छा
0: उसे बनाए,
1: अच्छा
0: 60 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद अपनी जो है जैविक है गोबर खाद, इसे भी मतलब प्रयोग करें इसका।
1: वर्मी कंपोस्ट खाद है, कई तरीके की हरी खादें हैं, ढेंचा सनही इनकी खादें बनाई जाती हैं। इस तरीके से अगर खेती करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनेगी और हमारी फसल से अच्छी पैदावार
0: पहले
1: मिलेगी।
0: तो मिट्टी बीमार हो गई है बिल्कुल खादों का प्रयोग करके।
1: हाँ, रासायनिक खादों का प्रयोग करते करते उनकी जो है प्रतिरोधक क्षमता घट गई है बिल्कुल, और हमें जो है अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जैविक तौर पर खेती करेंगे तो हमारा खर्च भी कम होगा और पैदावार भी हमें अच्छी मिलेगी, और जिससे जो है हमें लाभ भी बहुत मिलेगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान साथियों के, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप प्रगतिशील कृषक से भेंट सुन रहे थे, जो कि जानकारी दे रहे थे श्री सुरेश चंद्र। आपसे बातचीत की हमारे दीपक कुमार भाई ने, और ग्राम था मधगरा ब्लॉक और रामनगर जिला बरेली से।
1: हाँ भैया, जानकारी सुनकर हमारे किसान सानी लाभान्वित होंगे। अब भैया समय हो चलो कृषि संकेत को।
2: हाँ, तो क्या सुनवा रहे हैं कृषि संकेत में?
1: कृषि संकेत में भैया, सूरजमुखी की खेती में अधिक लाभ कैसे लें?
2: हाँ भैया, सूरजमुखी एक तिलहनी फसल है।
1: हाँ,
2: हमारे किसान भाइयों ने जिला रामपुर की अगर हम बात करें या बरेली की बात करें, तो सूरजमुखी धीरे धीरे छोड़ दी है।
1: हाँ,
2: तो हमारे जब छोड़ दी तो ये तेल के लिए बहुत अच्छी फसल होती है, जिसमें अगर सूरजमुखी की हम बात करें
1: तो भैया जो फरवरी और मार्च में लगाई जाती है।
2: हाँ, सूरजमुखी की खेती कम लागत में उच्च मुनाफा देने वाली एक प्रमुख तिलहनी फसल है। इसके बीज में जो उच्च गुणवत्ता वाले कुकिंग ऑयल इससे निकाला जाता है, यानी कि तेल निकाला जाता है। सही तरीके से उन्नत किस्मों का अगर हमारे किसान भाई चयन करें तो बुवाई से 90 से 105 दिनों में ये पककर तैयार हो जाती है। अगर हम बात करें इसकी उपज की, तो 7 से 10 क्विंटल तक इसकी उपज प्राप्त की जा सकती है। हमारे किसान भाइयों के खेतों में अब भी सूरजमुखी खड़ी है, और कुछ किसान भाई हमारे प्रोसेसिंग करके, यानी कि जो थ्रेसर होता है
1: उसके माध्यम से
2: उससे इसे निकाला जाता है। तो उसके निकालने की प्रक्रिया ये है कि ये जून, जुलाई और अगस्त में तैयार होती है, यानी कि कुछ जो हमारे किसान भाई लेट बोते हैं, फरवरी में बो देते हैं तो वो जून में तैयार हो जाती है, और जो हमारे किसान भाई मार्च में बोते हैं तो वो जाके जुलाई में निकलती है। तो जुलाई में जब बरसात का समय आता है दीपक भैया, तो वो निकालने में बहुत दिक्कत आती है, जब ये भीग जाती है तो बहुत नुकसान होता है। तो धीरे धीरे हमारे किसान भाइयों ने ये छोड़ दिए, लेकिन इसका इससे बहुत ज़्यादा जो है लाभ होता है अगर हमारे किसान भाई से करें तो।
1: भैया देखो, जलवायु और मिट्टी की बात करें जैसे, तो इसके लिए जो है 20 से 25 डिग्री तापमान पर अच्छा रहता है, और फसल में जो है इस फसल जो है ज़्यादा टेम्परेचर भैया न ले पाती है।
2: हाँ, अगर हम इसकी तैयारी की बात करें तो खेत की तैयारी पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं हमारे किसान भाई, यानी हल तो अब चल नहीं रहे हैं, तो जो हैरो होती है कल्टीवेटर है उससे हमारे किसान भाई जो है ट्रैक्टर की सहायता से करते हैं। उन्नत किस्मों की बात की जाए तो इसका मॉडर्न एक किस्म है, सूर्या है, पॉप है, हाइब्रिड और बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं जो JWSH, ये बहुत अच्छी किस्म है और ये जो तेल की मात्रा है ये बहुत ज़्यादा इसमें निकलती है। अगर बुवाई का समय की बात करें तो दीपक भैया, ये अक्टूबर नवंबर में ही बोई जाती है और जो फरवरी मार्च का माह है इसके बोने का सबसे बढ़िया होता है। और बीज दर की बात करें
1: तो बीज की दर भैया 4 से 5 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त मात्रा में रहती है। और दूरी की बात करें तो कतारों के बीच में 45 सेंटीमीटर और बीजों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए।
2: हाँ भैया, तो ये इस तरीके से सूरजमुखी की हमारे किसान भाई बुवाई करते हैं और भैया पैदावार लेते हैं, तो ये बहुत जो है एक तरह से वरदान साबित होगी। और ये जो हृदय होता है हमारा, जो दिल होता है, उसके लिए बहुत इसका तेल होता है, फायदे करता है। त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन में सुधार करता है और वजन नियंत्रण करता है। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई अगर सूरजमुखी की खेती करके आगे इसकी खेती बढ़ाएं तो तेल का उत्पादन हमारे किसान भाई बढ़ा के और अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल भैया, और जैसे अगर हम इसमें अनुमानित उसको बात करें जैसे पैदावार की, जैसे मुनाफा कितना होता है, तो भैया 1 एकड़ में लगभग जो है 6 से 10 क्विंटल को पैदावार ही जाती है हमें। और खेती जो है तिलहनी है, इसलिए जो है भैया अवश्य रूप से करें। और अब बात करें भैया कल के कार्यक्रम की।
2: हाँ दीपक भैया, समय भी हो चला है तो कल का कार्यक्रम कैसा रहेगा ये बता दें अपने किसान भाइयों को। इसमें चर्चा रहेगी किचन गार्डन का महत्व, क्योंकि किसान भाइयों ये जो किचन गार्डन होता है वो हमारी जो सब्जियां हैं हम जब बाज़ार से लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक तो महंगी पड़ती हैं, दूसरा दूषित मिलती हैं हमें, जो कीट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आज के दौर में, तो कीटनाशक बहुत ज़्यादा छिड़काव हो रहा है, तो उसे बचाने के लिए किचन गार्डन हमारे किसान भाई करते हैं, तो उसमें कम उसका इस्तेमाल होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दूसरा एक भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी जिसमें दूध उत्पादन पशु आहार का महत्व इसमें सुनवाया जाएगा, जानकारी देंगे डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, और साथ साथ लोकगीत सुनवाया जाएगा, कृषि संकेत सुनवाया जाएगा और इस पखवाड़े कृषि कार्य कैसे करें हमारे किसान भाई, क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और मौसम की जानकारी सुनवाई जाएगी।
1: हाँ भैया, जय तो रही हमारे कल के कार्यक्रम को विवरण। अब हम अपने किसान साथियों को बता दें जो हमारे कार्यक्रम में कुछ बदलाव करे गए हैं।
2: तो भैया कब से बदलाव किए गए हैं?
1: जी भैया, 1 अप्रैल से बदलाव करे गए हैं। तो पहले बुधवार सफल कृषक और महीने को दूसरों बुधवार सफल महिला कृषक, और महीने को तीसरों बुधवार तो मासिक कृषि गोष्ठी, और महीने को अगर चौथों बुधवार है तो सफल कृषि स्टार्टअप, अगर इस पाक से बुधवार पांचवों पड़ जाए महीने को तो सफल कृषक।
2: हाँ भैया, अगर हम गुरुवार की बात करें तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकल्प विशेष कार्यक्रम सुनवाया जाएगा, दूसरे गुरुवार को कृषि पत्रिका खेत खलिहान, और तीसरे अगर हम गुरुवार की बात करें तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलित विशेष कार्यक्रम सुनवाया जाएगा, फिर जो चौथा जो गुरुवार होता है उसको कृषि पत्रिका खेल खेत खलिहान, और जो पांचवा अगर गुरुवार पड़ता है तो उसमें आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष सुनवाया जाएगा।
1: और भैया बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार में अगर पहले शुक्रवार महीने को पड़ता है तो लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीत पर आधारित लोकगीत सुनवाए जाएंगे, और महीने को दूसरा शुक्रवार है तो कृषि शंका समाधान, किसानों की समस्याएं व उनसे जुड़े समाधान, और तीसरों अगर शुक्रवार है महीने को तो लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीत पर लोकगीत सुनवाए जाएंगे, और महीने को अगर चौथों शुक्रवार है तो कृषि शंका समाधान, समस्या व उनसे जुड़े समाधान, और महीने को अगर पाँचवा शुक्रवार पड़ जाए तो भैया फरमाइशी लोकगीत सुनवाया जाएगा।
2: हाँ भैया, ये थी जानकारी होने वाले हमारे कार्यक्रम की, और थोड़ा सा चलते चलते मौसम की जानकारी दे दें। अधिकतम तापमान कल का जो रहेगा वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, अगर हम बात करें न्यूनतम तापमान की तो वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और आर्द्रता 76%, और जो हवा की गति होगी भैया वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है।
1: भैया समय इजाज़त ना दे रहा है जो हम अपने किसान साथियों से और बातचीत करते,
2: तो भैया किसान भाइयों से विदा ले लें।
1: हाँ, तो अपने भैया दीपक
2: और अब्दुल हफीज़ भैया की
1: राम राम, राम।

0: अभी कृषि श्रोता सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। संध्या के 7 बज चुके हैं। कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत अब आइए सुनते हैं श्री गौरव त्रिपाठी से वार्ता। विषय है रक्तदान और आमजन।
1: आज के समय में रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि आज वही देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली है जिसके 90% से अधिक नागरिक स्वस्थ हैं। प्राकृतिक आपदा या बड़ी घटनाएं अधिकतर देशों में होती रहती हैं, लेकिन हर विपत्ति के लिए तैयार रहने वाला देश ही आदर्श देश कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद अचानक हजारों लीटर खून की आवश्यकता पड़ी, जो उस वक्त बमुश्किल संभव हो पाया। इसलिए इस विषय पर बाद में विस्तृत चर्चा की और आम सहमति ये बनी कि किसी आपदा के समय खून जमा कर पाना अव्यवहारिक है और हर वक्त पर्याप्त आपूर्ति के लिए प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कई देशों में इस तरह की समस्याएं आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर साल 14 जून को विश्व रक्त दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस दिन ब्लड ग्रुप प्रणाली की खोज करने वाले वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टेनर का जन्मदिन होता है। रक्तदान तब होता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे की जान बचाने के लिए अपना रक्त देता है। रक्तदान से पहले दाताओं का मूल्यांकन किया जाता है ताकि उनके खून का उपयोग असुरक्षित न रहे। जांच में HIV, वायरल और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का परीक्षण किया जाता है। ये बीमारियां रक्त के जरिए दूसरे व्यक्ति में भी संक्रमित हो सकती हैं। परीक्षण के दौरान दाता से उसके चिकित्सा इतिहास के बारे में भी पूछा जाता है। एक आदर्श दान 450 मिलीलीटर या लगभग 1 यूनिट खून होता है। इसे मैन्युअली या स्वचालित उपकरण से संग्रहित किया जा सकता है, जो कि केवल खून के विशिष्ट भाग को ही लेता है। जब कोई दाता किसी अनजान व्यक्ति के लिए ब्लड बैंक में भंडारण के लिए खून देता है, उसे एलोजेनिक रक्तदान कहते हैं। एलोजेनिक दान में मिले खून का उपयोग दवा बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति अपने किसी पारिवारिक सदस्य जो किसी हादसे का शिकार हो गया हो और उसे खून की आवश्यकता हो, या डॉक्टर के कहने पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए रक्तदान करे, तो इसे निर्देशित दान कहा जाता है। रक्तदान की प्रक्रिया देश के कानूनों के अनुसार बदलती रहती है। वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रक्तदान नीतियों की अनुशंसाएं प्रदान की हैं, लेकिन विकासशील देश इनमें से कईयों का पालन नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला की सुविधाएं, प्रशिक्षित कर्मचारी और विशेषज्ञ अभिकर्मकों की आवश्यकता की अनुशंसा की गई है, लेकिन इनमें आने वाले अत्यधिक खर्च से बचने के लिए कई विकासशील देश इन अनुशंसाओं का पालन नहीं करते। आमतौर पर रक्तदान से पहले दानदाताओं की सहमति आवश्यक। वैसे तो नाबालिगों का रक्त नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन बहुत आवश्यक है तो उनके माता पिता या अभिभावकों की अनुमति के बिना वे दान नहीं कर सकते। इसी तरह स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए वृद्ध लोगों को भी रक्तदान के लिए मना किया गया है। स्वास्थ्य जोखिम के लिए दाताओं का परीक्षण किया जाता है, क्योंकि हो सकता है प्रापक के लिए वह दान असुरक्षित हो, जैसे कि ऐसे पुरुषों से रक्तदान पर प्रतिबंध है जो HIV पॉजिटिव हों या उन्हें कोई अन्य संक्रमित बीमारी हो, क्योंकि प्रापक गर्भवती महिला के लिए ये खतरनाक हो सकता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि रक्तदान दाता के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक ना हो, दाता का भी परीक्षण होता है। दाता के हीमोग्लोबिन स्तर की जांच की जाती है कि कहीं रक्त निकल जाने से वह खुद खून की कमी का मरीज ना बन जाए। इसके अलावा नब्ज, रक्तचाप और शरीर के तापमान का भी मूल्यांकन किया जाता है। अगर रक्त आधान के लिए प्रयोग किया जाना है तो दाता के रक्त के प्रकार को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। आमतौर पर खून का प्रकार

0: ए बी ए बी या ओ होता है। दान किए गए रक्त का कई तरीके से परीक्षण किया जाता है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चार प्रमुख परीक्षण सुझाए गए हैं। हेपेटाइटिस बी सतही एंटीजेन, हेपेटाइटिस सी के लिए एंटीबॉडी, एचआईवी के लिए एंटीबॉडी, उपदंश के लिए सेरोलॉजिक परीक्षण। 2006 के परीक्षण में पाया गया था कि 124 में से 56 देश रक्तदान में बुनियादी परीक्षण का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि रक्त कैसे प्राप्त करना होता है। दाता की बांह से सीधे सिरा से आमतौर पर अपवर्तित रूप में रक्त ले लिया जाता है। इस रक्त को अलग अलग भागों, लाल रक्त कोशिकाओं, बिंबाणु और प्लाज्मा में विभाजित किया जाता है। इससे एक व्यक्ति का खून दो लोगों के काम आ सकता है, क्योंकि अधिक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को केवल एक घटक विशेष की जरूरत होती है। रक्तदान का एक अन्य तरीका भी है। इनमें एक फिल्टर मशीन का उपयोग कर खून के जिस घटक प्लाज्मा या रक्त कोशिकाओं की जरूरत होती है, बस वही लेकर अन्य दाता को वापस कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया एफेरेसिस कहलाती है। इस तरीके से कोई व्यक्ति सुरक्षित रूप से प्लाज्मा, बीमाणु या प्लेटलेट्स अधिक से अधिक बार दान कर सकता है। दाताओं को रक्तदान के बाद आमतौर पर दान स्थल पर 10 से 15 मिनट तक रखा जाता है, क्योंकि रक्तदान के तुरंत बाद चक्कर आना और कमजोरी लगने जैसी शिकायतें आम हैं। रक्त केंद्र आमतौर पर आरोग्य लाभ के लिए दाता को चाय और बिस्कुट जैसी हल्की फुल्की वस्तुएं खाने पीने के लिए देते हैं, या दोपहर के भोजन के लिए भत्ता भी प्रदान किया जाता है। एकत्रित रक्त अलग अलग घटकों के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। इनमें से कुछ का कम सेल्फ जीवन होता है। बिंबाणुओं के अधिक समय तक के भंडारण का कोई उपाय नहीं है। इसकी सबसे अधिक सेल्फ जीवन की उम्र 7 दिन है। इसके अलावा सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली लाल रक्त कोशिकाओं का रेफ्रिजरेटर के तापमान में सेल्फ जीवन 35 से 42 दिन है। ग्लिसरॉल के मिश्रण के साथ खून को जमा कर ये अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया महंगी है। इसके भंडारण के लिए अत्यधिक ठंडा फ्रीजर जरूरी है, लेकिन प्लाज्मा को अधिक समय तक जमा कर रखा जा सकता है और एक साल तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी आपूर्ति कोई बड़ी समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कि रक्तदान से सिर्फ घायलों और अन्य किसी बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को ही जीवन दान मिलता है, इससे रक्तदाता को भी लाभ होता है। नियमित अंतराल पर रक्तदान करने से शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है और रक्तदाता को हृदय आघात से दूर रखता है। रक्तदाता विभिन्न अंगों में कैंसर के रिस्क से दूर रहता है, क्योंकि रक्तदान के बाद शरीर में नया खून बनता है और वही पूरे शरीर में संचारित होता है, जिनमें विषाणु कम होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इससे ज्यादा कैलोरी और वसा वर्न होती है और शरीर फिट रहता है। 18 से 60 वर्ष की आयु के स्वस्थ व्यक्ति जिनका वजन 50 किलो से ऊपर होता है, वे 450 मिलीलीटर रक्तदान कर सकते हैं। पुरुष 3 महीने में एक बार और महिलाएं 4 महीने में एक बार रक्तदान कर सकती हैं।
1: कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री गौरव त्रिपाठी से वार्ता। विषय था रक्तदान और आमजन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

सबसे पहले जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में अर्थात आज शाम 7:31 पर आप सुन सकेंगे वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे पर विशेष कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर। संकलन अली हैदर का होगा और आलेख शिखा दीक्षित का, प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की। आज रात्रि 8:00 फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम होगा गीत गाता चल। आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम सबरस में आप सुन सकेंगे ओमकार सिंह और साथियों की आवाजों में कुछ लोकगीत। आज रात्रि 10:00 सुनिएगा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो रामपुर। श्रोताओं, यदि जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कल सवेरे 6:05 पर आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कल सवेरे 6:35 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश के अंतर्गत जानकारी का विषय रहेगा आधुनिक जीवन शैली व कमर दर्द। इस विषय पर आपको विशेष जानकारी देंगे डॉक्टर विनय वर्मा। कल सवेरे 7:00 लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में हम आपको सुनवाएंगे मोहन सिंह, रीठा गढ़ी और साथियों की आवाज में गाए कुछ लोकगीत। रोज की तरह फिल्मी गीतों का इंफरटेनमेंट कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल सवेरे 7:31 पर।

कल सवेरे 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। सवेरे 9:50 पर उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुन सकेंगे पखावज वादन पंडित अयोध्या प्रसाद का। सवेरे 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे 70 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम होगा सुनहरा दौर। प्रातः 11 बजे कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक और फन बेमिसाल है इसका एपिसोड 3। प्रातः 11:30 पर कार्यक्रम मन भावन के अंतर्गत आप सुन सकेंगे श्रोताओं की शब्दावली।

अपराह्न 1:15 पर कार्यक्रम परिवार जगत के अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा पारिवारिक खेल और मनोरंजन गतिविधियां, साथ ही सुनवाई जाएगी। वार्ता विषय होगा वर्तमान परिवेश में विस्तृत परिवार का महत्व। वार्ताकार होंगी पिंकी मंडल, साथ ही आप सुन सकेंगे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आंगनबाड़ी से जुड़ी जानकारी। हेल्थ टिप्स में आपको बताया जाएगा नियमित व्यायाम से जुड़ी कुछ विशेष बातें। हमारी दूसरी सभा में शाम 5:15 पर युवा साथी सुन सकेंगे उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी। रोज की तरह कृषि श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:20 पर। कल शाम 7:31 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे आयुषी के गाए कुछ गीत। रात्रि 8:00 रोज की तरह व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल। कल रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम साहित्यिक पत्रिका के अंतर्गत आप सुन सकेंगे वार्ता। विषय होगा हिंदी कविता में वेदना के स्वर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर प्रणव शास्त्री। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे आशा बिसारिया का काव्य पाठ और साथ ही सुनिएगा अंजलि वर्मा से कहानी संस्कार। कल रात्रि 10:00 आकाशवाणी लखनऊ से कार्यक्रम होगा खेल दर्पण और रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
0: चले ले आ गया नया किडबैक।
3: आरबीआई कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद। कहा, अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र। 21 जून को होगा इम्तिहान।

0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह, प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जन भागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा,
1: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए हब बनेगा और खास तौर पे यहाँ एयरोट्रॉपलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाकर बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
0: इस पहली उड़ान से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसानों को स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ भेजा गया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के प्रतिबद्ध है और इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।
2: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद और अमृतसर के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। 1 जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें संचालित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़कर एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में रामभाव महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने आयोजन के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। इस सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स एक साथ एक मंच पर जुटे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार की इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को हवा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। 12 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से शुरू हुआ। श्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली। भारत की इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
5: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं जरूर कहूंगा कि एक चुनौती है। ट्रस्ट जो राम कथा संग्रहालय है, हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
0: सोमवती अमावस्या आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आस्था के साथ मनाई गई। प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। पेश है एक रिपोर्ट।
6: श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण के साथ घाट पर जल अर्पित कर पूजन किया और जरूरतमंदों को अनाज और वस्त्र दान किया। सोमवार और अमावस्या का यह मेल स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन धर्मावलंबी महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके कच्चे सूत का फेरी देती हैं। अधिक मास का भी समापन सोमवार को पड़ने से आज बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में श्रद्धालु किया। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
0: इस अवसर पर अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मिर्जापुर सहित अन्य जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र। 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जन भागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
8: बेटा,
7: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
8: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
9: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
8: चलो,
7: कहाँ
8: एडमिशन कराने?
9: खाता हुआ एक्टिव।
10: RBI कहता है
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
12: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:31 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे पर विशेष कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर। संकलन अली हैदर का, आलेख शिखा दीक्षित का एवं प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की।

0: हमने अपने जीवन में नाम बहुत कमाया है, क्योंकि हमारे सिर पर बुजुर्गों का साया है। सही गलत का पाठ सब समझ आया है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। अपने जीवन में हमने पूरा परिवार सजाया है, क्योंकि हमारे सिर पर बुजुर्गों का साया है। हर बला, बुरी नजर, बुरी नीयत से खुद को बचाया है, क्योंकि हमारे सिर पर बुजुर्गों का साया है। बुजुर्ग हमारे जीवन में वो खजाने हैं, जिनके अनुभवों से हम हर कठिनाई का हल पा सकते हैं। उनके साथ वक्त बिताना एक अमूल्य धरोहर को जानने जैसा है। हमारे समाज और परिवार के लिए अपने जीवन को अनुभव की पूंजी बना देने वाला बुजुर्ग किसी धरोहर के ही तो समान है। बुजुर्ग हमारे समाज का आधार स्तंभ होते हैं। उनके अनुभव, ज्ञान और संस्कार हमारे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के काम आते हैं। वे हमारे इतिहास के जीवंत प्रमाण हैं, जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम कर रहे हैं। बिना उनके हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत अधूरी है। परंतु आज यह वर्षों से ही बढ़ता भागता जीवन बूढ़ी आंखों की उपेक्षा करता रहा है। उनकी देखभाल में कमी एक गंभीर चिंता का विषय है। उनके द्वारा दिए गए संस्कार और मूल्य ही हमें जीवन की सही दिशा दिखाते हैं। जीवन की डगर पर हाथ थामने, हमें संभालने वाले हाथ जब कांपने लगते हैं, तो उन्हें आशा होती है सहारे की। कहीं ना कहीं समाज सहारा बनने में नाकामयाब रहा है। उनकी देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है और समाज की इसके प्रति जिम्मेदारी भी है। बुजुर्ग जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, जहां शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आना स्वाभाविक है। उम्र के साथ इन परेशानियों के अलावा भी कई दिक्कतें हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। पूरा जीवन अपनी आय, अपनी पूंजी परिवार पर खर्चने के बाद जब शारीरिक क्षमता के गिरने पर कम काम करना पड़ता है, तो सामने आती है आर्थिक चुनौती। स्थायी आय स्रोत ना होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद वे खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं पाते। कई बार वो अपने बच्चों व रिश्तेदारों पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे उनको अपने आत्मसम्मान में कमी महसूस होती है। घर के मुखिया से लेकर घर की दहलीज पर बैठा बुजुर्ग क्या अहमियत रखता है सरकार की नज़रों में? सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और पेंशन के बारे में जानते हैं सूरज कुमारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जनपद रामपुर से।
1: समाज कल्याण विभाग से संबंधित वृद्धों के लिए मुख्यतः दो योजनाएं चलती हैं, जिसमें है पहली वृद्धावस्था पेंशन और दूसरी है वृद्धाश्रम। तो पहले में ये होता है कि जो भी 60 वर्ष या फिर 60 से ज्यादा वर्ष के बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाते हैं पेंशन के रूप में, धनराशि दी जाती है उनको। इसके लिए पात्रता की शर्तें मुख्यतः यही हैं कि 60 वर्ष पूरा होना होता है और एक इनकम सर्टिफिकेट लगता है, जो एक न्यूनतम आय सीमा रखी है गवर्नमेंट ने। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 और शहरी क्षेत्र के लाभार्थी के लिए है 56,460। और दूसरी है हमारे यहाँ वृद्धाश्रम। तो सरकार के द्वारा वृद्धाश्रम संचालित है रामपुर में, उसमें 60 या 60 से प्लस बुजुर्गों के लिए, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवासित रहते हैं, वहां पे सरकार द्वारा इनको जैसे खाना पीना, वस्त्र और रहने सहने की सुविधाओं के साथ साथ चिकित्सकीय सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। तो दो योजना मुख्यतः समाज कल्याण विभाग से संचालित हैं।
0: हालांकि सरकार प्रयास करती है, किंतु जमीनी तौर पर बेहतरी के विकल्प तलाशने की आवश्यकता अब भी है, जिसमें पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हों। आर्थिक समस्याएं कहीं ना कहीं पारिवारिक अनदेखी से भी उपजती हैं। आपसी मनमुटाव के चलते ये समस्या बढ़ती जाती है। समाज और परिवार दोनों को मिलकर बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को खुशी और सम्मान से जी सकें। इस समस्या की अनदेखी पर कानून क्या कहता है, आइए सुनते हैं श्री वेद प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, जनपद रामपुर को।
2: मैं रामपुर निवासी वेद प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता बोल रहा हूँ। आजकल जो परिवार में वरिष्ठ नागरिकों के साथ समस्याएं आती हैं वो बड़ी ज्वलंत हैं, जिसके विषय में प्रत्येक व्यक्ति को जो इस समाज में है जानना बहुत आवश्यक है। अक्सर देखा गया है कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तो उनके बच्चे उनका पालन पोषण नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते और वो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि वो सड़क पर भीख मांगते भी नजर आते हैं, असहाय रहते हैं। इस संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ष 2007 में हमारे कानून वेत्ताओं ने एक कानून बनाया जिसका नाम है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम। ये 2007 में बना, इसमें वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों जो उनको प्राप्त होने चाहिए और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक हैं, उनके संबंध में प्रावधान स्पष्ट दिए गए हैं। पहले बता दूं कि कौन वरिष्ठ नागरिक है। वरिष्ठ नागरिक वो है जिसने 60 साल की आयु प्राप्त कर ली और वो व्यक्ति अपने बच्चों से हर प्रकार का भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अगर कोई बच्चा अपना भरण पोषण नहीं, मतलब बच्चा अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को जो 60 साल से अधिक उम्र प्राप्त कर चुका है और वरिष्ठ नागरिक है, तो वो अदालत में अपना प्रार्थना पत्र लगा सकता है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि वो असहाय है, चल फिर नहीं सकता, तो वो किसी संस्था के माध्यम से भी अपना प्रार्थना पत्र ट्रिब्यूनल में लगा सकता है, अदालत में लगा सकता है और अपनी बात को कह सकता है। अब वो जो ट्रिब्यूनल है या जो कोर्ट है जहां पर उसने प्रार्थना पत्र लगाया है स्वयं या किसी संस्था के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वो उसका सारांश तरीके से जांच करेगी और जांच करने के बाद में उन बच्चों को सुनवाई का मौका भी देगी और जांच करने के बाद में फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण का बच्चों को आदेश देगी कि इनका भरण पोषण करिए। ऐसा भी होता है कि भरण पोषण करने के बाद का आदेश प्राप्त होने के बाद भी बच्चे कभी कभी जो है वरिष्ठ नागरिकों उस आदेश का पालन नहीं करते, उनके भरण पोषण राशि नहीं देते या उनका ख्याल नहीं रखते, तो उस आदेश के इन्फोर्समेंट के लिए भी आप किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फिर वही बात है कि अगर वो खुद नहीं जा सकता तो फिर किसी संस्था के माध्यम से जो पंजीकृत होनी जरूरी है वो उसके हिसाब से वहां पर भरण पोषण की धनराशि वसूल करने के लिए प्रार्थना पत्र लगा सकता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कभी कभी बहुत अधिक प्यार में आकर, स्नेह में आकर वरिष्ठ नागरिक अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर देता है। इस अधिन 2007 में जो अधिनियम पास हुआ इसमें एक प्रोविजन किया गया कि आपने अगर अपने बच्चों को कोई प्रॉपर्टी दे दी है तो, और बैनामा कर दिया है या हिबा कर दिया है या आपने दान पत्र कर दिया है, तो वो दान पत्र शून्य होगा। अगर वो बच्चा जिसके हक में वो दान पत्र हुआ है, वो व्यक्ति जिसने वो प्रॉपर्टी प्राप्त की है या बैनामा कराया है, वो उसका देखभाल नहीं करता और जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं करता, मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान नहीं करता, तो ऐसी चीज जो है वो छल छदम और बलपूर्वक निष्पादित की भी मानी जाएगी और वो शून्य होगी। इसके लिए भी कोर्ट में ये प्रोविजन दिया गया है, एक्ट में दिया गया है और आप जा सकते हैं कोर्ट में और उसको खत्म करा सकते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है, निश्चित रूप से पहले जो वरिष्ठ नागरिक थे उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुविधाओं और उनकी देखभाल के लिए इस प्रकार का कोई कानून नहीं था, लेकिन जब से ये 2007 का में एक्ट बना है तब से वरिष्ठ नागरिकों को बहुत अधिक संरक्षण प्राप्त है और वो इस कानून के तहत अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और है कि जो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक का ध्यान रख रहा है और वो अचानक जो है उनका परित्याग कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उसके बच्चे नहीं है लेकिन कोई व्यक्ति जो उसकी प्रॉपर्टी को प्राप्त करेगा या उसका वारिस है या उसकी देखभाल करता है और देखभाल करने में वो फिर उसका परित्याग कर देता है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी वरिष्ठ नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अदालत में जाए और उसके खिलाफ एप्लीकेशन लगाए और उन अधिकारों को प्राप्त करे जो मूलभूत आवश्यकताएं और जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूरा करने के लिए वो व्यक्ति बाध्य होगा।
0: पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? अब ताजी हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? बहलाकर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को, नए घर में पुराना सामान कौन रखता है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इन संस्कारों से अपने जीवन का आरंभ करने वाला मनुष्य आज इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे अपने माँ बाप की भी चिंता नहीं रही। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला ये देश आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपने संस्कारों को भूल बैठा है। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, बस इतनी ही है दुनिया इनकी। ऐसे में बुजुर्ग की स्थिति का दयनीय होना स्वाभाविक है। बुजुर्गों का होना यानी कि मनुष्य में चिंतन का परिपक्व होना, और यही परिपक्वता हमारे समाज का वो इंजन है जिस पर युवा पीढ़ी सवार है। यानी कि बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना विकास की बातें बेमानी हैं। जीवन पूंजी को एक छत बनाने में खर्चने वाला बुजुर्ग उम्र के ढलते ही घर से निकाल दिया जाता है। वृद्धाश्रम में बढ़ती बुजुर्गों की संख्या समाज के मुंह पर पड़ा वो तमाचा है जो असंवेदनशीलता के चरम को आईना दिखाता लगता है। हमने बात की श्री पंकज कुमार, प्रबंधक दीपजन वृद्धाश्रम रामपुर से, और वहां रहने वाले वृद्धजनों से।
3: मेरा नाम पंकज कुमार, दीपजन कल्याण समिति बरेली से मैं पदाधिकारी हूँ। अपना रामपुर में वृद्धाश्रम चलता है जिसमें 90 वृद्ध माता पिता हमारे रह रहे हैं। ऐसे वृद्ध माता जो 60 साल से उम्र के बुजुर्ग हैं, परिवारों से निकासित निकाल दिया है, उन लोगों की यहाँ सेवा भाव से सेवा की जाती है और उनके लिए निःशुल्क भोजन, वस्त्र और मनोरंजन भी कराया जाता है ताकि इन लोगों को घर जैसा व्यवहार मिले। और मेरी सब लोगों से आशा है ये कि अपने माता पिता को अच्छी प्रेरणा दें ताकि माता पिता को लगे कि हमारे बच्चे हमारे भविष्य के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ ही हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में समाज कल्याण विभाग लखनऊ द्वारा ऑडिट किया गया हुआ है ये, जो इनके लिए समय समय पर निरीक्षण करते हैं, इनके खाने पीने की, इनके पेंशन की आदि विषय में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। वृद्धजनों के लिए हमारे वृद्धाश्रम में मनोरंजन के लिए निःशुल्क सत्संग और टीवी, मजीरा, हारमोनियम, इस तरह से हम इनका आते हैं। हमारे यहाँ लूडो भी हैं, कैरम है, बोर्ड हैं, इन तरह से हम समय समय पर इनका मनोरंजन कराते हैं वृद्धों का, ताकि ये घर का जैसा माहौल बिल्कुल अच्छे विपरीत करें। स्वास्थ्य में हमारे यहाँ जिला अधिकारी टीम आती है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट से अच्छे डॉक्टर लेवल के 15 दिन में कैंप लगाते हैं। इनके लिए आँखों का कैंप, स्वास्थ्य कैंप, हेल्थ संबंधी समस्याएँ जो इनके लिए देखी जाती हैं, समय समय पर कोई दिक्कत होती है तो इनके लिए इमरजेंसी भर्ती कराया जाता है, अच्छे केयर टेकर द्वारा उनकी केयर की जाती है। हमारे यहाँ 150 की क्षमता है जिसमें आज हम वृद्धाश्रम में 90 के करीब हैं। ऐसे वृद्धजन जो 60 साल से ऊपर हैं और उनके पास आधार कार्ड या कोई एक आईडी होती है, वो वृद्धाश्रम में आके रह सकते हैं, जिनकी सेवा अच्छे भाव से की। वृद्धाश्रम में वृद्ध माता पिता एक दूसरे से एक साथ बैठ के बातें करते हैं, एक दूसरे साथ खेलते होते हैं, गेंद से और से मिलान चीज़ें हैं, लूडो हैं, कैरम बोर्ड हैं, इनसे मनोरंजन करते हैं, सत्संग करते हैं आपस में ज्ञान के साथ में, और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि हम लोग सब यहाँ परिवार की तरह स्वस्थ और अच्छे रहें। समय समय पे जो वृद्ध माता पिता रह रहे हैं उनके दामाद या अन्य परिचित लोग इनसे मिलने आते हैं और जो उनसे मिलकर बड़ा खुश होते हैं कि हमारे क्या नाम है, कोई बच्चा हमसे मिलने आया, कोई हमारा देख रेख करने वाला हमसे मिलने आया। समय समय पर यहाँ समाज से भी लोग आते हैं जो इन्हें खाना कराते हैं, कभी कभी इनके लिए समोसा वितरण कराते हैं, जिससे इन लोगों के लिए ऐसा महसूस होता है कि हमारे बच्चे तो नहीं आए लेकिन दूसरा व्यक्ति हमारे लिए आया और अच्छे से हमें उन्हें पूछा, एक चेहरे पर एक नई मुस्कान लेके आता। वृद्धाश्रम में 2 टाइम नाश्ता और 2 टाइम खाना दिया जाता है और इनके लिए मेन्यू के अनुसार दाल, चपाती, रोटी, चावल और सुबह में इनके लिए दलिया, पौष्टिक आहार, नाश्ता दिया जाता है ताकि ये लोग खुश रहें यहाँ पर।
4: मेरा नाम है ओमवती और मुझे हो गई 1.5 साल यहाँ रहते हुए, दिन और रात रह रही हूँ। मुझे कपड़े लगते भी यहीं से मिलते हैं पहनने के लिए और अच्छे मिलते हैं। जाड़न में जर्सी मिला, शॉल मिला, और ठंड में ठंड के कपड़े, गर्मियों में गर्मियों के कपड़े, और चप्पल जूता सब चीज़ मिलती है। और खाना है घर पर, हमें परेशानी है, एक लड़का था वो भी पीता खाता था, मारता तोड़ता, सारी सारी रात हम दरवाजे पे बैठी रह कर आई। फिर हमने यहाँ देखी सुविधा है, हम अपना घर छोड़ के यहाँ आए हैं। हाँ, बेटी आती है हमारे पास हमसे मिलने, हम बेटियों के घर जाते हैं। हाँ, अभी हम बेटा के घर गए भी नहीं हैं, आए हैं जब से। और हमें दान में भी खूब चीज़ मिलती है, दानी लोग भी खूब आते हैं। और हमारे कमरा में हम सब जने खूब आपस में प्रेम से रहते हैं। घर नहीं गई हूँ मैं, पर बेटियों के घर जाती हूँ। एक लड़की मेरी मौलिया में, एक बाएँ गजरौला के पास में, वहाँ जाती हूँ। और खाना पीना अच्छा मिलता है, कपड़ा लत्ता भी अच्छी मिलते हैं यहाँ में। बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा लगता है हमें। हमारे मुंह में से तो यही निकलती है, अपने घर जा रहे हैं, अपना घर छोड़ कर हमें जो अपना घर लगता है। अब भाई ये है कि अब हमारे घर की तो हमें, अपने की तो हमें मालूम है। जब हमारे हमें अपने घर में परेशानी पड़ी तो हम अपने घर छोड़ कर यहाँ पर आए थे। यहाँ हमें खूब सुविधा है, यहाँ से हमारा दिल नहीं करता है घर जाने के टाइम।
5: हमारा नाम हरप्रसाद है, ग्राम विक्रमपुर मिलक तहसील के रहने वाले हैं हम, और जिला रामपुर, और यहाँ आश्रम में रहते हैं। अब व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि अब कोई घर में तो बड़े बुजुर्गों को कोई मानता है नहीं, कोई सेवा नहीं करता, घृणा करते हैं, तो इस वजह से आश्रम में रहना पड़ता है। और वैसे तो सब कुछ सही है, पहले से बहुत बदलाव है। कौन किसको समझता है, कौन कि कोई किसी का नहीं है आजकल, बस यही बात है। इसीलिए आश्रम में रह रहे हैं और ऐश कर रहे हैं और अपने भगवान का भजन कर रहे हैं। पहले बुजुर्गों का इतना सम्मान होता था कि बगैर बुजुर्गों के कोई कदम भी नहीं हिलाता था घर से, ना बहू ना बेटी ना कोई बेटा। पर आजकल कोई किसी से बुजुर्ग से पूछता ही नहीं है घर बार, उनको बुजुर्गों को पता ही नहीं। उन्होंने पूछा भी, बेटा कहाँ गए थे, कैसे क्या सेवा करेंगे, जब कोई बात ही नहीं मानेंगे तो सेवा क्या करेंगे वो। बस यही बात है, पहले से बहुत धरती आसमान का फर्क है। पहले बहुत आप इज्जत भी देते थे अपने की, तो अपनों के अनगहमियों की भी इज्जत करते थे और देते थे इज्जत। बुजुर्ग इसलिए ज़रूरी हैं, वैसे तो देखो बुजुर्गों ने, उन्हीं से तो हमारी संसलत हुई है, उन्हीं ने तो हमको पैदा किया है। वैसे तो बुजुर्गों ने ही तो किया, तभी तो हम यहाँ आए, कोई आसमान से तो गिर नहीं पड़े। पर अब उसके बावजूद अब नहीं समझते कि इनने हमको पैदा कराया, हमारे पीछे कितनी परेशानियाँ उठाई हैं, क्या क्या नहीं कराया हमारे पीछे। सुधार तो देखो जब ही हो सकता है, बुजुर्ग तो सुधार ही समझते हैं कि सुधार ही रहे, हमारा कोई बिगड़ा नहीं हो, हमारा बच्चा कोई नहीं बिगड़े, या कोई हमारे घर में परेशानियां ना पैदा हों, या किसी से झाड़ झंकाल ना हो। पर अगर वो भी इतनी बात अगर समझने लगे, औलाद समझने लगे, घर वाले सब बच्चे बच्चे समझने लगे, तो ये बात पैदा ही क्यों होगी, तो सुधर सकता है नहीं। पर नहीं, दोनों की मुलाकात होगी, दोनों मिलकर रहेंगे बाप बेटे, तभी सुधार हो सकता है। पर
0: वृद्धाश्रम की चार दीवारी को घर मान लेने वाला बुजुर्ग कितने असहाय हैं, ये संवेदना हम नहीं महसूस कर सकेंगे। बुजुर्गों की देखभाल करना न केवल एक नैतिक कर्तव्य है, बल्कि हमारी संस्कृति और संस्कार का भी हिस्सा है। भारतीय संस्कृति के लिए बुजुर्ग एक विरासत हैं। वे परिवार के मुखिया, मार्गदर्शक और सलाहकार होते हैं। उनके अनुभव जीवन मूल्यों पर सदा सही उतरते लगते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर उन्हें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कई प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। शारीरिक देखभाल मिलने से उनकी रोजमर्रा की समस्याओं में आराम मिल सकता है। बुजुर्गों को अधिकतर जोड़ों का दर्द, कमजोर हड्डियां, आंखों की रोशनी में कमी, सुनने में दिक्कत, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य बीमारियां घेर लेती हैं, जिसके चलते वो पहले की तरह स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाते और दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इनका नियमित चिकित्सीय परीक्षण, सही खानपान और व्यायाम बेहद जरूरी है। उनकी दवाइयों के समय का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, तो घर में उनकी सुविधा के अनुसार व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, ताकि उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों में कठिनाई ना हो। बुजुर्गों के खानपान का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। उनके स्वास्थ्य में खानपान का सही होना महत्वपूर्ण होता है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर की पोषण संबंधी जरूरतें बदलती जाती हैं, शारीरिक क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, जिससे पाचन तंत्र की क्षमता भी कम होती जाती है और शरीर को सही पोषण की जरूरत पड़ती है। बुजुर्गों का आहार न केवल उन्हें स्वास्थ्य रखने में मदद करता है, बल्कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता को भी सही बनाए रखता है, ताकि वो बीमारियों से लड़ सकें। उनके भोजन में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज, पानी और तरल पदार्थ के समावेश के साथ साथ सफाई का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बुजुर्गों की खाने की मात्रा और समय का भी ख्याल होना चाहिए। एक बार में ज्यादा खाना खाने के बजाय छोटे छोटे भोजन दिन में कई बार कराने से पाचन तंत्र ठीक रहता है और नियमित अंतराल पर भोजन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, जिससे कमजोरी महसूस नहीं होती। भोजन समय पर हो, हल्का और सुपाच्य हो, साथ में विविधता और स्वाद भी ध्यान में रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए भोजन एक आसान प्रक्रिया हो जाए। मधुमेह और उच्च रक्तचाप के चलते कई तरह से भोजन में विविधता आवश्यक होती है। मनपसंद भोजन और घर में अच्छा माहौल उनके जीवन के कठिन समय को आसान कर सकता है। अन्य समस्याओं के साथ ही भावनात्मक और मानसिक चुनौतियों का सामना करता बुजुर्ग घर में सिमटता सा जाता है। अवसाद, अकेलापन और स्मृति ह्रास इनमें से मुख्य समस्याएं हैं। जैसे जैसे वे अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और साथी को खोते हैं, खुद को सामाजिक दायरे में सीमित करते जाते हैं। ये कारण बनता है मानसिक तनाव का। समाज से दूरी स्थिति को और खराब करती है। उन्हें मानसिक और भावनात्मक समर्थन की भी जरूरत होती है। उनके साथ समय बिताना, उनसे बातें करना और उनकी भावनाओं को समझना जरूरी है। उन्हें ये एहसास दिलाते रहना चाहिए कि वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुभवों को सुनना और उनका सम्मान करना उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा कर सकता है। परिवार के बड़े अगर ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित ही बच्चे भी इस बात का ख्याल रखेंगे। एक परिवार के मुखिया के तौर पर बड़े परिवार की जिम्मेदारी संभालते बुजुर्ग क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी से।
6: मेरा नाम सुरेश कुमार श्रीवास्तव है और मैं 74+ में चल रहा हूँ। इस समय गवर्नमेंट प्रेस से मैं रिटायर हुआ हूँ। मौजूदा स्थिति में जो बुजुर्गों की है आजकल बात, तो बहुत कम संयुक्त परिवार लोग रह गए, लेकिन जहाँ रह रहे हैं तो वो सम्मानित हैं। अब इससे मैं थोड़ा बुजुर्गों को भी अपना थोड़ा बदलना चाहिए समय के साथ साथ, लेकिन हम जहाँ पर हैं, हमारे साथ में हमारे दो बच्चे भी रह रहे हैं, उनके भी बच्चे रह रहे हैं। अब हम सब लोग एक ही साथ में रह रहे हैं, सब एक ही साथ खाना खाते हैं और कोई भी राय मशवरा अगर लेना हो, कोई काम करने से पहले वो थोड़ा सा पूछते जरूर हैं। हम अपनी राय उन पर थोपते नहीं, लेकिन उनको भला बुरा बता देते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अच्छा होगा। अक्सर जो है वो लोग बात मान भी लेते हैं और उनको अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है जब वो कोई बात पूछते हैं। तो लगता है आजकल इस मोबाइल की दुनिया में चलो कुछ तो है मेरे घर में जो मुझे बच्चे इतना महत्व देते हैं, इस तरीके से है। लेकिन मैं उन बुजुर्गों को भी थोड़ा सा कहूँगा कि जो समय के साथ में अपने अंदर बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, देखिए हर समय समय की बात होती है। देश काल या परिस्थिति यथाकाल जो है, एक जो सामंजस्य है वो मौजूदा पीढ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स युग की आ गई है। अब जैसे हमने बचपन देखा था, उसमें न टीवी थे न मोबाइल थे न कुछ थे, तो आपस में बैठते थे, ज्यादा प्यार होता था। तो उसी हिसाब से आजकल बुजुर्गों को भी थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए,

0: इस समय में जो है भाग दौड़ जो चल रही है, होड़ चल रहा है अपना, एक सोशल बनने की, हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में मोबाइल है, तो ज्यादातर बच्चे उसमें रहते हैं। तो उन्हें भी अपनी थोड़ी सोच बदलना चाहिए कि जैसे आजकल मैं बताऊं आपको क्या है, मैं अपने आप को समझता हूँ जैसे अंगूठा छाप। अगर मेरे मोबाइल में कुछ हो जाता, कुछ होता, तो मैं पोते पोतियों को बुला के कहता हूँ भाई देखो इसमें क्या हो गया, तो वो सब आके ठीक करते हैं और बड़ा सम्मान देते हैं उनकी। मुझे ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि कम से कम ऐसी स्थिति नहीं है जैसा कि मैं टीवी पे देखता हूँ और भी सुनता हूँ कि अपने प्रेस्टीज इशू के लिए अपने माँ बाप को जो है वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं। देखिए कितनी बुरी बात है, जिन लोगों ने पाला पोसा है उनको आप वहाँ छोड़ने जाते हैं, जहाँ पे संयुक्त परिवार है और जो सब लोग मिलवाट के साथ में रहते हैं, तो उसमें कुछ नफा नुकसान साथ बहुत बड़ा फायदा भी है। अब सपोज करिए बच्चे कहीं जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो बड़े बुजुर्ग घर में जानते हैं कि ताला चाबी का काम करते हैं, दरवाजे पे बैठे हैं, अनावश्यक कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। अंदर भी बच्चे कहीं बाहर जानते हैं वो भी चकते हैं, अरे दादा दादी बाहर बैठे हैं, तो इस तरीके का भी थोड़ा सा उनके अंदर डर जैसा रहता है कि भाई जरा सही समय से जाना और सही समय से आना है, इसका भी ख्याल रहता है। तो बुजुर्ग लोग तो समझ लीजिए कि बगैर वेतन के वो आपके घर के चौकीदार हैं, आप समझ लीजिए। हम तो ये मान चलते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब कोई पूछ के जाता है, पूछ के आता है, तो ठीक है जाओ, मैं कभी मना ही नहीं करता हूँ किसी को, तुम कहीं जाओ या ना जाओ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई आजकल इतनी महंगाई में बगैर जाने से भी 4 पैसे कमाने भी जाते हैं, बहू हमारी तो बहू भी जाती है, बेटे भी जाते हैं, सभी उसमें अपना शेयर करते हैं। तो इसके लिहाज से तो बुजुर्गों को भी थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। वो बात नहीं रही कि देखिए बहुएं कैसे घूमती, कहीं नहीं, समय के साथ साथ सबके ड्रेस बदल गई हैं, पहनावा बदल गया है, तो हम लोगों को भी चाहिए थोड़ा, हम भी मन बदले और समय के साथ चलें।
1: घर में बड़ों का होना एक सुरक्षा की गारंटी देता है। ये भावना बच्चों के लिए बड़ों के लिए समान होती है, लेकिन जब समय आता है उन्हें ऐसा महसूस कराने का, तो हम कहीं ना कहीं विफल होते नजर आते हैं। एक बच्चा जब संयुक्त परिवार में पलता बढ़ता है, तो वो बखूबी जानता है कि उसने बड़ों से क्या पाया है और वक्त पड़ने पर उसे क्या लौटाना है। ये विरासत, ये धरोहर कितनी अमूल्य है। आइए सुनते हैं शियोना से।
2: मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा और दादी बाबा के साथ रहती हूँ। मैं अपने दादी बाबा को अम्मा बाबा कहती हूँ, और बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने मेरा बहुत ख्याल और मुझसे बहुत प्यार किया है। जब भी वो कभी घर से दूर जाते हैं, तो घर उनके बगैर काफ़ी सूना लगता है, और जब वो घर होते हैं तो घर बहुत हैप्पी और बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है उनके होने से। मैं अपनी लाइफ उनके बिना बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकती। कभी मम्मी पापा से अगर मैं किसी चीज़ की फरमाइश करूं या मैं कुछ बोलूं, तो शायद वो ना कर दें या शायद अपने काम में बिजी हो जाएं, तो इसीलिए शायद बात ना सुन पाएं सही से। मगर अम्मा बाबा को मैं किसी भी चीज़ का बोलूंगी तो उन्हें, मैं किसी चीज़ की ज़िद भी करूंगी ना, तब भी वो किसी चीज़ को मना नहीं करते। वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं। और मम्मी पापा अगर कभी घर से कहीं दूर जा रहे हैं, तो अम्मा बाबा मेरे भाई बहनों को बहुत सेफ और बहुत सिक्योर फील कराते हैं घर पे। वो बहुत प्रोटेक्टिव है हमारे लिए और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं अपने अम्मा बाबा के साथ बहुत अच्छा समय बिताती हूँ। मैंने अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स उनके साथ एक्सपीरियंस करे, और आज इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरे अम्मा बाबा का बुढ़ापा और नज़दीक आता जा रहा है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप भी अपने अम्मा बाबा को देखिए और उनका ध्यान रखिए, जैसे उन्होंने हमारा हमेशा ध्यान रखा, वैसे ही अब हमारा टाइम है कि अब हम उनका ध्यान रखें और उन्हें उतना ही प्यार और उतना ही सेफ और सिक्योर फील कराए जितना उन्होंने हमें फील कराया है।
1: यूं तो घर के कोने में चुपचाप से रहते हैं, लेकिन उनके जाने से रौनक चली जाती है। बुजुर्ग होते हैं तो छाया रहती है, उनके जाने से सिर से छत चली जाती है। किसी बुजुर्ग के चेहरे पर पड़ी झुर्रियाँ बस उनके तजुर्बे की कहानी नहीं होती, वो होती हैं उसके पूरे उतार चढ़ाव भरे जीवन का मानचित्र। बुजुर्ग घर की चारदीवारी में कोने में पड़ा कोई सामान नहीं, बल्कि पूरे घर की नींव है, सहारा है, छत है। हमारे जीवन का वो सजीव स्तंभ है जो अनुभव का, ज्ञान का अथाह समंदर समेटे है। उनकी झुर्रियों में जीवन की कठिनाइयों की कहानियां हैं और उनकी आंखों में अनुभवों का प्रकाश। उन्होंने अपने परिवार को निस्वार्थ भाव से पाला पोसा है, सही गलत का ज्ञान दिया है और हमेशा उनके फैसलों में उन्हें सराहा भी है। हमारी हंसी उनके चेहरे पर मुस्कान लाती है, हमारे गिरने पर उनके हाथ हमें उठाने को हमेशा तत्पर मिलते हैं। उनके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना नितांत असंवेदनशील है, क्योंकि उनकी दुआएं और अनुभव हमें जीवन से लड़ने, चुनौतियों को स्वीकारने को प्रेरित करते रहते हैं। उनकी मौजूदगी हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और उनका स्नेह वह धरोहर है जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव।

अभी आप सुन रहे थे वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे पर विशेष कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर। संकलन अली हैदर का, आलेख शिखा दीक्षित का एवं प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8:02 हुए हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल। नमस्कार श्रोता साथियों, हाजिर है एक बार फिर आपकी आज की रेडियो मेजबान सरस्वती सिंह लेकर आप सभी की ढेर सारी फरमाइश और आप सभी के ढेर सारे फरमाइशी गीत। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का फिल्मी गीतों का ये सफर। कार्यक्रम में सबसे पहले अपनी फरमाइश लिख भेजी है रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन, शमीम अख्तर अंसारी। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान। इसी क्रम में इसी गीत को सुनना चाहा है जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से फरमाइश करता है रेवण भाविष्टे, राहुल, अनीता और इनके परिवार के सभी सदस्य। मेरठ कैंट से फरमाइश लिख भेजी है दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश करता है राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और गौरी सुरलकर। जिला बरेली ग्राम करेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी और इनके सभी साथीगण। कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और आदिब। चांदनी चौक सांगली महाराष्ट्र से सक्षम श्रेणिक चौहान, लता राजा राम, ज्योति अजित चौहान और इनके परिवार के सभी सदस्य। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथलेश वर्मा, इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से सुनने वाले हमारे श्रोता साथी हैं विनोद मूढ़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूढ़त, चेतन नाहटा और दीक्षा कुश मूढ़त। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर और इनके सभी साथीगण। आप सभी श्रोता साथियों की फरमाइश पर, आप सभी के अनुरोध पर हम आपको सुनवा रहे हैं गुलामी फिल्म का ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की युगल आवाज़ों में। ये गीत, ये नगमा आप सभी की फरमाइश पर, आप सभी के रेडियो सेट पर।

गुलामी फिल्म का भी आप ये नगमा सुन रहे थे, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की उगल आवाजों में। कार्यक्रम की अगली फरमाइश में आप सभी ने सुनना चाहा है इम्तिहान फिल्म का गीत, जिसे अपना स्वर दिया है कुमार सानू ने और पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। करीमवीर हाउस भुजो कैंचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन और अभिजोत, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से सुनने वाले श्रोता साथी हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से फरमाइश करता है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से अनुरोध करता है मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदरानी और हिना कौसर। नाज मंजिल महसौल सीतामणी से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन। ददरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुनने वाले श्रोता साथी हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोकेलाल वर्मा। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश लिख भेजी है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। इसी क्रम में इसी फिल्म का गीत सुनना चाहा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित्त आहूजा। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और इनके सभी साथीगण। शहबाजपुर कला कस्बा पागबड़ा जिला मुरादाबाद से सुनने वाले श्रोता साथी हैं मजाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रईसा नाज, बेटा मुजक्कर बाबू, मजहर आसिम और बेटी सुमैया नूर। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी और सीता और गीता। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल, अर्जुन गवनीकर और धीरज सब्बा शेरे। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से सुनने वाले श्रोता साथी हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी और इनके सभी साथी हैं। कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से फरमाइश लिख भेजी है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और डॉली बेबी पूजा तामुरिया, साथ हैं राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और अलकबीर।

रवि बंटी रस्तोगी और रोहित रस्तोगी। सरोज चौक अमरावती से कमरुला ठेकेदार नसीम बेगम, शोएब खान, साइमा खान, पुत्र मुस्तवा खान, आफिया खान, शाहिद भाई और राहु भाई। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके सभी साथीगण। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन और मुन्ना अंसारी, आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए इम्तिहान फिल्म का ये खूबसूरत गीत, जिसे अपने स्वर से सजाया है कुमार सानू ने, संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने और शब्द रचना फैज़ अनवर की।

और श्रोताओं, इसी गीत के बाद आप सभी ने सुनना चाहा है दिल है के मानता नहीं, इस फिल्म का गीत जिसे अपने स्वरों से सजाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने, और पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। परिमेल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला।

फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और शुभदीप सिंह। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। मंडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी, रिफाकत हुसैन सिद्दीकी। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकार, विजय लक्ष्मी सावनकार। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक और निहारिका नायक। जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के सभी सदस्य। राजद्वारा रोड मीठा कुंवर रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभय, रिया और आरुष। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। बेड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद द्रीसी, इरफान खान। राजद्वारा कोठी अफसर आला से रूमा खान, बॉबी खान, मदीहा खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी, गुलफशा, जीना तमान और शमा परवीन। सेक्टर 5 कुरी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से सुनने वाले श्रोता साथी हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दुल्ला अंसारी और इनके सभी साथीगण। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से सुनने वाले श्रोता साथी हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूपी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक उमा और कमल उमा। खंडवा से राधिका, अनीता, सपना और राकेश ताई। जेल रोड रायगढ़ से निशा डोमीन, उमा डोमीन और जानवी डोमीन। चंद्रनगर सहारनपुर से देवशंकर यादव, प्रभारानी यादव, सुरेश यादव और नरेंद्र यादव। ग्राम ढकिया केसरपुर बांसखेड़ा से ए के राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश चंद्र राजपूत, भगवान दास राजपूत, मदन लाल, रवि कुमार वर्मा, नवनीत वर्मा, खुशी, संतोषी, प्रिया और चंचल कुमारी। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से फरमाइश करता है सोनम और अदीबा। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्परानी, आकाश कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से बहुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, अलीशा नाविया सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, सुदेश चौहान, मोहम्मद यासीन अंसारी और इनके सभी साथीगण।

कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश, श्रीमती उषा और इनके परिवार के सभी सदस्य। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर लीजिए सुनिए। दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का खूबसूरत गीत।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सरस्वती सिंह। कार्यक्रम की अगली फरमाइश में आप सभी ने सुनना चाहा है दीवाना फिल्म का ये खूबसूरत गीत, जिसे अपने स्वरों से सजाया है अलका याग्निक और विनोद राठौर ने। इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम शवण ने, और इस गीत को अपने शब्दों से सजाया है समीर ने, और पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। सरगुजा मेनपाट से प्रभा डोमेन, प्रमिला, आशा, निशा और समस्त डोमेन परिवार। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, राधिका देवी, पूजा देवी और मिश्री देवी साहू। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा नंदिनी, लड्डू चौधरी, देविका चौधरी, स्वामी प्रज्ञा चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और रिहान अंसारी। बिहार एनक्लेव लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, प्रकाशवीर राजपूत और अनुप्रिया चंद्रवंशी। बिहारीपुर खंडवा से राकेश, पिंकी और दुर्गा। जालंधर से मीना कौर और संदीप कौर। जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा। रवि रेजिडेंसी राजकोट से हेमा जाटव, सुधा कुमारी, संध्या कुमारी। वीरमगांव सिटी से अजीत मेहरा और सुनीता मेहरा। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक ढींगरा, विजय और अनुश्री ढींगरा। भिलाईगढ़ से देव डुगर, तुषार और अजय देव डुगर। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावाद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमस खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा और अनामिका शर्मा।

स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। लदावली जिला मुरादाबाद से फरमाइश करता है अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना।

सीतामढ़ी बिहार से फरमाइश लिख भेजी है मुसरत जहानाज, तला जहानाज, फराज जहानाज, रिफा जहानाज, नौजत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। तलेताल ननीताल से मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वान्या। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और निलोफर फातिमा। जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से सुनने वाले श्रोता साथी हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, मीना, मानवी।

तन्वी, सीमा, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। जिला मुरादाबाद, ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। वारणा, शाहपुर, कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शौर्य, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान। जिला कोल्हापुर से अपनी फरमाइश लिख भेजी है अतुल गौतमी, अरुण, तुषार कुर्ने, प्रशिक, एकता कामले, मेघना, उत्कर्षा और अरुण। आप सभी श्रोता साथियों की फरमाइश पर लीजिए सुनिए दीवाना फिल्म का ये खूबसूरत गीत अलका याग्निक और विनोद राठौर की युगल आवाजों में।

0: विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की युगल आवाजों में अभी आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दीवाना। इस गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने और संगीत को अपने शब्दों से सजाया था समीर ने। और इसी गीत के साथ अपनी आज की रेडियो दोस्त सरस्वती सिंह को कार्यक्रम गीत गाथा चल संपन्न करने की दीजिए अनुमति। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा की तरह जुड़े रहिए आपके अपने परिवार आकाशवाणी रामपुर के साथ। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाथा छल। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
4: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे

0: क्या पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
3: एलएनजी कैरियर दिशा
4: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
2: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H, clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
6: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
5: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
6: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
5: Prime Minister Modi said the two sides also signed the memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
6: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
5: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors.
7: I congratulate you to the results in all areas which you have achieved. It's the field of digitalization and the use of artificial intelligence. You've come so far that you're ahead of many other advanced countries in different parts of the world. I would like to congratulate you to economic growth, which is amazing.
5: According to the joint statement, Prime Minister Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. We have a report.
8: During the delegation-level talks, 11 agreements were signed in the fields ranging from labor migration, defense, digital technologies, higher education, audiovisual production, establishment of an AI chair, quantum communication, cooperation in student exchange programs and tourism development. Agreement was also signed on scientific cooperation between the Indian National Science Academy and the Slovak Academy of Science. Both the countries also agreed to set up joint working group for counter-terrorism and establishment of consular dialogue. With the report of Smriti M. Pulluruthi, Rupesh Rao, Akashvani News.
5: Later, Prime Minister Modi also met Slovakian President Peter Pellegrini in Bratislava. Mr. Modi reached Slovakian capital last night after concluding his visit to the French city of Nice. The French city of Avignon is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of the G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil, South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Ukraine, Qatar and United Arab Emirates have also been invited for the summit. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon tomorrow to participate in the summit. We now go over live to our correspondent Ankit Kumar, who is now in Avignon tracking developments on the G7 summit. Ankit, how are the G7 leaders translating their recognition of India's strategic importance into practical cooperation on trade, technology, manufacturing and supply chain security, and what outcomes are expected from this summit?
9: Yes, Misit. India's strategic importance for the G7 is increasingly being reflected in the concrete economic and technology partnerships. This is evident from the recently concluded India-EU trade agreement, as well as initiatives such as Bharat Innovate in MEES and India's role as the official AI partner country at the upcoming VivaTech in Paris. These developments underline how G7 countries are looking at India not only as a major market, but also

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर इवियान में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। डीआरडीओ ने अंदरून मुल्क तैयार तवील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। इसराइल ने कहा है कि अमरीका ईरान अमन समझौते के बावजूद उसकी फौज लबनान, शाम और गजा में अपने ठिकानों पर गैर मुयना मुद्दत तक तैनात रहेगी। और फीफा वर्ल्ड कप में आज अमरीका के एटलांटा में ग्रुप एच मुकाबले में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा।

0: कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को जामे शराकत दारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तआवुन गहरे बाहमी एतमाद और जामे तब्दीली की एक मिसाल है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबे में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: जनाब मोदी ने कहा कि एआई का मुस्तकबिल न सिर्फ इख्तिरा पर मबनी होना चाहिए बल्कि यह एतमाद, जिम्मेदारी और इंसानी वकार पर भी मबनी होना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में एक मुफाहमत नामे पर भी दस्तखत किए गए हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन के नए मौके पैदा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको ने भारत की तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और मसनूई जहानत के मैदान में गैर मामूली तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक मुस्तकिल रुकन की हैसियत से शामिल किया जाना चाहिए। दोनों लीडरों ने भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहिदे को जल्द से जल्द नाफिज करने के तय काम करने से भी इत्तेफाक किया, जो तवक्को है कि बाहमी इक्तिसादी मसरूफियात को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। बाद में सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि वजीर आजम फिको के साथ उनकी मीटिंग भारत स्लोवाकिया दोस्ती के लिए एक इंतहाई मखसूस लम्हा है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत में ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और माहौल साजगार टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में तआवुन का अहाता किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वफूद की सतह की बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 11 समझौतों पर दस्तखत किए गए, जिनमें लेबर माइग्रेशन, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, आला तालीम, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एक एआई चेयर का कयाम, क्वांटम मवासलात, तालिब इल्मों के प्रोग्राम में तआवुन और सियाहत की फरोग के शोबे शामिल हैं। भारतीय कौमी साइंस एकेडमी और स्लोवाकिया की एकेडमी ऑफ साइंसेज के दरमियान साइंसी तआवुन से मुतालिक समझौते पर भी दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक ने इंसदादी दहशतगर्दी और कौंसिल सतह के मुजाकरात के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। नई दिल्ली से रूपेश राठौर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: ब्रेतिस्लावा में सदारती महल में स्लोवाकिया के सदर पीटर प्लेजरिनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। दौरे के दौरान दोनों लीडरों ने पंचतंत्र फोटो नुमाइश देखने से कबल महल के ग्राउंड में योगा का एक खसूसी मुजाहरा देखा। महल के बाहर भारतीय नजाद अफराद की बड़ी भीड़ इकट्ठी थी, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर एवियान में शुरू हो रहा है। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों G7 मुल्कों के रहनुमाओं का बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। भारत, ब्राजील, जनूबी कोरिया, कीनिया और मिस्र को इस सरबरा इजलास में शराकतदार ममालिक के तौर पर मदऊ किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की सदारत के तहत G7 सरबराह इजलास ने रवां साल के लिए कुछ कलीदी तरजीहात का इंतखाब किया है। इनमें मैक्रो मईशत के बढ़ते हुए अदम तवाजुन में कमी करना, मुश्तरका तरक्की को फरोग देना और बैन अल-अक़वामी शराकत दारी की तजदीद करना शामिल है। तवक्को है कि तबादला ख्याल में हसास और मादनियाती अकदारी सिलसिले को मुस्तहकम करने, छोटे बच्चों को ऑनलाइन तहफ़ फराहम करने और अहम जोग्राफियाई सियासी बहरान को हल करने पर भी गौर वखौज किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए कल एवियान पहुंचेंगे। वजीर आजम फ्रांस का यह दौरा सदर इमैनुअल मैक्रों की दावत पर कर रहे हैं। وزیر

0: आजम का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये इजलास आलमी रहनुमाओं से मिलने का एक प्लेटफॉर्म है जहां वो सिर्फ भारत के मामलात ही नहीं बल्कि आलम जुनूब के भी मामलात पर बातचीत कर सकेंगे। भारत में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार शिरकत अमन, सलामती, तरक्की और पायदार माहौलियात के शोबे में भारत के बढ़ते हुए रोल की अक्कासी करती है। फ्रांस के एवियान से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम जजीरे से मुल्क में तैयार करदा लंबी दूरी तक जमीन पर वार करने वाले क्रूज मिसाइल LRLACM की आजमाइशी परवाज कामयाबी से अंजाम दी। इस क्रूज मिसाइल के सभी जैली निजामों के मुल्क की मुख्तलिफ DRDO लेबोरेटरियों और भारतीय सनअती शराकतदारों के जरिए तैयार किए जाने के साथ ही ये मुकम्मल तौर पर मुल्क में तैयार किया गया मिसाइल है। वजारत दिफा के मुताबिक मिसाइल ने मिशन के सभी मकासिद हासिल किए और भारत की लंबी दूरी तक दुरुस्त निशाने पर वार करने की अहम टेक्नोलॉजी पर मबनी सलाहियत को साबित कर दिया। वजारत ने मजीद कहा कि यह कामयाब तजुर्बा आत्मनिर्भर भारत और एक मजीद मजबूत कौमी दिफाई इको निजाम की जानिब एक और अगला कदम है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने LRLACM की कामयाब आजमाइशी परवास पर DRDO टीम और सनअती शराकतदारों को मुबारकबाद दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क के शहरी हवाबाजी के शोबे में एक नुमाया संगे मील तय करते हुए आज उत्तर प्रदेश के जिला जेवर में नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों का आगाज हो गया। आज सुबह लखनऊ से आने वाली इफ्तिताही परवाज के साथ इंडिगो नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यह हवाई अड्डा दिल्ली के वसी इलाके और मगरबी उत्तर प्रदेश को मुल्क और दुनिया के दीगर हिस्सों से जोड़ता है। यह आलमी मेयार का हवाई अड्डा मुसाफिरों को जदीद और जामे तिजारती सहूलियात और खिदमात फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इब्तदाई मरहले में यहां से घरेलू परवाजें चलाई जाएंगी, नीज आइंदा महीनों में बैन अल-अक़वामी परवाजें चलाए जाने का भी मंसूबा है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा कि पहले मरहले में यह हवाई अड्डा 1,20,00,000 मुसाफिरों को हवाई सफर की सहूलियात फराहम करेगा, जो कि हवाई अड्डा मुकम्मल होने के बाद तवक्को है कि 7 करोड़ मुसाफिर सालाना यहां से सफर कर सकेंगे। आज पहली परवाज के जरिए सफर करने वाली एक मुसाफिर ने मीडिया से बातचीत करते हुए हवाई अड्डे के आगाज पर खुशी का इजहार किया। मुस्तकबिल में मुसाफिरों को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात दस्तियाब होंगी जो बजट और सफरी खिदमात को पूरा करेंगी। इस हवाई अड्डे पर फजाई माल बर्दारी की खसूसी सहूलत भी दस्तियाब होगी जो इब्तदाई तौर पर 2,00,000 मेट्रिक टन सालाना होगी, जिसे बाद में 15,00,000 मेट्रिक टन तक बढ़ाने का मंसूबा है। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: अमरीका और ईरान की जानिब से मगरबी एशिया जंग को खत्म करने के लिए एक माहदे का ऐलान करने के कुछ घंटों बाद ही इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काट्स ने ऐलान किया है कि इसराइली फौज सरहदों पर अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगी। इसराइल की सलामती की पॉलिसी की बात करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि IDF इसराइली शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए लबनान, शाम और गजा में सलामती जोन्स में गैर मुहैया मुद्दत के लिए तैनात रहेगी। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि इसराइल ने फौजों की वापसी के लिए बैन अल-अक़वामी वक्त की मुद्दत पर अमल करने के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने इनकार से बराह रास्त मुत्तला किया। भारत ने मगरबी एशिया में लड़ाई खत्म करने और आबनाए हुरमुस को खोलने के बारे में अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत का खैर मकदम किया है। आबनाए हुरमुस एक तंग बहरी रास्ता है जिसे आलमी तेल सप्लाई के 5वें हिस्से की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ये उम्मीद करता है कि इस मुफाहमत पर अमल दरामद होने से खित्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त हो सकेगी। अमन के इस माहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे। हुकूमत ने कहा है कि सभी रिफाइनरियां आला सलाहियत के साथ काम कर रही हैं, उनके पास खाम तेल के वाफिर जखायर मौजूद हैं और पेट्रोल और डीजल के खातिर ख्वाह जखायर को बरकरार रखे हुए हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहतरमा सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बारे में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए ये इंकशाफ किया। फर्टिलाइजर के महकमे में ज्वाइंट सेक्रेटरी बंदना प्रियाशी ने कहा कि मुल्क में फर्टिलाइजर्स का जखीरा मामूल के मुताबिक है। بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ڈائریکٹر اوپیش کمار شرما نے بتایا کہ 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی سے لدا کارگو دشا بحفاظت آبنائے ہرمز پار کر گیا ہے. توقع ہے کہ جمعرات کو یہ دہیج بندرگاہ گجرات کی دہیج بندرگاہ پہنچ جائے گا. ریلویز کی وزارت نے شمالی ریلوے کی امبالہ ڈویژن کے لیے 201 کروڑ روپے مالیت کے کوچ پروجیکٹ کو منظوری دی ہے. کوچ ملک میں تیار کردہ خودکار ریل تحفظاتی نظام ہے جسے آپریشنل سیفٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے. ریلوے کی وزارت نے گجرات میں احمد آباد ڈویژن کے لیے بھی 140 کروڑ روپے کے کوچ پروجیکٹ کی منظوری دی ہے. احمد آباد کے سائبر جرائم سے متعلق محکمے نے نیٹ امتحان میں ہوئی دھوکہ دہی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں راجستھان اور بہار سے 3 افراد کو حراست میں لیا ہے. احمد آباد کے سائبر جرائم کے محکمے میں جوائنٹ کمشنر پولیس شرد سنگھل نے میڈیا کو بتایا کہ راجستھان سے حراست میں لیے گئے 2 ملزمان جعلی سوشل میڈیا چینل چلا رہے تھے جن میں وہ نیٹ کے دوبارہ ہونے والے امتحان کے پرچے بیچنے کا دعویٰ کر رہے تھے. وزارت دفاع نے آندھرا پردیش اور جھارکھنڈ کے لیے نیشنل کیڈٹ کور این سی سی کے نئے ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل کی منظوری دے دی. اس فیصلے سے ملک میں این سی سی ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی کل تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی ہے. وزارت نے واضح کیا ہے کہ نئے ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل سے مرکزی سطح پر منعقد ہونے والے باقاعدہ کیمپس جیسے یوم جمہوریہ کی پریڈ کا کیمپ اور آل انڈیا تھل سینک کیمپ میں شرکت کرنے والے کیڈٹس کی تعداد میں اضافہ ہوگا. ملک کے حصص بازار کے اہم اشاریے آج کے کاروباری سیشن کے اختتام پر تقریباً 1% اضافے کے ساتھ بند ہوئے. امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں کا رجحان مثبت ہوا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے میچ میں سویڈن نے تیونیشیا کو 1-5 سے کراری شکست دی. آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت اور سلوواکیہ نے آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے. فریقین نے لیبر مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور سلوواکیہ کے ان کے ہم منصب نے انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا. 52واں G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل اس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے. ڈی آر ڈی او نے اندرون ملک طویل دوری تک مار کرنے والے لینڈ اٹیک کروز میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
3: میڈیم ویو 336.7 میٹر ارتھات 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے. کاریکرم سبرس کے انترگت اب آئیے سنتے ہیں اومکار سنگھ اور ساتھیوں کی آواز میں گائے کچھ لوک گیت.
4: آرے ہوئے پکاورا نمائے بال پاورا ککا

घोड़ा बढ़ाए दो समुआ नाय समुहे गोला गहो समियाय दादन चौड़ा बोलन लगे दादू।

पांच के बनुआ कौना मारा ना बाजे के बूढ़े पालक कौना मारा पहले ना डा अवसर अपने मन के कर ले दिल के मेट ले अरमान जागत देखी हाय चौड़ा लाए गुस्सा गया दे माय जान बाला हल्लाई लो हाय चौड़ा लाए दुई पोरल पाए रहो गुमान कटुआ चमकाए बोरी चमकाए अवसर तेन तेन बाल खाए

का नाम तो हाउदा लगाए थे हाउदा लगाए मुड़िया हाउदा का उधर बाबो तो चारा उल्टा चलाए तालवार एक एक हाउदा के

जितने गोला गुड़दा ललमई काठी आवाज दिया धरवा कुटरिया जिला।

श्रोताओं, कार्यक्रम सबरस के अंतर्गत इस समय आप सुन रहे हैं ओमकार सिंह और साथियों की आवाजों में कुछ लोकगीत, और इसी के साथ कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति।

चंगा गुलाम के आए तुम कहो ये बदेते हैं कई हमारी है जो तुम मान अब हम हाल दे कि हम रिये ओ रिये तुम हो जाओ सब जान जाल दौर हो लोट कर ले आए महोवे पारा सा बतिया हर रैया ये लूट कर रहा ले आए महोवे पारा सा बतिया हर रैया ताने लला खाना बोला लला आ जाओ ना देख आइया।

कार्यक्रम सबरस के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ओमकार सिंह और साथियों की आवाजों में गाए कुछ लोकगीत। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ज और एफ 102.9 मेगाहर्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब पेश है लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर।

नमस्कार श्रोताओं, लाइव फोन इन प्रोग्राम में आज आपके साथ हाजिर है आपकी आज की रेडियो दोस्त सरस्वती सिंह। श्रोताओं, आज के फोन कॉल्स के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए और अपना फरमाइशी गीत सुनने के लिए जल्दी से उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा ये नंबर। हमारा नंबर है 0595232326, 0595234326। हम कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स का इंतजार, जल्दी से डायल कीजिए हमारा नंबर और सुनिए अपना पसंदीदा फरमाइशी गीत।

0: हेलो रामपुर।
1: हाँ जी, हेलो रामपुर
0: हाँ जी, कौन से श्रोता साथी हमसे बात कर रहे हैं?
1: जिला अमरोहा निवर्ती पते खालसा से बहारुल सिद्दीकी बोल रहा हूँ मैम।
0: बहारुल जी, कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं मैम। आपका प्रोग्राम सुनने में तो अच्छे लग रहे हैं। आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम जितने भी पेश इन दिनों पेश किए गए हैं अच्छे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बताइए, आपके घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: हाँ, घर परिवार में सब लोग बढ़िया हैं। बस आपका प्रोग्राम सुनने हैं, छत पे बैठे हुए मोबाइल
0: अच्छा,
1: पे भी सुनना है, रेडियो पे भी सुनना है मैम।
0: क्या बात है। तो किस गीत की फरमाइश के साथ आज आप हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं?
1: हाँ, जहाँ तक पसंद का सवाल है, कुछ उनका नाम रहेगा फूल बने अंगारे।
0: जी
1: गाने के बोल उस तरह से हैं, गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ, ये गाने के बोल रहे होंगे। और घर के कुछ नाम थे
0: जी कहिए।
1: जैसे मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी हैं, बेटी अलीसा सिद्दीकी, सिपान सिद्दीकी, नाविया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासिन अंसारी, सुतेज चौहान, अतीक तोफिक दानी सिद्दीकी, मीरपुर कैम से, इकराम प्रेमी साहब रामपुर से, नवाबुद्दीन भाई रामपुर से, दोलापुर मुरलवार से मुकेश कसद जी हैं, राशिद अंसारी पाकबड़ा से मुजाह अंसारी है। और आपने प्रोग्राम पेश का मैम अच्छा रहा।
0: धन्यवाद। और आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में। आपने कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो रामपुर
1: हेलो दीदी, नमस्कार
0: जी। नमस्ते, कौन से श्रोता साथी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं?
1: और जी दीदी, मैं ग्राम बिड़ोरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया से लोकल बोल
0: जी। स्पष्ट बोलिए, आपका नाम समझ नहीं आया
1: जी दीदी। लोकल बोल जाए।
0: हेलो रामपुर।
1: हेलो दीदी, नमस्कार
0: जी। नमस्ते, आप आपका नाम बताइए।
1: जी दीदी, लोकेंद्र सिंह गुर्जर।
0: अच्छा जी, लोकेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी, बढ़िया है। और खेती बाड़ी अपना काम है, कृषक हूँ तो खेती बाड़ी करता हूँ।
0: कहाँ रहते हैं आप?
1: जी दीदी, ग्राम बिड़ोरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश।
0: अच्छा जी, तो वहाँ ये बताइए, मध्य प्रदेश में

0: मौसम कैसा है?
1: गर्मी भी है,
0: जी
1: लेकिन 2-4 दिन बाद देखो मानसून की एंट्री हो सकती है मध्य प्रदेश में 20 तारीख के बाद।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सभी इंतज़ार में हैं कि मानसून जल्दी से आए और ये इस गर्मी से राहत मिले।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल। किस गीत की फरमाइश के साथ आज आप कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं?
1: जी दीदी, अब प्यार झुकता नहीं मूवी का एक गीत है, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी जाए, और कुछ दोस्तों को भी डेडिकेट करना चाहेंगे।
0: जी कहिए।
1: तो दीदी पहले तो आप हो, उसके बाद जयपाल यादव जी हैं, सतीश जी हैं, मेहरवान नागल जी हैं, अंजलि जाटव जी हैं और सभी दोस्त सुनने वाले।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाएंगे। और लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोता साथियों को अपना अपनी ओर से कोई संदेश देना चाहेंगे।
1: जी दीदी, संदेश दोस्तों के लिए ये कहूँगा, क्योंकि
0: बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत और प्रकृति से जुड़ा हुआ आपने संदेश हमारे श्रोताओं को दिया है। कार्यक्रम में आपने कॉल की लोकेंद्र जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी। कौन से श्रोता साथी आज हमसे बात कर रहे हैं?
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी गफ्फार जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके परिवार में और आकाशवाणी परिवार में क्या हाल है?
0: सभी कुशल मंगल हैं। आप सभी श्रोताओं की दुआएं हैं। किस गीत की फरमाइश के साथ आप आज इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं?
1: मूवी का नाम है राजकुमार पुरानी वाली
0: जी,
1: और मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, गाने के बोल हैं, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है।
0: बिल्कुल आपकी पसंद का ये गीत हम
1: सुनने वालों के नाम है
0: जी।
1: राजिया खान है, सिमरन खान है, इरफान खान है, नवाबुद्दीन भाई, इकराम अली प्रेमी, मसूद हुसैन, शबनम अब्बासी, शारमून अंसारी, हबीब अहमद इदीसी, गुलरक्षा इदीसी, अनीसुर रहमान, आकाश रस्तोगी, पम्मी पक्के बास्ते और नासिर भाई रिक्शा वाले, यही सब सुनना चाहेंगे और गाना पूरा बजा देना।
0: बिल्कुल आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं कि अगर हम हमारा एक विषय है, हम बताते हैं आपको, हमारे बुजुर्ग, हमारी धरोहर अगर हम बात करें तो उस पे
1: आकाशवाणी सुनते
0: जी।
1: रहो, गुनगुनाते रहो, आकाशवाणी रामपुर में कॉल लगाते रहो, गमों को भुलाते रहो।
0: चलिए आप फिलहाल विषय से भटक गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपना प्यार आकाशवाणी रामपुर को दिया है, कार्यक्रम में आपने कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फार जी। और आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो रामपुर,
1: हेलो रामपुर दीदी, आदाब
0: आदाब जी। कौन से ईशो था साथी हमसे बात कर रही
1: दीदी। कहते हैं तेरी मेरी दोस्ती यही है मेरा प्यार, तेरी मेरी दोस्ती यही है मेरा प्यार, रहने वाली हूँ खंजा की, शबनम अब्बासी है मेरा नाम। दीदी
0: क्या बात। शबनम जी, कैसी हैं आप और घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: दीदी हम बहुत अच्छे हैं और कार्यक्रम सुनते रहते हैं आपके, नियमित सोता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
0: धन्यवाद। और किस गीत की फरमाइश के साथ आप आज इस कार्यक्रम में जुड़ रही हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम है हमको तुमसे प्यार है, गाने के बोल भी हैं, दो तीन नाम है दीदी,
0: जी कहिए।
1: जैसे संग में हाजी गफार खां, शमा परवीन, शारून अंसारी, संग में सभी श्रोता सुनने वाले।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोता साथियों को कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से।
1: बस मैं तो दीदी यही कहना चाहती हूँ कि सभी श्रोता खुश रहें, मस्त रहें, कॉल लगाते रहें, कार्यक्रम सुनते रहें, हमारी दीदी की आवाज़ बहुत प्यारी है।
0: धन्यवाद। आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में। शबनम जी, आपने कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू दीदी।
0: थैंक यू।

0: हेलो रामपुर
1: हेलो रामपुर,
0: जी, कौन से श्रोता हमसे बात कर रहे हैं?
1: सबसे पहले आपको प्यार भरा आदाब।
0: आपको भी हमारी ओर से प्यार भरा आदाब।
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से मोहम्मद दानिश सिद्दीकी बोल रहा हूँ।
0: दानिश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं मैम। आकांक्षा जी बोल रही हैं आप?
0: नहीं, मैं सरस्वती सिंह बोल रही हूँ इस समय।
1: सरस्वती सिंह बोल रहे हैं।
0: जी, और आप बताइए,
1: हेलो,
0: कैसे हैं? घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: सब अच्छे हैं मैम। घर परिवार में सब लोग बढ़िया है। आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और कॉल भी लगा रहे हैं मैम। तो लग गई आपसे बात हो रही है, अच्छा लग रहा है।
0: क्या बात है! तो किस गीत की फरमाइश के साथ आज आपने हमारे कार्यक्रम में कॉल लगाई है?
1: फिल्म है आरजू और गीत के बोले अब तेरे दिल में रहेंगे, कुछ सुनने वालों के नाम है।
0: जी, कहिए।
1: जैसे साथ में बड़े भाई साहब तौफीक अहमद सिद्दीकी साहब, अतीक अहमद सिद्दीकी साहब, ग्राम खरी टांडे से मोहम्मद कामिल मकसूद भाई हैं, बहादुर हसन सिद्दीकी हैं, और यह है हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा, और यह कांठ रोड लदावली मुरादाबाद से अजीत कसाना, राजवीर यादव।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में। दानिश जी, आपने कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: हेलो रामपुर
1: हेलो रामपुर मैम जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन से श्रोता साथी हमसे बात कर रहे हैं?
1: मैम। मैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप आपसे बात कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं मुकेश जी?
1: मैम मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपका प्रोग्राम सुन रहे थे और मैं कॉल भी लगा रहे थे, कॉल लग गई और भी ज़्यादा खुशी हो रही है मैम।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये। तो किस गीत की फरमाइश के साथ आज हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं?
1: मैम फिल्म का नाम है सिर्फ तुम,
0: जी
1: गीत के बोले देखो जरा कैसे पल खा के चलिए, कुछ सुनने वाले के नाम है।
0: जी कहिए।
1: मेरे दोस्त हैं जयपाल यादव जी हैं, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी हैं, मकसूद हुसैन जी हैं, और मेरे बड़े भाई साहब हैं सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, मेरी बहन है काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर जी, और हमारी भाई पे शीतल कश्यप।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आप हमारे श्रोताओं को कोई खास संदेश देना चाहें?
1: संदेश मैम मेरा बस यही रहेगा मैम, जैसे गर्मी काफी पड़ रही है
0: जी
1: तो इसमें पानी बर्बाद होने से बचाएं मैम।
0: जी और पानी का सेवन भी करें, अपनी बॉडी
1: जी
0: को
1: मैम,
0: हाइड्रेट रखें।
1: पानी
0: बिल्कुल
1: ज्यादा ज्यादा
0: जी
1: पिए और बर्बाद
0: जी
1: होने से बचाएं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने मुकेश जी।
1: जी
0: और पहली बार आपकी हमारे साथ इस कार्यक्रम में बात हो रही है।
1: जी मैम, आपसे मेरी बात पहली बार हो रही है, वैसे मैं हर हफ्ते लगाता हूँ, मेरी कॉल लगती हुई है मगर रिसीव नहीं हो पाती मैम।
0: अच्छा जी, चलिए कोई नहीं, इस बार आपकी कॉल, आपने कॉल भी की है और आपकी कॉल भी रिसीव हुई है, और आपकी जो फरमाइश है उसको हम आपको सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम में आपने कॉल किया मुकेश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।

0: हेलो रामपुर
1: हेलो रामपुर।
0: जी, कौन सी श्रोता साथी हमसे बात कर रही हैं?
1: मैम आदाब।
0: आदाब जी, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे।
1: मैं ककरवा से बात कर रही हूँ।
0: जी, नाम बताइए आप अपना।
1: मैम कहते हैं कि मेरा दिल दीवाना है तेरा, मेरा दिल दीवाना है तेरा। मैं बिन पंखों की तितली हूँ, कलियों की खुशबू चुराना काम है मेरा। हर एक अंधेरी रात को जो कर दे रोशन, वही तो शमा परवीन नाम है मेरा।
0: जी शमा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और आज मेरी कॉल, अगर आपसे मेरी काफी दिनों के बाद बात हो रही है, तो मैं और भी
0: क्या बात! तो आज किस गीत की फरमाइश के साथ आप कार्यक्रम में जुड़ रही हैं?
1: मैम मूवी का नाम रहेगा जुनून, और गीत के बोल रहेंगे हवाओं पे लिखा है, ठिकाओं पे लिखा है।

0: और मैम मैं एक आरजे का शो करती हूँ, जैसे आप लोग करते हैं इसी तरह से मैं करती हूँ। मुझे श्रोताओं से बात करना बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या बात, बहुत ही अच्छी बात है।
0: और
1: तो
0: मैम मुझे
1: जी
0: आकाशवाणी रावपुर ने ही ये हुनर दिया है कि बोलने का और शेर शायरी करने का। और आकाशवाणी के रामपुर से ही मैं रेडियो DFC वर्ल्ड से जुड़ी हूँ और उस पर वो फोनी प्रोग्राम का शो करती हूँ।
1: क्या बात, बहुत ही अच्छी बात
0: और
1: है।
0: मैम जैसे कि मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम इतना अच्छा कैसे बोलती हो, कहाँ से सीखा है, तो
1: जी
0: मैं अपने रेडियो DFC वर्ल्ड से कहती हूँ कि मैं आकाशवाणी रामपुर से मैंने ये सब कुछ सीखा है।
1: क्या
0: और
1: बात,
0: मैं धन्यवाद हूँ करती हूँ आपका और आभारी हूँ आकाशवाणी रामपुर।
1: बिल्कुल, आपके शब्दों में आपका आकाशवाणी के लिए जो प्रेम है वो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शमा जी, आपका इतना प्यार देने के लिए हमारे परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में आपने कॉल की, इसके लिए
0: मैं तो
1: आपका
0: जाते जाते दो
1: जी
0: लाइनें कहना चाहूंगी।
1: जी
0: हाँ मैम, कहते हैं कि हवा से कह दो कि उसकी खुशबू लाकर दिखाए, इसे हवा से कह दो कि उसकी खुशबू लाकर दिखाए, लाकर मेरे तन बदन को महका कर दिखाए। और बहुत करती है ये घरों में अंधेरे, इसे कह दो कि एक मोहब्बत का दिया जला कर दिखाए।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने ये खूबसूरत पंक्तियाँ पढ़ी हैं। कार्यक्रम में आपने कॉल किया शमा जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
0: ओके मैम, अल्लाह हाफिज।

0: हेलो रामपुर
1: हेलो।
0: जी, कौन से श्रोता साथी हमसे आज जुड़ रहे हैं?
1: मैं गांव डेर तहसील जिला पाटन गुजरात से देवेंद्र रबारी बात कर रहा हूँ। दीदी
0: क्या नाम बताया आपने?
1: धीरज रबारी।
0: धीरज जी, कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे हैं और आकाशवाणी रामपुर परिवार और आप अच्छे होंगे।
0: आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं फोन के माध्यम से।
1: जी मैं जुड़ा हूँ लेकिन मेरे ख्याल से आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: जी हाँ, आपकी हमसे पहली बार ही बात हो रही है। आपके खत और आपके फरमाइशी जो कार्यक्रम है उसमें आप शामिल होते हैं।
1: जी
0: जी, तो किस गीत की फरमाइश के साथ आज आप कार्यक्रम में जुड़े हैं?
1: गाना सुनना है, पंख होती तो उड़ाती थी लता मंगेशकर की आवाज में।
0: जी बिल्कुल।
1: और आपके हर फोन इन कार्यक्रम मुझे बेहद पसंद है और आप लोगों की जो प्रस्तुति है वो सर्वोत्तम होती है।
0: धन्यवाद, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या ही बात है। धीरज जी, आपने आज जो गीत की फरमाइश की है वो गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को कोई खास संदेश देना चाहें अपनी ओर से।
1: जी मेरा संदेश यही है कि आज कई बातें ऐसी है जो हम नहीं करते। देखा
0: जी
1: जाए तो रक्तदान है,
0: जी
1: कई ऐसे हमारे पास पड़ा होता है फिर भी देते नहीं। मान लो कि अनाज होता है, खाने पीने का होता है, पानी भी होता है, लेकिन कभी हमारा जीव नहीं चलता। तो उसमें हम हमारी उदारता देखे, कहीं अगर कोई किसी को पानी की जरूरत तो पानी भी पिलाना चाहिए, कहीं किसी को रक्त की जरूरत तो रक्त भी देना चाहिए यानी ब्लड भी देना चाहिए। तो कई ऐसी चीजें हमारे पास पड़ी है लेकिन नहीं देते, लेकिन इसमें उदारता देख के हमें ये सब करना चाहिए, यही जीवन में हमें आगे जाने के लिए बहुत काम आएगी। दीदी
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही खूबसूरत संदेश आपने हमारे सभी श्रोताओं को दिया। उम्मीद करेंगे कि वो भी जागरूक होंगे आपकी बातों से। बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया कार्यक्रम में। धीरज जी, आपने कॉल की इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर
0: हाँ जी, कौन से श्रोता साथी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं?
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। मैं ग्राम अकबरपुर तहसील सुरंग जिला विदिशा मध्य प्रदेश एमपी से।
0: अच्छा जी, हारून जी कैसे हैं आप?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हो?
0: हम भी बढ़िया हैं, कुशल मंगल हैं। आप सभी श्रोता साथियों की दुआएं हैं। किस गीत की फरमाइश के साथ आप कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं?
1: ऐसा है आपके दर
0: जी,
1: संग्राम का सुनवा देना
0: जी। कौन सा गीत संग्राम फिल्म का आप सुनना चाहेंगे?
1: भीगी हुई है रात।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में। हारून जी, आपने कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी, धन्यवाद।

0: हेलो रामपुर
1: नमस्कार मैम
0: जी, नमस्ते। कौन से श्रोता साथी हमसे बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ। मैम
0: मकसूद जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं मैम। जानना चाहूँगा कि आप कैसे हैं और सभी आकाशवाणी में कैसे हैं। मैम आपकी आवाज पल्लवी राय जी से मिलती जुलती है जो हमारे बीच नहीं रही। मैम
0: जी, धन्यवाद
1: जी,
0: इस कॉम्प्लीमेंट के लिए।
1: जब भी आप प्रोग्राम में आती हो तो आपकी आपको आवाज़ सुनकर उनकी याद आ जाती है। मैम
0: अरे, और बताइए मकसूद जी, कैसे हैं आप और घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआ से सभी यहाँ पर खैरियत से हैं। मैम और मैं संदेश देना चाहता हूँ मैम कि रात को जो है मतलब कुल्ला करके सोए लोग और सुबह को निहार मुँह जरूर पानी पिए, बिना कुल्ला करे पानी पिए और आंखों में जो लार होती है बाकी मुँह की वो आंखों में लगाएं तो आंखों आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। मैम
0: अच्छा जी, तो किस गीत की फरमाइश के साथ आप आज इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं?
1: मैम एक फिल्म है झुक गया आसमान, उसमें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का बहुत ही प्यारा गीत है, मेरी आंखों से निंदिया चुरा ले गया तुम्हारे सिवा कौन, तुम्हारे सिवा कौन। और मैम सुनने वाले हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, राजा हुसैन है, हाजी गफ्फार खान साहब है, मोहम्मद इशरत, मुकेश भाई और साथ में आप भी हैं मैम, सभी लोग सुनने वाले। मैम
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे साथ, मतलब ये आपकी हमारे साथ पहली बार बात हो रही है इस कार्यक्रम में, इससे पहले भी आप हमारे साथ जुड़ चुके
1: नहीं
0: हैं?
1: मैम, आपसे मेरी बात शायद तीसरी मरतबा बात हो रही है आपसे, लेकिन बड़े मुश्किल से कॉल लगता है मैम, आप भी लास्ट में ही लगा है मैम।
0: कोई बात नहीं, लेकिन आपका कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हो गया, ये बहुत बड़ी बात है और
1: जी
0: इसके
1: जी
0: लिए आपको बधाई भी। आपकी
1: जी
0: पसंद का ये गीत हम
1: धन्यवाद।
0: आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में, आपने मकसूद जी कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: पूरा गीत प्ले कर देना जितना भी समय रहे मैम, धन्यवाद
0: जी, कोशिश पूरी रहेगी, धन्यवाद।

और श्रोताओं, इसी के साथ आप अपनी रेडियो दोस्त सरस्वती सिंह को कार्यक्रम हेलो रामपुर संपन्न करने की दीजिए अनुमति। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखिए और हमेशा की तरह जुड़े रहिए आपके अपने परिवार, जी हाँ, आकाशवाणी रामपुर के साथ। नमस्कार।

ये था लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो रामपुर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil and South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Defence Research and Development Organisation DRDO today successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile from APG Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, Defence Ministry said that the missile achieved all mission objectives, validating critical technologies and demonstrating India's growing long-range precision strike capabilities. Union Public Service Commission UPSC today declared the result of Civil Services Preliminary Examination CSE for this year. UPSC informed that this year against more than 1,000 vacancies, a total of more than 13,000 candidates have been shortlisted for the Civil Services main examination. UPSC also informed candidates that marks, cut-off marks and answer key will be uploaded on the Commission's website only after the declaration of the final result. The candidates can download the prelim result on the official website of UPSC, upsc.gov.in. Noida International Airport at Jewar in Uttar Pradesh commenced commercial flight operations today, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. IndiGo became the first airline to operate from Noida International Airport, with the inaugural flight landing in Jewar from Lucknow this morning. In the FIFA World Cup football, the Group H clash between Spain and Cabo Verde underway at Atlanta, United States, and earlier in the day, Sweden thrashed Tunisia by 5-1 in the Group F match in Mexico. And that is the end of the news bulletin.
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर मीडियम वेव और FM पर हमारी प्रातःकालीन सभा एक साथ आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर मीडियम वेव और FM पर हमारी प्रातःकालीन सभा एक साथ आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।